एक खूबसूरत सा नया दिन, नया हफ्ता और एक खूबसूरत सा नया ख्याल। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, वणक्कम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आफरीन एंड यू ट्यून्ड इन टू 89.6 मिर्ची वन ऑन द शो मिर्ची मॉर्निंग्स। यार एक बैटरी जानते हो, बैटरी जिसे हम घड़ियों में डालते हैं या खिलौनों में डालते हैं, और अगर आपने देखा होगा वो बैटरी में पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है ना। हम इंसान में इस तरह से ही होते हैं, हम सब में पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं और नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। लेकिन होता क्या है ना, हम इतने जजमेंटल है कि हमें सब में ना नेगेटिविटी बहुत जल्दी नजर आती है, किसी की पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स और पॉइंट्स बहुत रेयरली नजर आती है। बस बात इतनी सी है कि जब हम दूसरों में पॉजिटिव पॉइंट्स ज्यादा ध्यान दें और उनकी नेगेटिविटी को नजरअंदाज करें, बस उसी तरह से दूसरे भी हमें इसी नजरिए से देखना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। फिलहाल आप सुन रहे हो आफरीन को, और ऑन दिस पॉजिटिव नोट आज की शो की शुरुआत करते हैं। 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Isca bara, pusca bara, saca bara. Burga, burga, burga. La virba la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: हेलो, संदीप नागपाल जी बोल रहे हैं?
2: हाँ जी बोल रहा हूँ।
3: हाँ जी, डीडीए से बोल रहा हूँ। आपका ये ड्राफ्ट भेजना है वापस, आपने डीडीए फ्लैट के लिए अप्लाई किया था ना?
2: तो हुआ कैसे है, मतलब हमें तो बड़ी उम्मीद थी भाई के निकलेगा हमारा।
3: अब सर ये किस्मत की बात है सर, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते ना। अब जिसके निकल गए हैं वो लकी है सर। मैं तो बस आपसे ये कह रहा था, ये 7,500 रुपए का आपका ड्राफ्ट है जो वापस करना है, कहाँ कुरियर कर दूँ, आप आगे ले लेंगे इसको। 7,500 रुपए का?
2: अरे भाई साहब, मैंने 1.5 लाख रुपए जमा किया था, मैंने 7,000 रुपए दे रहा हूँ मुझे आप।
3: नहीं नहीं सर, ये 25,000 रुपए आपके प्रोसेसिंग फीस के कट गए।
2: किस चीज की फीस?
3: प्रोसेसिंग फीस जो आपने अप्लाई किया था ना डीडीए के फ्लैट के लिए।
2: तो भाई साहब ऐसा कहीं मेंशन नहीं था कि मेरे इसके फीस कटेगी नहीं कटेगी?
3: सर हर चीज मेंशन नहीं करी जाती ना, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। 50,000 रुपए आपके मशीन जो आपने बनवाई थी ना लकी ड्रॉ के लिए मशीन, उसके 50,000 रुपए कट गए आपके।
2: मेरे ड्रॉ के लिए कुछ स्पेशल मशीन बनी है क्या?
3: सर आपके ड्रॉ के लिए नहीं है सर, करोड़ों की मशीन है, आपके ड्रॉ के लिए नहीं, सबके ड्रॉ के लिए बने हैं। उसे पर्चियां डलती है बहुत सारी करोड़ों के हिसाब से, वो मशीन महंगी आती है। 20,000 रुपए आपके प्रिंटिंग के कट गए हैं, 30,000 रुपए हमारे डीडीए का लोगो चेंज हुआ है, आप लोगों की वजह से लोगो चेंज होता है, और 15,000 रुपए सिक्योरिटी के हमने काटे हैं, क्योंकि सिक्योरिटी हमने लगा रखी है, कभी किसी को गुस्सा आ जाए ना। 7,500 रुपए आपके बचते हैं।
2: ये भी तुम्हें रख लो, ये हमें तुम फोन क्यों कर रहा हो?
3: ऐसे कैसे रख ले यार, आपका पैसा आपको वापस देंगे
2: हम। भाई आप ही रखो यार, आप मतलब हमें ज्यादा रख लो, ये बीच में रख लो हमें ज्यादा।
3: अरे यार
2: आप लूट रहे हो पब्लिक को यार।
3: तो यार ये आपको पहले सोने थे ना संदीप जी, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा ना, ये तो कम डीडीए की तरफ से। आप एक तो गुस्सा ना करें, एक सेकंड फोन आ रहा है, रुकिए रुकिए। हेलो, हाँ हाँ जी बोल रहा हूँ डीडीए से। सर आपके 5,882 रुपए बनते हैं, आके ले जाइएगा ठीक है। हाँ संदीप जी, आप मुझे बताइए, आप मुझे
2: बताइए,
3: आप मुझे आप वैसी टेंशन लग रहे हैं, मेरी बात सुनिए संदीप।
2: बोलो बोलो
3: संदीप, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: It's all down to Dhoni, isn't it? 4 balls left, they need 12 runs to win.
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है।
7: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
6: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar, this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah.

वेल सचिन टंडन और परंपरा टंडन की आवाज में ये गाना राइट हियर ऑन मिर्ची। और आज ना बहुत सारे लोग मुझे सुन रहे हैं, ये बात तो पक्की है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, सिंपली आफ्रीन का साथ है दिस मिर्ची मॉर्निंग्स। और रास्ते पर नजर डालो और आसपास में देखकर पता ही चल रहा है, देखो तो यार इतने सारे लोग हमारे कतर में फिर से आ गए हैं। वैसे जैसे यार हमारे दोहा में यहाँ पर ना सर रौनक सी आ गई है, और रौनक ना बच्चों की वजह से ही लगती है, लेट मी टेल यू, हमेशा। और ऐसे ही सुबह की सड़कें जो है हमारे कतर की बिजी बिजी से हो गई है, स्कूल बसेस हर जगह दिख रही है, एंड ऑल द किड्स आउट देयर इफ यू आर लिसनिंग टू मी, ऑल द बेस्ट, हैप्पी बैक टू स्कूल कह सकते हैं। आई डोंट नो हाउ यू सेलिब्रेट इट और यू नॉट, बट यस ऑल द वेरी बेस्ट। अब तो यार एग्जाम्स का सिलसिला शुरू होने वाला है फॉर द इंडियन स्कूल किड्स आउट देयर, और जो इंटरनेशनल करिकुलम में है उनका नया साल है ये, तो बस बड़े ही एनर्जी के साथ में आज आप स्कूल जा रहे हो, बड़ा मजा आने वाला है। विद दिस बहुत सारे लोग गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, चलिए उन्हें जवाब दे देते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग सैफुल्ला, देन आई हैव योर गुड मॉर्निंग आलीशान, देन आई ऑल्सो हैव योर नाज़नीन जो गुड मॉर्निंग कह रही है, एंड इफ एनी किड्स आउट देयर जो हमें गुड मॉर्निंग कह रहे हैं तो कर लीजिए 5000 1896 इज द नंबर, 5000 1896। मीनवाइल यही कहना चाहूंगी भाई, बड़े अच्छे से और बड़े स्वैग से एंटर करो स्कूल में, है ना। विद दिस चलिए अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं, बैरान बंजारन का ये गाना ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: कंगना।
1: क्या बात है, खुशी तो देखो हमारे बच्चों के चेहरे पर। अब यहाँ अब कोई बच्चे मुझे सुन रहे हो तो ये कहेंगे कि क्या खुशी स्कूल जाने की, लेकिन दोस्तों से मिलने की खुशी तो है ना। मतलब इतने महीने बाद, तकरीबन 2 महीने बाद, यू गाइज आर मीटिंग योर फ्रेंड्स अगेन, सो इट मस्ट बी सच अ हैप्पी मोमेंट टू नो दैट इन विच क्लास इज योर फ्रेंड नाउ। दिस इज वॉट एक्साइटमेंट वी यूज टू हैव वेन वी यूज टू गो टू स्कूल, है ना, कि जब हम जाते थे पहले और नई क्लास है, अगर नया स्टैंडर्ड है, और पता नहीं होता था कि अपने पहले के फ्रेंड्स जो है, जो प्रीवियस डिविजन्स में थे, वो अभी भी हमारे साथ होंगे या नहीं। So this will apply to those who are studying in international curriculum or Indian school में जो है, CBSE boards में जो है, उनके तो already, if I am right, आप लोग के classes ये academic year already शुरू हो गया, लेकिन you have so many things to tell कि हमने 2 महीने में ये किया, हम वहाँ गए, हमने इसके साथ time spend किया, so many stories all the kids are going to share today with their friends। यार मुझे मेरा school का वक्त याद आ गया यार, बड़े मजे के दिन रहते थे with this। मैं हूँ आफरीन आपके साथ राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स, और बस स्कूल से थोड़ा सा अब वर्तमान में आते हुए यहाँ पर कतर का हालचाल बता देती हूँ वेदर को लेकर।
2: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
1: वेदर अपडेट। वेल देखो एक बात तो है, बाकी कुछ कांस्टेंट रहे ना रहे, लेकिन हमारा वेदर काफी हफ्तों से कांस्टेंट ही चल रहा है। आज भी वैसे ही हाल है, 45 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम बता रहा है, 33 मिनिमम बता रहा है। एक्चुअल फील्स तो ज़्यादा ही है, ह्यूमिडिटी भी इनफैक्ट कह सकती हूँ कल से ज़्यादा है, 61% पर। हवाएँ जो है धीमी धीमी सी है, 13 किलोमीटर पर आवर। और बस कुछ दिन, मतलब इतने दिन आप लोगों ने अच्छा खासा सबर करके ये गर्मी का वक्त गुजार लिया है, और कुछ दिन, मेरे ख्याल से एक महीने में कहीं ना कहीं वेदर कुछ अच्छा सा होते जाएगा होपफुली। और क्योंकि आज मुझे ऐसा लग रहा है जेन जी, जेन अल्फा, ये मुझे ज्यादा सुन रहे हैं आज, तो चलिए और एक गाना मित्र और स्वरा वर्मा की आवाज में। अभी अभी का नया गाना है, द जेन जी माइट नो इट, एंजॉय इट ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

किसे पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला क्या छाती का कह देना आई लव यू छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं।

0: सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
1: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
2: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
0: उसे सब पता है.
3: शी कैन रीड योर माइंड. शी विल ब्लो योर माइंड. She is coming for the very first time.
0: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah.

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन का नंबर है।
0: जॉब की वजह से मेरी नींद ही पूरी नहीं होती, क्या करूं?
1: तो तू एक काम कर, नाइट सिक्योरिटी की जॉब छोड़ दे और दिन में काम कर, सिंपल है।
2: I'm joking.

0: Mirchi Mornings. Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot. 89.6 Mirchi One. It's hot.
1: वेल मिर्ची मॉर्निंग्स पर आफरीन है आपके साथ और आज तो असली दिन एक्चुअली बच्चों का नहीं है, एक्चुअली ये वो सारी मम्मीज का है जो 2 महीने से फुल टाइम इतने काम पर लगी थी बच्चों का ख्याल रखने में, एंटरटेन करने में उन्हें, एंड नाउ फाइनली फ्यू आवर्स के लिए दे आर गोना हैव मी टाइम. एंड एनी मदर्स आउट देयर हु इज लिसनिंग टू मी, ड्रॉप इन योर मैसेज 5001896 के अगर अभी अभी आपने बच्चों को ड्रॉप किया है और अब क्या करने का प्लान है. सोने का प्लान है एकदम मैराथन की तरह कि बिल्कुल स्ट्रेट कुछ घंटे सीधा सो जाना है, या फिर अपनी सहेलियों के साथ में मीटअप करने का प्लान है. बताओ बताओ, व्हाट्सएप करो मुझे 5001896. समीन वाइल अगला गाने की तरफ आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर वक्त मिला लेते हैं. मिर्ची घड़ी का इशारा हो रहा है सुबह के 7:01 के तरफ और अगला गाना विशाल मिश्रा की आवाज में और मिर्ची इट्स हॉट
0: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, खतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर.

ड्रिवन बाय शैकमैन ट्रक्स, जबरदस्त पावर और क्लीनर एनर्जी का नया चैप्टर. शैकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स एंड बूम ट्रक्स, पावर दैट सेव्स. डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कार्मेल ग्रुप.

देखिए सुबह से हम बैक टू स्कूल की बातें तो खूब कर रहे हैं, बच्चों से भी बात कर रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स जरा आपके लिए भी एक छोटा सा बैक टू स्कूल ब्रीफिंग कर देते हैं। देखिए हमने बच्चों को तो स्कूल भेज दिया है, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पर उनके लिए क्या क्या प्रिपरेशंस की गई है जरा वो पता लगाते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, सिंपली आफरीन है आपके साथ, राइटर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और सबसे पहले अगर रोड्स की बात करें तो अशगल ने कतर में 674 स्कूल्स के आसपास ट्रैफिक सेफ्टी मेजर्स कम्प्लीट किए हैं। स्कूल जोन में मैक्सिमम स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, साथ में स्पीड हम्स, क्लियरर रोड मार्किंग्स, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, रेड रोड सर्फेसिंग और प्रोटेक्टिव बैरियर्स, ये सब कुछ तैयारी की गई है। दूसरा अगर हेल्थ की बात करें तो PHCC का बैक टू स्कूल कैंपेन वो भी शुरू हो रहा है, और इंटरेस्टिंगली फोकस सिर्फ हेल्दी खाना खाओ इस पर नहीं है, प्रॉपर स्लीप, कम स्क्रीन टाइम, हाइड्रेशन, फिजिकल एक्टिविटी है, मेंटल और इमोशनल वेलबींग, ये सब कुछ कवर किया जा रहा है। अच्छा, अभी पेरेंट्स के लिए काफ़ी प्रैक्टिकल टिप, मिनिस्ट्री ऑफ म्यूनसिपैलिटी रिकमेंड कर रही है कि बच्चों का स्कूल लंच प्रेफरेबली सुबह फ्रेश प्रिपेयर करें, प्रीवियस नाइट नहीं, और कतर की हीट को ध्यान में रखकर ऐसा फूड पैक करें जो हीट विथस्टैंड कर सके। राइट, वो तो सही बात है। और जो लिटिल वंस पहली बार ग्रेड वन ज्वाइन कर रहे हैं, अराउंड 10,700 स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट स्टेप इनिशिएटिव भी है, ताकि उनकी स्कूल जर्नी की शुरुआत थोड़ी और स्मूथर हो। सो बैक टू स्कूल सिर्फ नया बैग, बॉटल और टाइम टेबल नहीं है, बिहाइंड द सीन्स पूरा एक इकोसिस्टम काम कर रहा है। बाकी पेरेंट्स, अलार्म और मॉर्निंग टैंट्रम्स वाला डिपार्टमेंट अभी भी ना आपके पास ही है। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ, अनवर शी इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, pues cabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. La fiesta la burga. Mirchi, burga.
2: Hello.
3: Hello.
2: Con?
3: Hello, Vipin.
2: कौन बोल रहा है?
3: इस्ता मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ. आपने पासपोर्ट अप्लाई किया था?
2: हाँ, पासपोर्ट अप्लाई किया था.
3: आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो. कब अप्लाई किया था आपने?
2: भाई इतने धीरे क्यों बोल रहा है?
3: भाई मानो मेरे बॉस सो रहे हैं, मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ. और बॉस की आँख खुल जाती है ना किसी की आवाज से. पासपोर्ट जिसका बन रहा होता पाड़ के फेंक देते हैं. 15 रिजेक्ट कर चुके, समझ गए? इसलिए कह रहा हूँ तुम्हारे फायदे की बात. और तुम स्पीकर फोन पे हो, सरासा भी तेज बोलोगे उनकी आँख खुल जाएगी, फिर चिल्लाएंगे. तो अब क्यों आवाज़ें आ रही है? मैं कहूँगा कि पासपोर्ट बनाने की बात कर रहा था. कहते इधर देश का पासपोर्ट का. अभी आग लगा दो इसमें. इसलिए कह रहा हूँ धीरे बोलो. आप क्या फ़ायदा है आप बताओ, कब किया था?
2: अभी पहले किया था.
3: अच्छा अच्छा, आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा की थी? आप खुद आए थे?
2: ऑनलाइन ऑनलाइन की थी.
3: भैया इस तो बोल, अभी करवट ली है तेरी आवाज से यार. हमारी आवाज से अभी खड़े हो ऐसे हो रहे थे. कौन है? मैंने कहते कोई बात नहीं कोई बात नहीं. आपको जाना जरूरी है पासपोर्ट लेके.
2: जाना जरूरी है.
3: कहाँ जा रहे हो?
2: दुबई.
3: अच्छा, तो दुबई जाना है
2: भाई. जल्दी जाना है, तुम निकलवा दो अगर जल्दी हो सके तो.
3: नहीं, मैं पक्की बात कर लूंगा, बस इनकी आँख निकलनी चाहिए. हो सकता है कल ही मिल जाए.
2: हाँ ठीक है ठीक है.
3: मैंने सही किया ना बता दिया, वरना ये तो बौखला जाता ना. ये पासपोर्ट के चितड़े उड़ा देता. हाँ तेज मत बोलना जब तक पासपोर्ट का काम ना हो जाए. भाई साहब एक बात बताऊं?
2: बताओ.
3: आपसे बात करके मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है. मैं ऐसी बात करता था, कैसी हो? वो कहती थी मैं ठीक हूँ पापा है बराबर में. आपको नहीं लग रहा जैसे रात में बात करते हैं?
2: मैं तो पागल है क्या?
3: चिल्लाओ मत. ठीक है मैं रखता हूँ.
2: करवा देना भी है आपसे.
3: मरवाओ के क्या उठ जाएंगे.
2: सॉरी सॉरी सॉरी.
3: ठीक है चलो, पासपोर्ट मिल जाएगा या बस सेफ फ्लाइट.
2: ओके ओके.
3: आई लव यू.
4: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैं मुर्गा बना रहा था.
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
6: इट्स ऑल डाउन टू डोनी इज़न्ट इट. फोर बॉल्स लेफ्ट, दे नीड 12 रन्स टू विन.
7: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है.
8: शी कैन रीड योर माइंड. शी विल ब्लो योर माइंड. She is coming for the very first time.
7: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah.

अच्छा इमेजिन करो कि रात के 12 बजे इंस्टाग्राम आपने खोला और सामने आपको ये लिख कर आ गया दैट सॉरी यू कैन नॉट एक्सेस योर इंस्टाग्राम नाउ यू कैन कम इन द मॉर्निंग एट 6 AM तो कैसा रहेगा. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. आप सुन रहे हो सिंपली आफ्रीन को राइटर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. और सोशल मीडिया पर ये तरह सा हवा घूम रही है कि इंस्टाग्राम जो है रात को बंद हो सकता है यानी 12 से 6 बजे तक. बट होल्ड दैट पैनिक माय फ्रेंड्स क्योंकि मैंने सोचा इसको थोड़ा सा फैक्ट चेक करती हूँ क्योंकि न्यूज़ आधी सही है और आधी इंस्टाग्राम की ऐसी ही हवा उड़ी हुई है. एक्चुअली मेटा ने US में एक मेजर चाइल्ड सेफ्टी सेटलमेंट एग्री किया है जिसके अंडर 18 यूजर्स के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक ये जो है इनके मिडनाइट से लेकर 6 AM तक इनके अकाउंट्स पर रिस्ट्रिक्शंस आएंगी प्लस दोनों एप्स मिलाकर डिफॉल्ट 2 आवर डेली यूजेज लिमिट भी होगा. ये बहुत सही किया और ये फिलहाल ना US टीन्स के लिए है दुनिया भर के हर इंस्टाग्राम यूजर के लिए नहीं है. वेल इंटरेस्टिंग पार्ट ये है दैट इंडिया में भी ना 3 अकाउंट्स ऑलरेडी स्लीपर टीन यू मीन जो टीनेजर्स है वो वाला टीन अकाउंट ठीक है ऑलरेडी स्लीप मोड जैसे फीचर्स यूज करते हैं. डिड यू नो दैट एक्चुअली जहां 10 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक नोटिफिकेशन जो है वो अपने आप म्यूट हो जाती है बट नॉट फॉर द एडल्ट्स ऑब्वियसली आउट देयर. सो वेल अगर आपके सामने भी ऐसी कोई वायरल पोस्ट ऐसी कोई कहानी सामने आ गई होगी कि सेप्टेम्बर 10 से रात को इंस्टाग्राम बंद होने वाला है देन डेफिनेटली डोंट फॉरवर्ड द पैनिक ठीक है. बट ये सवाल काफी मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है कि अगर इंस्टाग्राम सच में रोज 12 से 6 बजे बंद हो जाए रात को सो विल यू लाइक इट या फिर आपको 12:01 में ही विड्रॉवल सिम्टम्स कहीं शुरू हो जाएंगे. लेट मी नो 5001896 इज माय व्हाट्सएप नंबर कि आपको क्या लगता है रात के 12 से 6 बजे तक बंद रहना चाहिए इंस्टाग्राम या फिर इवन अर्लियर 10 बजे से या फिर होना ही नहीं चाहिए. आई रियली वॉन्ट टू नो योर व्यूज ऑन दिस. मीनवाइल माइक सदल तक आफरीन है आपके साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट.

0: वेल दैट वॉज हमसिक अय्यर की आवाज में साथ देते हुए द वन एंड ओनली एकॉन राइट हियर रावण का ये गाना आपके साथ जुड़ गई है. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. इट्स अ न्यू डे, इट्स अ न्यू वीक एंड इट्स अ न्यू सवाल. बट सवाल ऐसा है कि बहुत ही ज्यादा जाना पहचाना सा लगने वाला है आपको. बस क्या है? वेल, मैं बात कर रही हूँ लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट के बारे में. जनरली ये वक्त के वक्त टाइम पर मैं यही वाला गेम खेलती हूँ काफ़ी अरसे से, एंड पीपल नो इट जो हमें रेगुलरली सुनते हैं. और आज का जो मैं डायलॉग या सीन सुनाने वाली हूँ ना, इट इज़ सो फेमिलियर. मैंने सोचा चलो नया हफ्ता है, नए नए अभी थोड़ा सा आए हैं, ज़्यादा दिमाग पर जोर ना डालते हुए एक ऐसी मूवी जिसका एक एक डायलॉग आई एम सो श्योर इवन इफ इट्स नॉट अ पॉपुलर थिंग बट एवरी सीन आपको रट्टा होगी, एवरी डायलॉग आपको रट्टा होगी एंड एवरी सॉन्ग आपको एकदम अच्छे से याद होगा. इतनी तारीफ कर रही है आफरीन, कौन सी मूवी है भाई ये? चलिए आप खुद ही सुन लीजिए.
1: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट. सीन टेस्ट
2: जी, हमारे यहाँ की खातिर तो जब आप आएंगे तब पता चलेगी. आप तो आएंगे?
3: अजी आएंगे क्यों नहीं, और जब हम आएंगे तो आतिशबाजियाँ होंगी.
0: ओके, देखिए कोई ऐसा पॉपुलर डायलॉग मैंने उठाया नहीं है ये मूवी का, ऐसे ही रैंडम कॉन्वर्सेशन उठाया है मैंने. बट आई थिंक सो समवेयर कि आप ये जान लोगे. 5000196 इज माई नंबर. ऑलरेडी यहाँ पर सुलेमान किरमानी इनके मैसेजेस आ चुके हैं, ऑल्सो मोहम्मद यूसुफ खान का मैसेज आ गया है. अगर आपको फिर से सुनना है तो फिर से सुना देती हूँ. चलो
2: जी, हमारे यहाँ की खातिर तो जब आप आएंगे तब पता चलेगी. आप तो आएंगे?
3: अजी आएंगे क्यों नहीं, और जब हम आएंगे तो आतिशबाजियां होंगी.
0: क्या बात है, जब हम आएंगे लौट के तो आतिशबाजी तो नहीं लेकिन अच्छे वाले गाने जरूर वापस लेकर आऊंगे. तब तक के लिए शिल्पा राव और सचिन टंडन की आवाज में अगला गाना आपका इंतजार कर रहा है, और मैं आपका इंतजार कर रही हूँ व्हाट्सएप पर 5000196. मीनवाइल माइक से दिल तक आफरीन आपके साथ है और मिर्ची इट्स हॉट.

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: सिर्फ बंगाल के नहीं हिंदुस्तान के हिट हीरो, नाम है इनका जीशु सेनगुप्ता। इनसे एक बार पूछा गया,
2: हू इज मोस्ट लाइकली टू डाई टू प्रोटेक्ट यू? अपनी जान दे देंगे लेकिन आपको जरूर बचाएंगे।
3: आई हैव फ्यू पीपल, यस आई कैन से दे माय फ्रेंड्स, दे माय फैमिली, लाइक एट लीस्ट टू पीपल टू आई नो, आई एम नॉट नेमिंग देम बट
2: दे नो हु दे आर,
3: टू पीपल दे विल डाई फॉर मी, या आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड।
1: जीशु सेनगुप्ता, उस टू की लिस्ट में एक और नाम जोड़ दीजिए, थ्री कर दीजिए, बिकॉज़ आई विल आल्सो। ये यू आर लिसनिंग टू मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: हर बार वही रेगुलर रिचार्ज क्यों? अपने हाला नंबर के लिए ओरेडो का योर स्पेशल ऑफर पाइए, मोर वैल्यू मेड फॉर योर नीड्स। अभी ओरेडो ऐप पर चेक करें या करीबी रिटेलर से मिलें। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडो।
5: सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
6: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
7: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
5: उसे सब पता है।
8: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
5: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar, this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah.

0: मीठी सी आवाज जावेद अली की साथ देते हुए कीर्ति सगाथिया और पूजा राइटर रणवीर जी फिलहाल आपका साथ दे रही है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक सिंपली आफ्रीन का साथ है ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और आप लोगों ने भी बहुत ही खूब साथ दिया है मेरा यहाँ पर, कैसे वो है हमारा लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट की वजह से। देखिए भाई, एक ऐसी मूवी लेकर आई थी जो मुझे ऐसा लगा था कि भाई आप लोग तो ये 200% नहीं 1000% इसका तो जवाब बिल्कुल सही दोगे ही। हालांकि 98% लोगों ने सही जवाब दिया है, फिर भी वी हैव सम रॉन्ग आंसर्स विच Quite surprised me. किस चीज की बात हो रही है, कौन सी सीन की बात हो रही है, जो लोग अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं। सो 5000186 व्हाट्सएप नंबर है, आप अभी भी व्हाट्सएप कर सकते हो आंसर, ठीक है। सो हियर इज द सीन, सीन सुनो और बताइए कौन सी मूवी से है।
1: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट, सीन टेस्ट
2: जी हमारे यहाँ की खातिर तो जब आप आएंगे तब पता चलेगी। आप तो आएंगे?
3: अजी आएंगे क्यों नहीं, और जब हम आएंगे तो आतिशबाजियां होंगी।
0: जब हम आएंगे तो आतिशबाजी नहीं, अच्छे वाले गाने लेकर और जबरदस्त बातें लेकर तो जरूर आते हैं हम। सो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या आए हैं जवाब। तो कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि यार ये कयामत से कयामत तक हो सकती है, और फिर कुछ ने ऐसा भी कहा है।
4: गुड मॉर्निंग,
0: गुड मॉर्निंग।
4: डायलॉग इज फ्रॉम द मूवी अंदाज अपना अपना।
0: यू आर रॉन्ग अनफॉर्चुनेटली। Let's hear the right answer.
5: Mohammad Akhtar, the name of the movie is Hum Aapke Hain Kaun.
0: That is right. It is of course Hum Aapke Hain Kaun. बहुत सारे लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। Trisha का मैसेज है, फिर I have Mohammad Yusuf Khan, then I have Mohsin, then I also have Suleiman जिन्होंने फटाफट से मैसेज कर दिया था। फिर उसके बाद कौन है यहाँ पर, हीरा का मैसेज है, देन आई हैव समवन हियर। बहुत सारे मैसेजेस हैं भाई, अपने नाम लिखा करो, अगली बार से जरा मेहनत मत कराओ, ठीक है ना। चलिए हम आपके कौन के बारे में यार कितनी बातें करो उतनी कम है यार, देयर आर सो मेनी फन ट्रिवियाज अबाउट दिस मूवी। जैसे एक छोटा सा ये देख लिया, टफी, हु डजंट नो टफी। जितना ही इंपॉर्टेंस सलमान खान और माधुरी दीक्षित को इस मूवी में मिला है, उतना ही इंपॉर्टेंस टफी को मिला है। इनफैक्ट आफ्टर द फिल्म टफी को माधुरी दीक्षित ने एक्चुअली अडॉप्ट कर लिया था। यस, विद दिस बहुत सारी बातें, कभी फुर्सत में ना हम आपके अकाउंट के बारे में बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। तब तक के लिए वन ऑफ माय फेवरेट ट्रैक्स फ्रॉम दिस मूवी।

0: Mirji Mornings with Mirji Afreen. It's hot.
1: 89.6
0: Mirji One. It's hot.
2: वेल मिर्ची मॉर्निंग्स पर आफरीन जुड़ गई है आपके साथ मजेदार गाने और बहुत ही जबरदस्त बातें. हमारा फ्यूचर कतर कैसा दिखने वाला है कुछ थोड़े ही दिन में बताती हूँ. तब तक के लिए अगला गाना संजू राठौड़ की आवाज में एंजॉय कीजिएगा और मिर्ची घड़ी का इशारा जो है वो भी समझ लीजिए 8:01 की तरफ हो रहा है.
3: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.

देखिए 2022 के वर्ल्ड कप के बाद आपको ऐसा लगा कि ओ माय गॉड कतर कितना डेवलप हो गया है। देखिए नहीं दोस्त, ये तो बस ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है ना मेरे दोस्त। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। सिंपली आफरीन का साथ है दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग। और देखिए जैसे ही हम 2030 की तरफ जा रहे हैं ना, देर आर सम सीरियसली एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स इन द पाइपलाइन। फॉर एग्जांपल अगर बात करें सीमा प्रोजेक्ट के बारे में, तो ये 20 बिलियन कतर रियाल का प्रोजेक्ट है, जहां पर ये 8 मिलियन स्क्वायर मीटर्स में 7 किलोमीटर्स का लाइक वाटर फ्रंट होने वाला है यहाँ पर। एंड वेल इसी के अंदर आ रहा है लैंड ऑफ लेजेंड्स, 650,000 स्क्वायर मीटर्स का ये थीम पार्क, 7 थीम जोन्स एंड अराउंड 2 मिलियन विजिटर्स एनुअली अट्रैक्ट करने का टारगेट है। वाव, ये तो देखो सिर्फ टूरिज्म की बात हुई, लेकिन और भी अगर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वाटर टैक्सी प्रोजेक्ट का फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। इनिशियली जो है इसमें लुसेल, पर्ल और कॉर्निश, और आगे फ्यूचर फेजेस में कतारा, ओल्ड दोहा पोर्ट, हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अल वक्रा एंड इवेंचुअली अल खोर तक कनेक्टिविटी स्टडीज में है। सो वेल, और उसके बाद अगर बात करें दूसरे प्रोजेक्ट्स के बारे में, तो फिर कॉर्निश का ओल्ड फ्लावर मिल याद है आपको, पता है वेल 2030 में वही 8 मिल म्यूजियम बनने वाला है, कतर का मेजर इंटरनेशनल मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी आर्ट म्यूजियम। वेल बट व्हाट आई फाइंड इंटरेस्टिंग इज दैट कतर 2030 सिर्फ बिगर बिल्डिंग्स की कहानी नहीं लग रही है, इट्स अबाउट इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन एज वेल। एक तरफ टूरिज्म, कल्चर, एंटरटेनमेंट, मोबिलिटी एंड एक तरफ एक एनर्जी इकोनॉमी अपने नेक्स्ट चैप्टर के लिए मल्टीपल इंजन्स जैसे बिल्ड कर रही है। सो सवाल अब आपसे ये है कि 2030 का कतर देखने के लिए आप सबसे ज्यादा किस चीज के लिए एक्साइटेड है? द थीम पार्क्स, वाटर टैक्सीज, म्यूजियम, बताइए मुझे। 5000 1896 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मीनवाइल आई थिंक सो आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर द लैंड ऑफ लेजेंड्स। क्या मजेदार थीम पार्क होगा ना हमारे कतर में, और कितने लोग आएंगे इसे देखने के लिए। बने रहिएगा विथ मी, दैट इज आफरीन ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Milchi.
1: Escabana, escabana, sacabana.
2: Rambala.
1: Burga, burga. La vida para la burga.
2: Milchi, burga.
3: हेलो
4: हेलो भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है? रॉन्ग नंबर से
3: नहीं, कौन बात कर रहा है?
4: पहले बता, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है?
3: अरे नहीं भाई, कौन बोल रहा है यार?
4: अरे यार, मैं अपने बारे में बताता रहूंगा ना, तुझसे जो पूछा गया है उतना बता भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा
3: है। अरे तो पहले ये तो बता दे कौन है, कौन?
4: ओ मेरी बात सुन।
3: कौन बात कौन कर रहा है?
4: ओ महेश।
3: अरे महेश बात नहीं बोल रहा, रॉन्ग नंबर।
4: तो दे, जब जब रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना, पहले क्यों नहीं बोला? मैंने तो तुझसे पहले ही पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है तू।
3: अरे तो मैंने कहा तो रॉन्ग नंबर है, और क्या किस तरह से बोलूंगा?
4: तो मैंने शुरू में तुझसे पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो तूने तो ये कह दिया कि नहीं।
3: अरे तो
4: जब डर गया था
3: तेरे से, कहा तो मैंने कि रॉन्ग नंबर नहीं है, तो फिर उसके बाद क्यों फोन कर रहा है मेरे को?
4: ठीक है, मैंने तुझे फोन किया कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा, तूने कहा ना, और मेरी बात सुन ले महेश, आज मैं तुझे बता रहा हूँ।
3: अब मैं महेश बात नहीं कर रहा, क्यों बार बार महेश के पीछे पड़ा हुआ है? कितनी बार बोलूं, रॉन्ग नंबर है।
4: जब मैं शुरू में कह रहा था कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो फिर क्यों नहीं बोला तो रॉन्ग नंबर?
3: फिर वही बात को लेकर आ गया?
4: नहीं, मैं कोई बात को लेकर, और महेश मेरी बात सुन, अगर
3: अरे मैं महेश बात ही नहीं कर रहा, तो बार बार महेश महेश महेश क्यों कहे जा रहा है?
4: तो मैंने भी तो तुझसे शुरू में कहा कि महेश तेरे रॉन्ग नंबर है, तूने बाद में जब मेरे तुझे नाम पूछा तो कह रहा तू रॉन्ग नंबर है। सुनो, मैंने
3: वाली बातें कर रहा है क्या?
4: मैं कोई पागल वाली बातें नहीं कर रहा, और मेरी बात सुन ले महेश, बात को
3: मैं महेश हूँ ही नहीं, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर।
4: तो शुरू में तू बोल देता ना कि रॉन्ग नंबर है, मैंने तो तुझसे हजार बार पूछा ना।
3: महेश का नंबर ही नहीं है, तूने लगाया कहाँ है नंबर? पहले देख तो ले कितनी बार बोलूं भाई, ये रॉन्ग नंबर है यार।
4: तो रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना फिर? तो
3: भाई तू है कौन?
4: नहीं नहीं, मुझे बता, मुझे बता, रॉन्ग नंबर है ना ये?
3: हाँ रॉन्ग नंबर है।
4: तो रॉन्ग नंबर लेके क्यों घूम रहा है तू? राइट नंबर क्यों नहीं लेके घूमता? ये तो तू गलत कर रहा है ना, रॉन्ग नंबर लेके घूम रहा है। जब ले रहा था रॉन्ग ले रहा
3: राइट नंबर ले
4: ताकि रॉन्ग नंबर से बात ना करे, ठीक है?
3: अरे रॉन्ग नंबर, अरे
4: यार बहुत देखे तेरे जैसे, यार बहुत देखे तेरे जैसे। चल ठीक है, निकल तू यार,
3: चल जा, चल काम कर, चल
4: जा।
5: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहा था आपके।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
7: रेडी To learn?
8: Yes!
7: To play?
8: Absolutely!
7: To grow?
8: With Maserati!
7: This school season, fuel every day with delicious and nutritious Maserati fresh products.
8: Milk, cheese, yogurt, labneh, eggs!
7: From breakfast to lunchbox and snacks, Maserati has your family covered. Grow with Maserati freshly from Qatar.
9: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
10: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है, ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है।
11: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
10: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah live.

देखो मेरे बंधु, इस दिन से ज्यादा खुशी और कोई दिन में नहीं होती है महीने के। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को, और किसी के लिए आज का दिन हो सकता है, किसी के लिए कल का दिन हो सकता है, किसी के लिए परसों का दिन हो सकता है। वेल, मैं बात कर रही हूँ हमारे सैलरी का दिन, जिसकी वजह से आप ये एक दिन के लिए पूरा महीना इतनी मेहनत करते हो, इतना दिल लगा के काम करते हो, तो बस इसका इस्तेमाल भी बिल्कुल सही तरीके से होना चाहिए कि नहीं। देखिए, मेहनत का पैसा है, कमाया, अपने ऊपर खर्च किया, उसके बाद में अपने फ्यूचर के लिए थोड़ा सा सेव भी कर लिया है, या फिर अपने घर वालों के लिए भेजना है, तो फिर यार आईपे का एक्सचेंज रेट आज ये कहता है 71 रियाल के बदले मिल रहे हैं इंडियन रुपीज 26.16, वही जनाब पाकिस्तानी रुपीज इज एट 76.19। बांग्लादेशी टाका के बारे में अगर बात करें तो 71 रियाल के बदले मिल रहे हैं आपको 33.86, वही श्रीलंकन रुपीज इज एट 90.02 एंड नेपाली रुपीज इज एट 41.76। ये थे आज के एक्सचेंज रेट, घर भेजे पैसे, ढेरों सारी खुशियां, एंड खुशियों का नंबर वन फॉर्मूला 89.6 मिशी वन, इट्स हॉट।

ड्रिवन बाय शैकमैन ट्रक्स, जबरदस्त पावर और क्लीनर एनर्जी का नया चैप्टर. शैकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स एंड बूम ट्रक्स, पावर दैट सेव्स. डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कारमेल ग्रुप.

चाल माजा सोबत चाल, यानी चलो यार मेरे साथ चलो। और फिलहाल साथ चलने ही कह रही हूँ क्योंकि गेम लेकर आई हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। सिंपली आफ्टरीन का साथ है राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स एंड मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स। यस, मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स का खोलने का वक्त हो चला है, जहां पर इसमें से हर रोज एक ना एक अलग चैलेंजेस निकलते हैं, अलग सवाल निकलते हैं, अलग टाइप का गेम निकलता है। और आज क्या है मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स में, एक ऐसी मूवी की कहानी है जो आपने पहचाननी है। वेल, आज की जो कहानी है कुछ ऐसी है, सो हियर इट गोज। एक ग्रुप एडवेंचर के मोड में जंगल चले जाता है, ठीक है। एक एक करके लोग गायब होने लगते हैं और जो बंदा सबसे ज्यादा हेल्पफुल लग रहा होता है वही सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क निकलता है। बेसिकली सफारी की बुकिंग की थी, हॉरर पैकेज कॉम्प्लीमेंट्री मिल गया। बताइए कौन सी मूवी की बात कर रही है आफरीन। 5000 1896 इज द नंबर, फटाफट से बताइए कि ये आखिर बात कौन सी मूवी की चल रही है। जंगल की बात है, अजीबोगरीब एक्टिविटीज होती है, लोग गायब हो रहे हैं, एक अजीबोगरीब इंसान है इसमें। यस, दिस इज ऑल अबाउट वन मूवी। 5000 1896 इज माई व्हाट्सएप नंबर। तब तक के लिए लगाना अमर जलाल आई पी सिंह योहानी की आवाज़ में ऑन मिर्ची।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: राखी सावंत हाल ही में वर्ल्ड योगा डे गया है, जहां हमने तरह तरह के लोगों को योगा करते हुए देखा है। आप उनके बारे में क्या सोचती हैं?
3: बहुत सारे लोग योगा जो है ना वो एसी में बैठ के करते हैं, कुछ लोग ओपन करते हैं। हमारा योगा हॉट योगा है। प्लीज आप राखी सावंत के साथ कॉम्पिटिशन कीजिए योगा में, मैं आपको पक्का हरा दूंगी।
2: ऐसी कोई चीज है ही नहीं राखी सावंत जिसमें हम आपसे जीत सकते हैं। आप सुन रहे हैं मिर्ची, शी इज हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा।
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: घर बैठे चाहिए नया कार्ड? स्मार्ट चॉइस है ओरिरू मनी कार्ड। अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल। और सुनो, हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरू मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। TNC अप्लाई। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
5: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
6: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
4: उसे सब पता है।
7: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
4: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar, this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah.

0: बल्कि के और शान की आवाज में ये गाना 10 बहाने फ्रॉम द मूवी 10 राइट हियर ऑन मिर्ची. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. सुबह सुबह नया दिन नया हफ्ता आफरीन आपको ना काम पर लगा रही है, और वो ऐसा काम कि भाई दिमाग चलाओ, बताओ बताओ क्या जवाब है. ये सवाल जवाब का सिलसिला यहाँ पर चल रहा है, और गानों में यहाँ पर इतने ज्यादा आप गुम हैं, उस बीच में थोड़ा सा गेम भी खेल लीजिए. सो वेल, आज का गेम है मेरा मिस्ट्री बॉक्स, जहाँ पे मैं आपको एक मूवी की कहानी सुना रही थी अपने ही अंदाज में, और आपने गेस करना था कि आफरीन आखिर ये कौन सी मूवी है भाई. सो वेल, कहानी कुछ ऐसी है, एक ग्रुप एडवेंचर के मूड में जंगल चला जाता है, ठीक है. एक एक करके लोग गायब होने लगते हैं, और जो बंदा सबसे ज्यादा हेल्पफुल लग रहा होता है ना, वही सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है. बेसिकली सफारी बुकिंग की थी, हॉरर पैकेज कॉम्प्लीमेंट्री मिल गया. बताइए कौन सी मूवी है ये, मैं थोड़ी ना बताऊंगी, आप ही तो बताओगे. सो लेट्स हियर द आंसर्स.
1: गुड मॉर्निंग.
0: हाँ जी,
1: मेरा नाम उसामा है.
0: हाँ जी उसामा,
1: इस मूवी में थोड़ा लिटिल कंफ्यूजन है. दो मूवी हो सकते हैं, अच्छा, एक है अज्ञात, एक है कार्ड. इन दो मूवी में से कोई एक मूवी है, सिमिलर कॉम्बिनेशन है, दोनों मूवी मैंने देखा हूँ. कुछ थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, मोस्टली चांसेस है अज्ञात.
0: ओके लेट्स सी. हेलो, और कौन जुड़ा है हमारे साथ?
2: हाय आफरीन, गुड मॉर्निंग, दिस इज प्रिंसन हियर.
0: हां जी प्रिंसन,
2: आई गेस द मूवी इज काल, स्टारिंग अजय देवगन, जॉन अब्राहम, विवेक ओबेरॉय, ईशा दियोल एंड लारा दत्ता.
0: ऑल राइट,
2: थैंक्स एंड हैव अ लवली टाइम. बाय बाय.
0: ओके, यू डू हैव अ लवली टाइम एंड थैंक्स फॉर मैसेजिंग. या एंड मजे की बात ये है कि अज्ञात मूवी ना मेरे ध्यान में ही नहीं आई है, या मैंने देखी ही नहीं है. वेल 2009 की ये मूवी थी, जिसका स्टार कास्ट इतना पॉपुलर नहीं है. रामगोपाल वर्मा की मूवी थी, लेकिन हाँ हो सकती है ये सिमिलर लाइन्स पे है, लेकिन मैंने जो है ये काल मूवी ध्यान में रखते हुए आपको बताया था. जहाँ बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, उमेर का मैसेज है, कुंवर पांडे का मैसेज है, ताहिर का मैसेज है, मोहम्मद यूसुफ खान का मैसेज है, देन अल्ताफ का मैसेज है. यस, सीइंग द सेम थिंग कि यार आफरीन ये तो काल है, इसके अलावा और ये कुछ हो नहीं सकता. देखो मूवी की कहानी याद हो नहीं हो, लेकिन इसके गाने आई एम श्योर आपको याद है. तो सोनू निगम, कुणाल गांजावाला और सुनिधि चौहान की आवाज में ये मजेदार गाना एंजॉय करते हैं ऑन मिर्ची.

0: Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot. 89.6 Mirchi One. It's hot.
1: मिर्ची घड़ी का इशारा हो रहा है सुबह के 9:01 की तरफ. आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को एंड प्लेइंग वन ऑफ माय फेवरेट ट्रैक्स. नया गाना है, रेखा भरद्वाज की आवाज है, राघव कौशिक का साथ है, मुसाफिर कैफे का ये गाना हो ऑन मिर्ची. इट्स हॉट
2: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर.

0: Milci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na vidva la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: Hello.
2: Anji.
3: Vivek ji.
2: Anji, bataiye.
3: Vivek ji, मैं आपकी सोसाइटी से बोल रहा हूँ, सी ब्लॉक में मैं रहता हूँ. Vivek ji, आप माइंड ना करें तो दो मिनट आपके ले लूँ मैं.
2: Yeah, yeah, of course.
3: Vivek ji, आप इसको अदरवाइज मत लेना, लेकिन देखो मेरे को मालूम है फैमिली है, सब कुछ है, हर फैमिली में कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं. लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, सोसाइटी में बातें हो रही थी, मतलब आपकी और वाइफ की लड़ाई हुई होगी, तो मैंने तो लोगों को थोड़ा नज़रअंदाज करा, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं ना, लोग ले रहे हैं मज़े. अभी हम मीटिंग के लिए बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि तूने आवाज़ें सुनी विवेक जी और उनकी वाइफ की, चिल्लम चिल्ला हो रही थी. विवेक जी, बस मैं ये कह रहा हूँ, इस चीज़ का ना थोड़ा ख्याल रखो यार. मतलब हमें लगता है ऐसा है कि कहीं नहीं जा रही आवाज़, ग्लास व्लास से, क्योंकि गुस्से में उस वक्त को अंदाज़ा नहीं होता ना. और इन सब का काम पता है क्या, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये लेते हैं मजे, सारे मजे लेते हैं. लेकिन ऐसी बातें करेंगे, देखा तूने लड़ाई हो गई हस्बैंड वाइफ की. देखिए ऐसा नहीं है कि नहीं होती, हमारी भी हुई होगी, लेकिन थोड़ा ख्याल रखिए.
2: हाँ, ठीक ही कह रहे हो.
3: नहीं, मैंने तो देखिए, मैंने हमदर्दी में कहा, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता गुस्सा, मुझे भी कई बार गुस्सा आता है, मेरी वाइफ से हो जाती है. लेकिन क्या होता है ना, ये सोसाइटी में ना गलत असर पड़ता है. अच्छा चलो, असर की भी कोई बात नहीं, कौन सा हमें कोई खिला पिला रहा है, ये सब मजे लेते हैं.
2: अब आपको पता ही है, हर कोई हमारी तरह समझदार नहीं है, एक सोसाइटी वाले इतने. अभी पीछे वो गाड़ी का कांच टूट गया था मेरा, पीछे लग के उसमें इतना कलेश कर दिया था इन लोगों ने.
3: अच्छा,
2: इनको सब बातों में घुसने की आदत है, मेरे को समझ नहीं आता. हमारा घर है, हम जो मर्जी करें.
3: बिल्कुल
2: सही कह रहे हो, बट मैं ध्यान रखता
3: हूँ, ख्याल रखना. मिलते हैं किस दिन?
2: हाँ हाँ, जरूर जरूर, आपसे जरूर मिलेंगे.
3: क्या हुआ, क्या था भाभी से आपकी बात, क्या हो गई थी?
2: अरे कुछ नहीं यार.
3: नहीं, फिर भी क्या, मतलब काफी चीखी हुई आवाज है, क्या हुआ, क्या था?
2: अरे असल में हुआ कुछ नहीं था, इनकी मम्मी थी बस, हमारी मिसेज की.
3: अच्छा अच्छा.
2: उस टाइम पे मैं घर आया, मैं थोड़ा ड्रंक था, उनकी मम्मी का कलेश अलग हो गया.
3: अच्छा, ये कलेश, ये चिल्लाने लगी फिर आपकी वाइफ?
2: हाँ, अभी इन्होंने चिल्लाई तो फिर बुरा बहुत.
3: आप कह रहे हो चिल्लाई, चिल्ला के बोला क्या आपको? आप बताओ ना, मजे आ रहे हैं मेरे को, बताओ ना क्या हुआ फिर.
2: मजे आ रहे हैं,
3: बताओ ना क्या बोला, क्या बोला?
2: अरे
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची.

ऋतु पाठक की आवाज़, निखिल डिसूज़ा का साथ, राइट ईयर। ये गाना बहुत अरसे बाद आपने शायद सुना होगा। और मैं हूँ आफरीन आपके साथ। और वो कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन हमेशा सब्र करना या इंतजार करना हानिकारक भी हो सकता है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। गुड न्यूज लेकर आई हूँ आपके लिए। वो कुछ ऐसी है कि HMC में फर्स्ट स्पेशलिस्ट अपॉइंटमेंट का एवरेज वेटिंग टाइम जो 2024 में अराउंड 58 डेज था, अब रिड्यूस होकर अप्रॉक्सीमेटली 16 डेज हो गया है। यस, और HMC का एक्चुअल टारगेट है इसे 14 डेज तक लाना। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन बता देती हूँ, ये फॉलोअप अपॉइंटमेंट का वेटिंग नहीं है। अगर डॉक्टर आपको 3 या 6 महीने बाद बुलाता है, वो मेडिकली प्लान फॉलोअप हो सकता है। ये 16 डेज स्पेसिफिकली रेफरल के बाद फर्स्ट स्पेशलिस्ट अपॉइंटमेंट का एवरेज है, ठीक है। अब सवाल है कि 58 से 16 हुआ कैसे है? HMC ने इवनिंग क्लिनिक्स एक्सटेंड किए हैं, कुछ क्लिनिक्स में 2 शिफ्ट ऑपरेशंस लाए हैं, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ कोलैबोरेशन करके सिलेक्टेड केसेस को लोड डिस्ट्रीब्यूट किया है। बेसिकली इट्स अ सेम हेल्थ केयर इकोसिस्टम, लेकिन विद अ स्मार्टर कैपेसिटी मैनेजमेंट। और देखिए, काम की बात यह है कि HMC का लब्बे ऐप, दैट इज LBAIH, लब्बे ऐप जो है उसे जरूर एक्सप्लोर करिएगा। अपॉइंटमेंट मैनेज और कंफर्म करना, रेडियोलॉजी रिपोर्ट्स एक्सेस करना, प्रिस्क्रिप्शंस और मेडिकल इन्फॉर्मेशन देखना, काफी चीजें फोन से हैंडल हो सकती है। अपॉइंटमेंट का लास्ट 48 आवर्स में चेंज करना है तो आप को ये जो है, इसके बजाय आप सीधा नस्मैक ये ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं, या 16060 कॉन्टैक्ट करके भी कर सकते हैं। सो वेल, काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं। वैसे बेहतर हेल्थ केयर सिस्टम को और कैसे बेहतर बना सकते हैं, ये कोई HMC से सीखे। मैं हूँ आफरीन आपके साथ, राइटर ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: बैठे चाहिए नया कार्ड? स्मार्ट चॉइस है ओरिरू मनी कार्ड। अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल, और सुनो हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरू मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। टीएनसी अप्लाई।
1: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
0: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar, this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट एसटीटी स्नूनू। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह।

0: अच्छा बताओ, आप मानते हो कि नहीं, आजकल हम लोग वर्ड्स, अल्फाज इस सब से बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाते हैं ना। मतलब किसी ने बहुत अच्छा बोल दिया, बहुत अच्छा बिहेव कर लिया, तो हम अज्यूम कर लेते हैं वाओ व्हाट अ लवली पर्सन। लेकिन वक्त के साथ ना एक चीज जरूर समझ आती है। वो ये है कि गुड वर्ड्स एंड अ गुड हार्ट, ये दोनों बहुत अलग चीजें होती है। क्योंकि खूबसूरत बातें करना एक स्किल हो सकती है, लेकिन बिना किसी मतलब के किसी के लिए अच्छा होना, दैट्स डेफिनेटली अ कैरेक्टर। और इसी ख्याल पर आज माइक से दिल तक आफरीन आपके लिए अपनी डायरी से ये शायरी लेकर आई है।
1: आफरीन की डायरी से शायरी।
0: तो अर्ज किया है, ना मतलब का रिश्ता ना दिखावा कोई, सच्चे मन जैसी दौलत नहीं होती कोई। समझ रहे हो, ना मतलब का रिश्ता ना दिखावा कोई, सच्चे मन जैसी दौलत नहीं होती कोई, जो दिल से साफ हो वही खास होता है, बाकी तो हर चेहरा बस एक लिबास होता है।
2: चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना।
0: और शायद इसीलिए जिंदगी में लोग ज्यादा नहीं, सच्चे लोग कमाइए। दैट्स प्रोबेबली द रियल वेल्थ। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ, राइटर ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: Delhi Belly, Jalsa, Brown जैसे content के creator. मिस्टर अभिनय देव
3: मोस्ट लाइकली टू रिमूव बाल की खाल मतलब तह तक जवाब वो बताओ
4: वेट
3: टेल
4: आई हैव अ लिस्ट भयंकर समय लग जाएगा तो उसके अंदर ना घुसे तो ही बेटर है बट मेरे सब लोग आजू बाजू में वही हैं सब बाल की खाल निकालने वाले ही हैं कंटिन्यू व्हाट जी आई मीन ही इज पास्ड अवे बट माय फादर माय गॉड एनीथिंग दैट आई डू एनीथिंग दैट एनी स्क्रिप्ट आई सेड बट ऐसा क्यों अरे भाई साहब फिल्म है इमेजिन नो बट व्हाई एंड ही वाज अ फिल्म मेकर एन एक्टर हिमसेल्फ
2: अभिनय देओ द डायरेक्टर इज टॉकिंग अबाउट हिज फादर रमेश देओ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स द हिंदी एंड द मराठी सिनेमा हैज सीन आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट
0: बॉलीवुड बोल्डा बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
5: सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
6: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट
7: कैसे किया सीरियसली कैसे किया ये
5: उसे सब पता है
8: शी कैन रीड योर माइंड शी विल ब्लो योर माइंड शी इज कमिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम
5: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर स्पॉन्सर्ड बाय कतर कैलेंडर दिस 25th सितंबर एट QNCC एंड टू एट द डबल बोनांजा ऑफ एंटरटेनमेंट गेट रेडी टू वॉच म्यूजिक एंड डांस डुओ चरण एंड आरसी एक शाम एक स्टेज और दो कमाल बुक योर टिकट्स नाउ एट SCT स्नोनो टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स The Mentalist Suhani Shah.

मोनिका का डोगरा और विशाल ददलानी की आवाज में ये गाना राइट हियर ऑन मिर्ची एंड दूरियां हैं जरूरी ऑफ कोर्स, और लगता है अब थोड़ी दूरी मेरी और आपके लिए जरूरी है क्योंकि मेरे जाने का वक्त आ गया है। वैसे एक बात तो है, देखो दुनिया जितनी डिजिटल होती जा रही है ना, दूरियां उतनी ही छोटी होती जा रही है। अब देखो एक कार्ड के लिए भी कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। वेल आई एम टॉकिंग अबाउट ओरिडो मनी कार्ड, जिसके लिए घर बैठे अप्लाई करो, क्यू पोस्ट से डोर स्टेप डिलीवरी मिल जाएगी एनी वेयर इन कतर। एक्टिवेट करके लोकल या इंटरनेशनल शॉपिंग के लिए यूज करो, और हर एप्लीकेशन के साथ पता है क्या, अगर आप डाउनलोड करते हो तो आपको मौका मिलता है आईफोन 17 प्रो मैक्स जीतने का। Well, तो कार्ड की दूरियां ये तो क्यूपोस संभाल लेगा, लेकिन मेरी और आपकी दूरी वो सिर्फ कल सुबह तक की है। चलिए फिर मैं लेती हूँ अलविदा, आप अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है, अपना मूड ऑन और मिर्ची दोनों ऑन साथ में रखिएगा। टाटा बाय बाय सायोनारा, माइक से दिल तक आफरीन लेती है अलविदा, इजाजत है, सुनते रहेगा मिर्ची इट्स हॉट।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: हाय देयर, व्हाट्स अप, टेल मी।
0: मेरी सास मुझे काम वाली की तरह ट्रीट करती है, पूरा दिन काम बताती रहती है, क्या करूं?
1: ऑलराइट, डू वन थिंग ना, तुम भी हफ्ते में दो छुट्टियां ले लिया करो यार, क्योंकि क्या है ना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा।
2: खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़।

0: Mirchi and Shu, Mirchi and Shu, Mirchi and Shu, Mirchi and Shu.
1: Hello, hello. Good morning. Welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is Aaj Anshu with you. Well, आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए एक बार फिर से आ चुकी हूँ. एंड अगर आज के दिन को देखने की कोशिश करें, सो इंडीड इट इज़ अ वेरी स्पेशल डे बिकॉज फाइनली द स्कूल्स हैव रिज्यूम्ड, दे हैव रीस्टार्टेड. इंडियन स्कूल्स की बात करें, गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें, तो बस 2 महीने की छुट्टियाँ पूरी तरह से बिताने के बाद अब बच्चे जो हैं आज से एक बार फिर से पढ़ाई करें अभियान में लग चुके हैं, स्कूल चले अभियान में लग चुके हैं. वही अगर इंटरनेशनल स्कूल्स की बात करूं तो आज से शुरू हो रहा है बच्चों का नया सेशन, नया ईयर. सो सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत मबरूक. यही दुआ है यार दिल से, बच्चे जो हैं सबके तरक्की करें, उन्नति करें, जिंदगी में बहुत आगे बढ़ें. लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात बस यही कि एक नेक इंसान बनकर इस दुनिया की नज़रों में सामने ज़रूर आए. वैसे आवारगी की बात हमने की थी तो मम्मी आई एम प्रिटी श्योर ऑफिस जाने वाली तो निकल गई होंगी. एंड बाकी जो है आज से आपकी जिंदगी में किटी पार्टी वाला अभियान 101% शुरू हो ही चुका होगा. तो चलिए जी, जहां पे मेन अपने काम पे लग चुके हैं, बच्चे अपने काम पे लग चुके हैं, हम अपनी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट काम शुरू करें. आओ बहन चुगली करें. Alright, if you're listening to me, if you're connected with me, keep me posted. I would want to hear from you. 5001896. I'm eagerly waiting for your good morning messages. जो कोई भी मुझे सुन रहा है इस वक्त. Meanwhile, मैं जो है अच्छे गानों की लड़ी तड़तड़ी इस वक्त आपकी जिंदगी में लगाती हूँ लता मंगेशकर जी और उदित नारायण जी की आवाज में. ये अगला प्यारा सा गाना, एंजॉय. बंदी का नाम अंशु.

0: हेलो, संदीप नागपाल जी बोल रहे हैं?
1: हाँ जी बोल रहा हूँ।
0: हाँ जी, डीडीए से बोल रहा हूँ। आपका ये ड्राफ्ट भेजा है वापस, आपने डीडीए फ्लैट के लिए अप्लाई किया था ना?
1: तो हुआ कैसे है? मतलब हमें तो बड़ी उम्मीद थी भाई कि निकलेगा हमारा।
0: अब सर ये किस्मत की बात है सर, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते ना। अब जिसके निकल गए हैं वो लकी है सर। मैं तो बस आपसे ये कह रहा था, ये 7,500 रुपए का आपका ड्राफ्ट है जो वापस करना है, कहाँ कुरियर कर दूँ, आप आगे ले लेंगे इसको। 7,500 रुपए का?
1: अरे भाई साहब, मैंने 1.5 लाख रुपए जमा किया था, मैंने 7,000 रुपए दे रहा हूँ मुझे आप।
0: नहीं नहीं सर, ये 25,000 रुपए आपके प्रोसेसिंग फीस के कट गए।
1: किस चीज की फीस?
0: प्रोसेसिंग फीस जो आपने अप्लाई किया था ना डीडीए के फ्लैट के लिए।
1: तो भाई साहब ऐसा कहीं मेंशन नहीं था कि मैंने इसके फीस कटेगी नहीं कटेगी?
0: सर हर चीज मेंशन नहीं करी जाती ना, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। 50,000 रुपए आपके मशीन जो आपने बनवाई थी ना लकी ड्रॉ के लिए मशीन, उसके 50,000 रुपए कट गए आपके।
1: मतलब मेरे ड्रॉ के लिए कुछ स्पेशल मशीन बनी है क्या?
0: सर आपके ड्रॉ के लिए नहीं है सर, करोड़ों की मशीन है। आपके ड्रॉ के लिए नहीं, सबके ड्रॉ के लिए बने, उसे पर्चियां डलती है बहुत सारी करोड़ों के हिसाब से, वो मशीन महंगी आती है। 20,000 रुपए आपके प्रिंटिंग के कट गए हैं, 30,000 रुपए हमारे डीडीए का लोगो चेंज हुआ है, आप लोगों की वजह से लोगो चेंज होता है, और 15,000 रुपए सिक्योरिटी के हमने काटे क्योंकि सिक्योरिटी हमने लगा रखी है, कभी किसी को गुस्सा आ जाए ना। 7,500 रुपए आपके बचते हैं।
1: ये भी तुम्हें देखना पड़ेगा, ये हमें तुम फोन क्यों कर रहा हो?
0: ऐसे कैसे रख ले यार, आपका पैसा आपको वापस देंगे
1: हम। भाई आप ही रखो यार, आप हमें ज्यादा रख लो, ये बीच में रख लो हमें ज्यादा।
0: अरे यार
1: दो पब्लिक को यार।
0: तो यार ये आपको पहले सोचने देना संदीप जी, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा ना, ये तो कम डीडीए की तरफ से। आप एक तो गुस्सा ना करें, एक सेकंड फोन आ रहा है, रुकिए रुकिए। हेलो, हाँ हाँ जी बोल रहा हूँ डीडीए से। सर आपके 5,882 रुपए बनते हैं, आके ले जाइएगा ठीक है। हाँ संदीप जी, आप मेरी बात सुनिए संदीप।
1: हाँ बोलो बोलो
2: संदीप, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
4: It's all down to Dhoni, isn't it? 4 balls left, they need 12 runs to win.
5: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है।
6: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
5: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar, this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah.

0: फिल्म बागी, ये कैसी चीज़ है इस फिल्म की? बागी 4 की अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है इसने कोई बागीपन जो है ना हमारे साथ ना किया। गाना इतना खूबसूरत जो है। मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 10:24।
1: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.
0: वैसे एक बात बताऊं, ये खास बात ऐसी है जिसका इंतजार ना इस वक्त 100 मुल्कों के लोगों को हो या ना हो, लेकिन इस मुल्क के हर एक शख्स को जरूर है।

बादल बरसता। भाई साहब मेरे दिल में ना इस वक्त बस यही गाना लूप में चलता जा रहा है। अब उसका रीजन ऐसा है कि मैंने सुना है कि जब जब बारिश होती है तो कतर में कुछ हो ना हो, लेकिन हाँ मौसम बदलने का पैगाम जो है ये हमारी जिंदगी में जरूर आता है। देखिए बूंदा बांदी होगी इस बात का एस्टिमेशन लास्ट वीक जरूर था। मीटियोरोलॉजी डिपार्टमेंट से मुझे ये कहना है बारिश की बूंदे तो हुई नहीं, लेकिन हाँ पसीने के जरिए मैंने कहीं ना कहीं कुछ बूंद को 101% महसूस कर ही लिया। लेकिन इतना बता दूं राहत की बात यह है कि अगर कतर में पीक समर्स को देखने की कोशिश करें, वो दौर वो वक्त जब गर्मी जो है अपनी चरम परम सीमा पर होती है, तो भैया मौसम विभाग तो इस वक्त यही कह रहा है कि वो दौर आपने और हमने कर लिया है क्रॉस। लेकिन राहत जो है अभी तक आपके कलेजे और मेरे कलेजे को मिली नहीं, क्योंकि ये मिलेगी 20th of September के बाद ही। तब आप कतर में ग्रेजुअली टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप होते हुए देखेंगे। एंड इसके अलावा कोई और चीज है जो अप जाएगा? हाय इवेंट्स की बहार, सुहाना सा मौसम, वो वादियां जिसका इंतजार आपको और हमको इन कतर के हर एक शख्स को इस वक्त जरूर है। तो डेट जो है याद रखना 20 सितंबर। लेकिन उसके अलावा कोई और डेट है जो आपको याद रखना है, वो है 25th of September। कब कहाँ क्या कैसे अब से कुछ देर में। मीनवाइल रेखा भारद्वाज की आवाज राघव कौशिक का साथ एंड अगला प्यारा सा गाना एंजॉय बंदी का नाम अंशु।

0: वेल सोनू निगम की पावर पैक आवाज एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज, 90s के नॉस्टैल्जिया में डाइव इन करने का मजा जो है वो कुछ और है ना।
1: मिर्ची अंशु
0: वैसे इस वक्त एक बात बता दूं, चाहे मिलेनियल्स की बात करूं, जेंजीज की बात करूं, जेन अल्फा की बात करूं या किसी भी जनरेशन की बात करूं, सबको नॉस्टैल्जिक एक्सपीरियंस तो ये देंगी, लेकिन इसके साथ ही फ्यूचर से लेकर आज तक की पूरी कहानी जो है ना ये सारी प्रेजेंट करेंगी। वेल आई एम टॉकिंग अबाउट दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट एंड मैजिशियन सुहानी शाह, जो कि फाइनली कतर आने वाली है 25th of September को, एंड ये बात जो है अब तक आप बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो भैया देखिए, अगर बैक टू स्कूल की बात करें तो बच्चे अपने काम धाम पे लग गए, आप जो हैं अब तक काफी ऑक्यूपाइड थे, अब जरा आप भी काम धाम में लग जाएं। वेल फटाफट से आपको एक ही काम करना है, कतर की किसी भी लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म पर जाना है, चाहे मैं प्लैटिनम लिस्ट की बात करूं, क्यू टिकट्स की बात करूं, या तो फिर स्नूनू सिटी की बात करूं। जाइए अपनी टिकट्स जो है जल्दी जल्दी सिक्योर करके आए, मौका भी है दस्तूर भी। अगर तारीख को देखने की कोशिश करें तो एक महीने से कम का वक्त बचा है जब सुहानी का मैजिक आप कतर में लाइव विटनेस कर पाएंगे। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? इसके पहले कि मौका हाथ से निकल जाए, हथियार लो, पकड़ लो पूरी तरह से, बाद में तुम्हारे दिमाग को पकड़ने के लिए, वो सारे खाने चित करने के लिए वो तो आ रही सुहानी शाह लाइव 25th of September कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर। मीनवाइल मधुश्री की आवाज, ए आर रहमान की खूबसूरत सी कॉम्पोजिशन एंड ये प्यारा सा गाना फ्रॉम द फिल्म साथिया, एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: सोनी रजदान, आले और शाहीन, इन दोनों में से who's most likely to listen to you even today?
3: Difficult one.
4: Split between my children.
5: So both of them in different ways.
4: Yeah.
5: But yeah, they are receptive generally. But I think I must be irritating them a lot because I give too much advice. That's what you tell me. So क्या बोलूँ आपको?
2: सोनी रजदान, आपने कोई जवाब नहीं दिया. आलिया या शाहीन, किसी का नाम नहीं लिया. अगली बार जब आप आएंगे हम फिर से ये सवाल पूछेंगे. यू आर लिसनिंग टू मिर्ची, इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
6: सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
7: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
8: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
6: उसे सब पता है.
9: शी कैन रीड योर माइंड. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
6: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar, this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम, एक स्टेज और दो कमाल. बुक योर टिकट्स नाउ एट एसटीटी स्नोनो. टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स. द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव.

0: Adish Chauhan ki khoobsurat si awaaz and what a lovely track it is. Ye pyara sa gana from the film Cocktail 2. Ye to maine aapko suna diya, lekin bhai sahab inhe bhool paana bhi bada mushkil hai.
1: Mirchi Anshu.
0: हाला सच कहूं, उस वक्त अगर कतर में किसी रंग को देखने की कोशिश करें ना, तो हर जगह मुझे बस दो ही रंग नजर आ रहा है, वो है स्कूल डेज का रंग. एब्सोल्युटली. बच्चे जो हैं स्कूल के लिए निकल चुके हैं, एंड जेन्युइनली आज सुबह रास्ते में क्या भीड़ थी यार. अचानक से रियलाइज हुआ कि लोग बाग कतर में है, बहुत बड़ी तादाद में है. ये सब छुट्टियों से वापस आ चुके हैं, बहुत सारे लोग अपने काम जो है वो रिज्यूम कर चुके हैं. एंड रास्ते की बात करें तो मेन ऑक्यूपेंसी अगर किसी की रही तो वो है बच्चों की. धावा बोल रखा था इन्होंने अपनी बसेस के साथ, अपनी टैक्सीज के साथ, कि भैया हम आ चुके हैं, अब जो है ना साइड करो, जल्दी निकलो, लेट हो. लेकिन हाँ, हुकूमत जो है सबसे पहले हमारी चलेगी. चलिए, क्योंकि बैक टू स्कूल सीजन हमारी लाइफ में आ गया है, हम एक काम करते हैं कि मैं ना आज आपसे एक सवाल पूछूंगी, एक क्वेश्चन. एंड ये क्वेश्चन के अंदर छुपा होगा कोई एक ऐसा आइटम जिसे आपने अपने स्कूल टाइम पे यूज किया है, शायद किसी सब्जेक्ट पे या किसी और रीजन से. आपको गौर से सुनना है, एनालाइज करना है, मुझे ये बताना है कि मैं स्कूल टाइम के या स्टडी के उस कौन से आइटम की कहानी आपके बीच पेश कर रही हूँ, उसे क्या कहते हैं. अगर आइडेंटिफाई कर लिया, फटाफट से भेजना होगा करेक्ट आंसर 5001896 पर. 5001896 पर विल गेट कनेक्टेड देयर. हियर वी गो. मैथ्स की क्लास में मेरा बड़ा था रोल, हाफ सर्कल लेकिन यही था मेरा होल. ना मैं कंपास ना स्केल मेरी पहचान, लेकिन कोई एंगल कितना टेढ़ा है ये बताना जरूर है मेरा काम. मैथ्स की क्लास में मेरा था बड़ा रोल, हाफ सर्कल लेकिन हाँ यही था मेरा होल. ना मैं कोई कंपास ना स्केल मेरी पहचान, पर कोई एंगल कितना टेढ़ा ये बताना मेरा काम. 5001896. मैं इस वक्त किस आइटम की बात कर रही हूँ मुझे जल्दी से बताएं. मीनवाइल मलका याग्निक के नरेंद्र सिंह की आवाज में एक खूबसूरत सा गाना आप तक पहुंचाऊं. एंजॉय. बंदी का राम अंशु.

0: मुस्कान सुबोध शर्मा की खूबसूरत सी आवाज। एंड एब्सोल्युटली अगर रिश्ते की बात करें यार, आपका और हमारा रिश्ता 5 साल पुराना है, क्या बात कर रहे हो।
1: मिर्ची अंशु
0: यार, किसने बहुत खूब कहा है कि वक्त की सबसे खूबसूरत और सबसे हसीन बात बस यही है कि ये जो है कभी रुकता नहीं, ये कभी ठहरता नहीं। देखिए, मुझे पता ही नहीं चला कि कब 5 साल का ये सफर जो है मैंने मिर्ची के साथ और आप सबके साथ पूरा कर ही लिया। लेकिन अगर सफर की बात करें तो अब से कुछ देर पहले मैंने एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का सफर, इसकी जर्नी आपके बीच पेश की थी जिसने आपकी स्कूल वाली जर्नी में आपका काफी हाथ दिया है, या कहूँ आपका सर घुमाया है। मतलब से कुछ देर पहले मैंने आपके बीच पेश की थी एक पहेली जिसे बुझाकर आपको बस ये बताना था ये कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है या डिवाइस है जो स्कूल टाइम्स में आपके बेहद काम आता था एंड आज की डेट में आपके बच्चों के काम आ रहा है। चलिए, फॉर द सेक ऑफ पीपल हु हैव जस्ट जॉइन, मैं जल्दी से फिर से आपके बीच पेश करती हूँ। एंड अगर लग जाएगी भैया अभी भी हमने पहचान लिया है, सो 5000186 पर अपना करेक्ट आंसर जो है आप भेज ही देना। चलिए जी, मैथ्स की क्लास में मेरा बड़ा था रोल, हाफ सर्कल लेकिन भैया यही है मेरा होल। ना मैं कंपास ना स्केल मेरी पहचान, पर कोई एंगल कितना टेढ़ा है ये बताना जरूर मेरा काम। 5000186 मैं वेट कर रही हूँ आंसर्स का। ये देखो जी, शुरू हो गया सिलसिला। लेकिन सबसे पहले ऑडियो मैसेजेस अगर आप भेजते तो मुझे ज्यादा खुशी होती है। हैविंग सेड दैट, समीर थैंक यू सो मच, यूसुफ थैंक यू सो मच, मुदस्सर भाई थैंक यू, आप सबने जगा, इनफैक्ट और लोगों ने जगाया दस पूरी तरह से सही। इसे हम कहते हैं प्रोट्रैक्टर या तो फिर चांदा, हम तो बचपन में से चांदा ही कहा करते थे। लेकिन पता है क्या, अगर मैं चांदे की कहानी बताऊं, प्रोट्रैक्टर की कहानी बताऊं जो आज की डेट में एंगल्स को मेजर करने के काम आता है, तो भैया इसकी हिस्ट्री बड़ी ही कमाल है। लेकिन सारी बातें अभी बता दी तो बाद में क्या करेंगे, अब से कुछ देर में। अभी फिलहाल हाफ सर्कल ना सही फुल सर्कल में संजू राठौड़ की आवाज़ में अगला गाना सुनाऊं, एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: Mirci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Yabana. Burga, burga. Na vidva la burga. Mirci, burga.
2: Hello.
3: Hello.
2: कौन?
3: Hello, Vipin.
2: कौन बोल रहा है?
3: इस्ता. मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ. आपने पासपोर्ट अप्लाई किया था?
2: हाँ, पासपोर्ट अप्लाई किया था.
3: आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो. कब अप्लाई किया था आपने?
2: भाई इतने धीरे क्यों बोल रहा है?
3: भाई मानो मेरे बॉस सो रहे हैं. मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ. और बॉस की आँख खुल जाती है ना किसी की आवाज से. पासपोर्ट जिसका बन रहा होता पाड़ के फेंक देते हैं. 15 रिजेक्ट कर चुके, समझ गए? इसलिए कह रहा हूँ तुम्हारे फायदे की बात. और तुम स्पीकर फोन पे और सरासा भी तेज बोलोगे उनकी आँख खुल जाएगी, फिर चिल्लाएंगे तब क्यों आवाज आ रही है. मैं कहूंगा कि पासपोर्ट बनाने की बात कर रहा था. कहते इधर देश का पासपोर्ट का. अब ये आग लगा दो इसमें. इसलिए कह रहा हूँ धीरे बोलो, आप क्या फायदा है. आप बताओ कब किया था?
2: अभी पहले किया था.
3: अच्छा अच्छा, आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा की थी? आप खुद आए थे?
2: ऑनलाइन की थी.
3: भैया इस तो बोल, अभी करवट ली है तेरी आवाज से और हमारी आवाज से. अभी खड़े हो ऐसे हो रहे थे. कौन है? मैंने कहते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. आपको जाना जरूरी है पासपोर्ट लेके.
2: जाना जरूरी है.
3: कहाँ जा रहे हो?
2: दुबई.
3: अच्छा, तो दुबई जाना है.
2: भाई जल्दी जाना है, तुम निकलवा दो अगर जल्दी हो सके तो.
3: नहीं, मैं पक्की बात कर लूंगा, बस इनकी आँख नहीं खुलनी चाहिए. हो सकता है कल ही मिल जाए.
2: हाँ ठीक है ठीक है.
3: मैंने सही किया ना बता दिया, वरना ये तो बौखला जाता ना. ये पासपोर्ट के चितड़े उड़ाते था.
2: आपने सही कह रहे
3: हैं. हाँ, तेज मत बोलना जब तक पासपोर्ट का काम ना हो जाए.
2: नहीं बोलना.
3: भाई साहब एक बात बताऊँ?
2: बताओ.
3: आपसे बात करके मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है. मैं ऐसी बात करता था, कैसी हो? वो कहती थी मैं ठीक हूँ पापा है बराबर में. आपको नहीं लग रहा जैसे रात में बात करते हैं?
2: मैं तो पागल है क्या?
3: चिल्लाओ मत. ठीक है मैं रखता हूँ.
2: करवा देना भी है आपसे.
3: मरवाओगे क्या? उठ जाएंगे.
2: सॉरी.
3: ठीक है चलो, पासपोर्ट मिल जाएगा या बस सेफ फ्लाइट.
2: ओके.
3: आई लव यू.
2: आई लव यू टू.
4: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैं मुर्गा बना रहा था आपके.
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
6: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
7: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है.
8: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
7: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah live

0: ऑल राइट, सारी की सारी नगरिया तो हमने और आपने मिलकर रंग ही दी।
1: मिर्ची अंशु
0: बोल, इतना बता दूं अगर आज कोई रंग को देखने की कोशिश करें तो हर किसी की जुबान पे अगर कोई बात है, हर रंग अगर किसी रंग से मैच होता है तो भैया वो है हमारे बचपन के रंग से, स्कूल के दिनों से। बस सबसे कुछ देर पहले मैंने आपसे एक सवाल पूछा था प्रोट्रैक्टर यानी कि चांदे को लेकर। हाँ जी, बस वही डिवाइस, वही चीज़, वही इंस्ट्रूमेंट जो कि यूज़ किया जाता था स्कूल डेज में ताकि हम जो है एंगल्स को नाप सकें और हर बार टीचर्स के सामने कन्फ्यूजन में ये पूछ सकें कि मैम 60 डिग्री इधर से लेना है या 60 डिग्री उधर से लेना। यार मुझे जेन्युइनली बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता था इनिशियली कि भाई 120 डिग्री भी तो 60 डिग्री को ही दिखाता है ना, अगर मैं उधर से लेने की कोशिश करूं और अगर मैं लेफ्ट साइड से लेने की कोशिश करूं तो यहां से भी 60 डिग्री आता है, तो एक्चुअल 60 हुआ तो कौन सा हुआ। दोज डेज मैन, कितना वक्त लगा था सीखने में, लेकिन जब एक बार सीख गए तो लगता था भाई ये तो कितना ईजी है। लेकिन एक बात पता है, वो चांदा जो आज की डेट में बच्चों की ज्योमेट्री बॉक्स में पूरी तरह से रूल करता है या तो कहूँ कभी कभी छुप कर बैठता है, अगर इसकी हिस्ट्री को देखने की कोशिश करेंगे सो प्रोट्रैक्टर की हिस्ट्री है तकरीबन 5 साल से ज़्यादा पुरानी। बिल्कुल, इनिशियली समंदर में शिप्स को डायरेक्शन दिखाने वाली चीज़ अगर कोई होती थी सो दैट वॉज प्रोट्रैक्टर। होता यह था कि नेविगेटर्स एंगल्स और चार्ट्स की मदद से शिप की डायरेक्शन प्लॉट करते थे और प्रोटेक्टर जैसे डिवाइस जो थे नेविगेशन का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गए। लेकिन किसने सोचा था कि वही प्रोट्रैक्टर कल के दिन ज्योमेट्री बॉक्स में किसी कोने में छुपके बैठेगा एंड बच्चों की जिंदगी को पूरी तरह से हलाकान करके रखेगा। चलिए जी, क्या आपको चांदे से एंगल निकालना बचपन के दिनों में काफी आसान लगा करता था या आपने भी बहुत सारे चैलेंजेस उठाए? 5000186 आई वेट फॉर योर मैसेजेस। इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु, मीनवाइल अरिजीत सिंह की प्यारी सी आवाज में लापता लेडीज से ये पता ठिकाने वाला गाना। एंजॉय, बद्दी का नाम अंशु।

0: तो भाई साहब इतना ही बता दूं कि अभी ये जाने की बारी इनकी कहाँ है, अभी तो ये आने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक सुना आपने,
1: मिर्ची अंशु।
0: एब्सोल्युटली, अगर आज की तारीख को आप देखने की कोशिश करेंगे तो हम पहुंच चुके हैं महीने की 30 तारीख पर, यानी कि वही वक्त वही समय जब सैलरी जो है हमारे अकाउंट में दस्तक देती है एंड देने के बाद 2-3 दिन अच्छे खासे मूड में रहती है एंड उसके बाद डिसाइड करती है कहाँ जाना है, कहाँ निकलना है। नहीं, कईयों के तो पूरी की पूरी उनके अच्छे खासे अकाउंट में पहुंच कर रंग बदल कर उसकी शोभा भी बढ़ाती है। अगर आप उस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो जरा देखें आज आईपे मनी में अच्छे एक्सचेंज रेट्स का क्या ही भौकाल यानी कि बोलबाला है। Well, अगर आप ट्रांसफर करना चाहेंगे तो 1 रियाल के अगेंस्ट आपको मिलेंगे इंडियन रुपीस 26.15 एंड साथ ही पाकिस्तानी रुपीस 76.19, नेपाली रुपीस 41.76, लंकन रुपीस 90.02 एंड इसके साथ ही बांग्लादेशी टाका 33.86। तो बस घर भेजे पैसे, ढेर सारी खुशियां, लेकिन अभी फिलहाल जिंदगी में खुशी को बरकरार रखने के लिए टिक के बने रहें, सुनते रहें कतर का नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, इट्स हॉट। ऊपर वाले की इबादत के नाम कुछ वक्त कुछ देर में होंगी और भी बातें, एंजॉय।

0: Kavita said in Neeraj Sridhar ki power pack awaaz and I absolutely love this track during cocktail 1 and cocktail 2 mein bhi wahi magic hamari zindagi mein lata hua hai ye gana to aa gaya lekin aapki zindagi mein kuch aur in koi aur na hai uske liye aap jo na is waqt ye kaam zarur kar le
1: mirchi anshu
0: यार मुझे एक बात लगती है कि अगर लोगों के पास बहुत ज़्यादा जब पैसा हो एंड दिमाग में ये सब चलने लगे ना कि भाई खर्च करें तो कहाँ करें कैसे करें तो मैं इन लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि आप जो है ना ज़िंदगी में इतनी टेंशन लेते हो कि आखिरकार पैसे को कमाए तो कमाए कैसे तो जो खर्च करने वाला टेंशन है ना वो हम पे छोड़ दो हमें तो हम बताएंगे अच्छी तरह से कैसे खर्च किया जाता है नहीं किसी और चीज़ पर आप बेफिजूल पैसे डालें यू नो फाइन पे करें उससे अच्छा तो ये है ना किसी को दे दें वो अच्छी तरह से सेलिब्रेट करते हुए आपके पैसे को खर्च करेंगे मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो 10 बार वार्निंग मिलने के बाद भी मिनिस्ट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हैं उसके बाद उन्हें बड़ा मजा आता है अपने पॉकेट की चपत लगवाने में वेल एक बार फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वक्त आपके सामने मैं रीइटरेट कर दूं जितने भी कतर ड्राइविंग टैक्सीज हैं जितने भी मोटरिस्ट हैं चाहे वो लिमोजिन्स हो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस हो एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि भाई साहब ये बेहद जरूरी है इस वक्त कि गाड़ी चलाते वक्त आपके पास आपका वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है इनफैक्ट कोई भी इस वक्त जो व्हील्स पर है ये बात समझ आए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना इंपॉर्टेंट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो अगर आप फाइन्स को ही देखने की कोशिश करें तो तकरीबन 50,000 रियाल तक का आपको फाइन पे करना पड़ सकता है इसके अलावा और भी बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं हर बात मैं बताऊँ ये अच्छा थोड़ी ना लगेगा कुछ चीज़ें जो आप खुद एक्सपीरियंस करें वो ज़्यादा अच्छा लग गया अगर ऐसा नहीं करना है तो जब भी घर से बाहर निकले अपनी गाड़ी की सीट पर बैठे तो सबसे पहले ये इंश्योर करें घर वाली छूट जाए तो छूट जाए लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो बिल्कुल भी ना छूटे बाकी जो बिना फाइन के बचे हुए पैसे हैं उसकी मिलके पार्टी कर लेंगे यार टेंशन नहीं है आप पैसे आप खर्च करो पार्टी में मिर्ची की पलटन जरूर आएगी अनिरुद्ध रविचंदेर की आवाज विशाल डिडलानी के साथ ये अगला पावर पैक गाना आपके लिए एंजॉय बंदी का नाम अंशु

0: मोहित चौहान की खूबसूरत सी आवाज़ एंड व्हाट अ लवली व्हाट अ सोलफुल ट्रैक इट इज. सच कहूँ यार, कुछ गाने जो टाइमलेस हैं. तो जब वी मेट फिल्म से ये एक गाना ऐसा जरूर है.
1: मिर्ची अंशु.
0: देखो यार, बात नहीं है कि ये गाना जो है ज़रूर टाइमलेस है, लेकिन इस पर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो टाइमली इन्वेस्टमेंट सालों सालों तक आपकी ज़िंदगी में मुनाफा और खुशहाली जो है ना, वो दोनों ले ही आ सकता है. ये बात आप जानते हैं कि ज़िंदगी में अगर खरे की बात करें तो कोई हो या ना हो, लेकिन सोना जो है हर दौर में हर हाल में हमेशा खरा रहा. एंड इस पर इन्वेस्टमेंट जो है आपकी ज़िंदगी में तरक्की और बरकत जो है वो लेकर ज़रूर आया. चलिए देखते हैं कि आज का सोना क्या ही बोलता है. वाले इतना बता दूं, अगर आज आप परचेज करना चाहेंगे सो पैम्प 1 ग्राम गोल्ड लेडी फॉर्चून बार विल कॉस्ट यू ₹604. मूविंग अप, टॉकिंग अबाउट 5 ग्राम गोल्ड लेडी फॉर्चून बार, इट विल कॉस्ट यू ₹2843. एंड इसके साथ ही अगर हम द गॉर्जियस पैम्प 10 ग्राम गोल्ड लेडी फॉर्चून बार की बात करें सो इट इज प्राइस्ड एट ₹5616. साथ ही 1 ounce की अगर मैं बात करूं सो इट इज प्राइस्ड एट ₹17363. लेकिन साथ ही अगर 10 तोले की बात करें सो पैम्प 10 तोला गोल्ड बार टुडे इज प्राइस्ड एट 64,494. तो सोने का खजाना जो है अपने पिटारे पे एक बार फिर से बनाने की तैयारी आप कर ही लें. अच्छे खासे रेट्स हैं, जाइए परचेस करिए. बाकी आप जो खरीदेंगे, ज्वेलरी बनाएंगे, पहनने का काम हम कर लें. एंजॉय. बंदी का नाम अंशु.
2: Stay ahead of today's gold rates with Alfardan Exchange, PAM's official agent in Qatar. Buy authentic Swiss-made 24-carat PAM gold bars
3: and earn Qatar Airways Avios today.
2: Visit our branches or download the

0: Milchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga. Milchi burga.
2: हेलो
3: हेलो भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है? रॉन्ग नंबर से
2: नहीं, कौन बात कर रहा है?
3: पहले बता, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है?
2: अरे नहीं भाई, कौन बोल रहा है यार?
3: अरे यार, मैं अपने बारे में बताता रहूंगा ना, तुझसे जो पूछा गया है उतना बता भाई, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा
2: है। अरे तो पहले ये तो बता दे, कौन है? कौन?
3: ओ मेरी बात
2: कौन
3: सुन,
2: बात कौन कर रहा है?
3: ओ महेश।
2: अरे महेश बात नहीं बोल रहा, रॉन्ग नंबर।
3: तो दे जब रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना, पहले क्यों नहीं बोला? मैंने तो तुझसे पहले ही पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा तू।
2: अरे तो मैंने कहा तो रॉन्ग नंबर है, और क्या किस तरह से बोलूंगा?
3: तो मैंने शुरू में तुझसे पूछा था ना, रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो तूने तो ये कह दिया कि नहीं।
2: अरे तो जब डर गया था तेरे से, कहा तो मैंने कि रॉन्ग नंबर नहीं है, तो फिर उसके बाद क्यों फोन कर रहा है मेरे को?
3: ठीक है, मैंने तुझे फोन किया कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा, तूने कहा ना। और मेरी बात सुन ले महेश, आज मैं तुझे बता रहा हूँ।
2: अब मैं महेश बात नहीं कर रहा, क्यों बार बार महेश के पीछे पड़ा हुआ है? कितनी बार बोलूं रॉन्ग नंबर है?
3: जब मैं शुरू में कह रहा था कि रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है, तो फिर क्यों नहीं बोला तो कि रॉन्ग नंबर?
2: फिर वही बात को लेकर आ गया?
3: नहीं, मैं कोई बात को लेकर। और महेश मेरी बात सुन, अगर
2: अरे मैं महेश बात ही नहीं कर रहा, तो बार बार महेश महेश महेश क्यों कहे जा रहा है?
3: तो मैंने भी तो तुझसे शुरू में कहा कि महेश तेरा रॉन्ग नंबर है, तूने बाद में जब मैंने तुझसे नाम पूछा तो कह रहा तू रॉन्ग नंबर है। शुरू में
2: वाली बातें कर रहा है?
3: मैं कोई पागल वाली बात नहीं कर रहे। और मेरी बात सुन ले महेश, बात को
2: मैं महेश हूँ ही नहीं, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर।
3: तो शुरू में तू बोल देता ना कि रॉन्ग नंबर है, मैंने तो तुझसे हजार बार पूछा ना।
2: महेश का नंबर ही नहीं है, तूने लगाया कहाँ है नंबर? पहले देख तो ले कितनी बार बोलूं भाई, ये रॉन्ग नंबर है यार।
3: तो रॉन्ग नंबर से बात कर रहा है ना फिर? तो
2: भाई तू है कौन?
3: नहीं मुझे बता, मुझे बता, रॉन्ग नंबर है नहीं?
2: हाँ रॉन्ग नंबर है।
3: तो रॉन्ग नंबर लेके क्यों घूम रहा है तू? राइट नंबर क्यों नहीं लेके घूमता? ये तो तू गलत कर रहा है ना, रॉन्ग नंबर लेके घूम रहा है। जब ले रहा था
2: रॉन्ग ले रहा हूँ
3: राइट नंबर ले ताकि रॉन्ग नंबर से बात ना करे, ठीक है?
2: अरे रॉन्ग नंबर,
3: अरे यार बहुत देखे तेरे जैसे, यार बहुत देखे तेरे जैसे। चल ठीक है, निकल तू यार,
2: चल जा, चल काम कर, चल हट।
4: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
6: ड्रिवन बाय Shackman Trucks, जबरदस्त पावर और क्लीनर एनर्जी का नया चैप्टर। Shackman हैवी ड्यूटी ट्रक्स एंड बूम ट्रक्स, पावर दैट सेव्स। डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कार्मेल ग्रुप। घर बैठे चाहिए नया कार्ड? स्मार्ट चॉइस है ओरिरु मनी कार्ड, अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल, और सुनो हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू iPhone 17 Pro Max। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरु मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। TNC अप्लाई।
7: It's all down to Dhoni, isn't it? 4 balls left, they need 12 runs to win.
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है।
8: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
6: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah live.

0: जुबिन नौटियाल की खूबसूरत सी आवाज़ एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज़। ये प्यारा सा गाना तो उस वक्त मैंने आपको सुना दिया, लेकिन आखिरी नहीं यार, ये बात तो पहली है।
1: मिर्ची अंशु।
0: Now this is the first question that my mom would often ask me the moment I would reach home. बात है मेरे स्कूल के दिनों की, बचपन के दिनों की। यार बच्चे जब भी स्कूल जाते हैं ना एंड जब वापस आते हैं तो वो काफ़ी एक्साइटेड होते हैं या तो फिर बहुत थके होते हैं, डिपेंडिंग ऑन मूड, वेदर, स्कूल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एंड पेरेंट्स जो होते हैं ना, इनके अंदर बहुत सारी इनक्विजिटिवनेस होती है कि भैया आज स्कूल में क्या ही क्या होगा। एंड सबके चलते हमारे दिमाग से, हमारे जहन से अगर सबसे पहला सवाल कुछ निकलता है तो बस यही कि कैसा रहा तुम्हारा दिन, पढ़ाई अच्छे से की, टीचर ने डांटी, टिफिन पूरा खाया। तो जितने सवाल, जितने क्वेश्चन हमारे मतलब के हैं, हम जो है उनसे सब पूछ लेते हैं। तो वो ये ज़रूरी है कि स्कूल जाएं तो पढ़ाई अच्छे से करके आए, ये भी बहुत ज़रूरी है कि स्कूल जाएं, आपने इतनी मेहनत से टिफ़िन पैक किया है तो वो लंच बॉक्स पे अपना कंप्लीट करके आए, टीचर ना डांटे ये भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन डांट खाए बिना हम जो है सिर्फ बातों से सीधे हो पाएं, जब तुम ऐसे ना थे तो तुम्हारे बच्चे कैसे होंगे। यार इन सभी बातों के परे अगर सबसे ज़रूरी बात कुछ है ना, तो ये भी सोचना और ये भी समझना कि क्या तुम्हारा बच्चा आज किसी की मदद कर पाया, क्या आज वो किसी की मुस्कान की वजह बन पाया, क्या आज किसी रोते हुए को हंसाने में उसने ज़रा सा कंट्रीब्यूशन दिया। या मेरी मम्मी ना मुझसे हमेशा एक बात पूछती थी कि ये तो ज़रूर पूछती थी कि तुम्हारा दिन कैसे बीता, लेकिन ये पूछती थी अच्छा ये बताओ आज स्कूल में सबसे अच्छा पार्ट क्या रहा, आज तुमने किसकी हेल्प की, अच्छा किसी ने तुम्हारी हेल्प की, किस तरह से हुआ। एंड ये सारी कहानी पूरी होने के बाद फिर आती थी पढ़ाई एंड टिफिन की कहानी। वेल हम पढ़ लिख कर बहुत अच्छे तो बन जाएंगे, बहुत आगे भी निकल जाएंगे, काफ़ी फ़ख्र भी होगा यार हमारे बच्चों ने ज़िंदगी में अच्छा किया तो कितना अच्छा किया, कितनी अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं, कितने ऊँचे पोजिशन पर हैं। पर इन सब के अलावा अंदर से ऑर्गेनिकली जब तक एक बहुत अच्छे इंसान ना बने ना, तो सारी चीज़ें बहुत पीछे हैं। तो पढ़ाई लिखाई की वैल्यूज़ बैक टू स्कूल सीज़न में अपने बच्चों के अंदर ज़रूर डालें, लेकिन यार एक अच्छा इंसान बनाने की भरपूर कोशिश है ना आप और हम मिलकर 101% करें। युहानी की आवाज़ जुबिन नौटियाल का साथ है, नहीं अगला प्यारा सा गाना एन्जॉय, बंदी का नाम अंशु।

0: कुमार की आवाज एन, ये प्यारा सा गाना तो उस वक्त मैंने आपको सुना दिया, लेकिन अगर नाम पुकारने की बात करें तो पूरी आवाम, पूरी दुनिया, जनता अगर किसी का नाम पुकार रही है, खासकर कतर, तो बस इनका।
1: मिर्ची अंशु
0: आज ही दिल से तुमने पुकारा और हम चले आए, और अपने साथ किसी और को लाने का वादा भी निभाए। कौन, कैसे, कब, इतना बता दूं 25th ऑफ सितंबर जो है ना, आपकी और हमारी जिंदगी में तारीख बहुत जल्द आने वाली है। एंड अब तक जितनी बार तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें एक आंसर नहीं रटाया होगा, मैंने तुम्हें 101% ये याद करा दिया है। 25th ऑफ सितंबर फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ कतर अगर कोई परफॉर्म करने आ रही है तो वो है सुहानी शाह, एब्सोल्युटली लाइव इन दोहा। देखो यार, यहाँ पे ना बचपन की एक बात मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, किस तरह से हमें पढ़ाया जाता था कि बेटा अगर तुम कमरे के किसी कोने पे बैठे हो तो तुम ऐसे जोर जोर से बोल बोल के रट्टा लगाना है कि अगर मम्मी किचन में है ना तो उनके कानों तक आवाज पहुंचनी चाहिए, अगर ना पहुंची तो उनके बेलन, जूते, चप्पल की आवाज जो है उसके बाद पूरे दिन तुम्हारे पास, तुम्हारे कानों में जरूर गूंजेगी। वाल उस वक्त मम्मी के दिमाग में आज क्या चल रहा है ये तो हम पहचान ना पाए, लेकिन हाँ ये बंदी ऐसी है, सुहानी शाह ऐसी है जो तुम्हारे अलावा पूरी दुनिया के दिमाग में क्या चल रहा है बहुत अच्छी तरह से जानना, पहचानना, मानना जानती है, लेकिन हर किसी को अपना हुनर ना दिखाती। तुम्हें दिखाने आ रही है तो देखने को हो जाओ तैयार। वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट मैजिशियन सुहानी शाह, इस इवेंट के लाइव टिकट्स लेनी है तो फटाफट से आपको जाना है क्यू टिकट्स पर, प्लैटिनम लिस्ट पर या स्नूनू सिटी पर। एंड अभी भी अर्ली बर्ड डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा 160 रियाल्स में 2 टिकट्स मिल रही है। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, गो एंड गेट योर टिकट्स नाउ। विशाल शेखर की कॉम्पोजिशन, शिल्पा राव एंड मेलो की आवाज में अगला प्यारा सा गाना, एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: Delhi Belly, Jalsa, Brown जैसे content के creator. मिस्टर अभिनय देओ
2: मोस्ट मोस्ट लाइकली टू रिमूव बाल की खाल मतलब तह तक जवाब वो बताओ
3: वेट वेट
2: टेल
3: आई हैव अ लिस्ट भयंकर समय लग जाएगा तो उसके अंदर ना घुसे तो ही बेटर है बट मेरे सब लोग आजू बाजू में वही हैं सब बाल की खाल निकालने वाले ही है कंटिन्यू व्हाट आई मीन ही इज पास्ड अवे बट माय फादर माय गॉड एनीथिंग दैट आई डू एनीथिंग दैट एनी स्क्रिप्ट हैज बट ऐसा क्यों अरे भाई साहब फिल्म है इमेजिन नो बट व्हाई एंड ही वाज अ फिल्म मेकर एन एक्टर हिमसेल्फ
1: अभिनय देओ द डायरेक्टर इज टॉकिंग अबाउट हिज फादर रमेश देओ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स द हिंदी एंड द मराठी सिनेमा हैज सीन आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट
0: बॉलीवुड बोल्डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
4: सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं
5: या आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट
6: कैसे किया सीरियसली कैसे किया ये
4: उसे सब पता है
7: शी कैन रीड योर माइंड शी विल ब्लो योर माइंड शी इज कमिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम
4: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर स्पॉन्सर्ड बाय कतर कैलेंडर दिस 25th सितंबर एट QNCC एंड टू एट द डबल बोनांजा ऑफ एंटरटेनमेंट गेट रेडी टू वॉच म्यूजिक एंड डांस डुओ चरण एंड आरसी एक शाम एक स्टेज और दो कमाल बुक योर टिकट्स नाउ एट SCT स्नोनो टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स The Mentalist Suhani Shah live

0: शत्रुपति एंड व्हाट अ टेरिफिक ट्रैक इट इज. बस ये वही गाना है जो 90s के दौर में हर एक कॉलेज, हर एक स्कूल से लेकर हर एक पार्टी की शान जो है वो जरूर बना. एंड भाई साहब, जिस इस गाने पे जिसने श्री देवा देवी वाले एक्सप्रेशन के साथ परफॉर्म कर लिया ना भाई, हमारे स्कूल कॉलेज का रॉक स्टार तो बस वही.
1: मिर्ची अंशु.
0: वेल, सच कह रही हूँ, इस वक्त हवा की तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ कोई और चीज़ है जिसके बारे में 101% पता है. बचपन से ही अपने घर पे एक टर्म जो है मैं अपने लिए ज़रूर सुनते आई हूँ कि भैया ये तो सिर्फ हवा खा के बड़ी होती है. नहीं यार, मैं जेन्युइनली खाना भी खाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी लगती है, लेकिन हाँ ये मुझे और भी ज़्यादा पता है कि यार somehow पता नहीं बचपन से ना एक कीड़ा है, वो फिटनेस का कीड़ा, दैट जितना मैंने खाया मुझे उतना बर्न करना है, पक्का करना है. बचपन के दिनों में मार खा खा के बर्न किया जाता था ना, आज की डेट में ट्रेडमिल में भाग भाग के किया जाता है. वेल, अगर आज के खाने की बात करें तो आज की मेरी प्लेट जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग लगने वाली है. आज मैंने अपना कुछ मारवाड़ी खाना घर पे बनाया हुआ है. सो इफ़ यू हैव हर्ड ऑफ गट्टे की सब्जी, विच इज़ बेसिकली मेड आउट ऑफ बेसन रोल्स, उससे दही की करी में कुक करते हैं हम, तो बस आज जो है गट्टे की सब्जी अलॉन्ग विथ राइस, दाल एंड चपाती, दिस इज़ माई मील फॉर द डे एंड लोड्स ऑफ सैलड्स. हाउ अबाउट यू? घर से टिफिन का डब्बा लेकर आएँ या तो फिर कहीं रेस्टोरेंट में जाके खाने वाले हैं? क्या खाने वाले हो यार? आई वुड वांट टू लर्न फ्रॉम यू, नो फ्रॉम यू. 5001896 ईगली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस इंस्टाग्राम. मिर्ची वन कतरिया, मिर्ची अंशु. बाकी बातें होंगी कल, सारी खबरों के साथ, इंटरेस्टिंग बातों के साथ मुलाकात फिर करूंगी. अभी के लिए खाना खा लो, भूख लगी है बंधु. कविता सीरे नीरज श्रीधर की आवाज में जाने से पहले ये पावर पैक ट्रैक सिर्फ आपके लिए. एंजॉय. मसलामा हबीबी.

0: क्या आज भी एक लड़की के कपड़े उनके संस्कार का सर्टिफिकेट होते हैं?
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: जो सिनेरियो चल रहा है उसमें तो कुछ ऐसा ही लग रहा है यार, क्योंकि रक्षाबंधन का एक एड काफी वायरल हुआ फिलहाल, जिसमें कृति सैनन थी। दो रीजंस थे ऑफ द एड टू गो वायरल। वन वाज कि वो अपने भाई के साथ उस एड में अपने कुत्ते को भी राखी बांध रही थी, एंड दूसरा उनके कपड़े, मतलब उन्होंने एक ब्रालेट, एक केप और एक स्कर्ट पहनी हुई थी, एंड पीपल गॉट ऑफेंडेड ऑन दैट। और इस चीज को लेकर इतना ह्यू एंड क्राई क्रिएट हुआ कि फाइनली उस ब्रांड ने अपने एड को विथड्रॉ ही कर लिया, हटा दिया यार। बट वेट, अगर मेरा पेट मेरी फैमिली है तो उसके साथ प्यार का रिचुअल सेलिब्रेट करना कल्चर के अगेंस्ट कैसे हो गया? और जहां तक कपड़ों की बात है तो भाई, मेरी नेकलाइन मेरी मोरालिटी का मेजरमेंट कब बन गई वो मुझे आज तक समझ नहीं आ पाया। क्या सीरियसली हमारा कल्चर इतना फ्रेजल है? और मेरे हिसाब से ना, ट्रेडिशन का मतलब सिर्फ रिचुअल रिपीट करना नहीं होता, हर जनरेशन उसमें अपना मीनिंग ऐड जरूर करती है। एंड एज अ गर्ल मुझे बस इतना कहना है कि भाई, मेरे कपड़ों को मेरे कैरेक्टर का रिपोर्ट कार्ड बनाना बंद कीजिए। आपको आउटफिट पसंद नहीं है तो मत देखिए, कुत्ते को राखी बांधना पसंद नहीं है तो आप खुद अपनी जिंदगी में वो मत कीजिए। बट प्लीज, मॉरल पुलिसिंग को ट्रेडिशन का नाम मत दीजिए, बिकॉज संस्कार कपड़ों में नहीं बिहेवियर में होती है। और इस कंट्रोवर्सी के बाद तो अलग अलग लोगों की बिहेवियर सामने आ ही रहे हैं। बाकी लाइक आई ऑलवेज से, बच्चे को गुब्बारा काफी और समझदार को इशारा काफी। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, एंड हियर्स विशिंग यू अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Mirci. Iskabana, uskabana, sakabana. Yabana. Burga, burga. La vizba la burga. Mirci, burga.
1: Hello.
2: Hello.
1: Anji.
2: Vivek ji.
1: Anji, bataiye.
2: विवेक जी, मैं आपकी सोसाइटी से बोल रहा हूँ, सी ब्लॉक में मैं रहता हूँ। विवेक जी, आप माइंड ना करें तो दो मिनट आपके ले लूँ मैं।
1: या ऑफ कोर्स।
2: विवेक जी, आप इसको अदरवाइज मत लेना, लेकिन देखो मेरे को मालूम है, फैमिली है, सब कुछ है, हर फैमिली में कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, सोसाइटी में बातें हो रही थी, मतलब आपकी और वाइफ की लड़ाई हुई होगी, तो मैंने तो लोगों को थोड़ा नज़रअंदाज करा, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं ना, लोग ले रहे हैं मज़े। अभी हम मीटिंग के लिए बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि तूने आवाज़ें सुनी विवेक जी और उनकी वाइफ की, चिल्लम चिल्ला हो रही थी। विवेक जी, बस मैं ये कह रहा हूँ, इस चीज़ का ना थोड़ा ख्याल रखो यार, मतलब हमें लगता है ऐसा है कि कहीं नहीं जा रही आवाज़ ग्लास लुआसे से, क्योंकि गुस्से में उस वक्त को अंदाज़ा नहीं होता ना, और इन सब का काम पता है क्या, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, ये लेते हैं मज़े, सारे मज़े लेते हैं, लेकिन ऐसी बातें करेंगे, देखा तूने लड़ाई हो गई हस्बैंड वाइफ की। देखिए, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, हमारी भी हुई होगी, लेकिन थोड़ा ख्याल रखिए।
1: ठीक ही कह रहे हो।
2: नहीं, मैंने तो देखिए, मैंने हमदर्दी में कहा है, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता गुस्सा, मुझे भी कई बार गुस्सा आता है, मेरी वाइफ से हो जाती है, लेकिन क्या होता है ना, ये सोसाइटी में ना गलत असर पड़ता है। अच्छा चलो, असर की भी कोई बात नहीं, कौन सा हमें कोई खिला पिला रहा है, ये सब मजे लेते हैं।
1: अब आपको पता ही है, हर कोई हमारी तरह समझदार नहीं है, एक सोसाइटी वाले इतने, अभी पीछे वो गाड़ी का कांच टूट गया था मेरा, पीछे लग के उसमें इतना कलेश कर दिया था इन लोगों ने।
2: अच्छा,
1: इनको सब बातों में घुसने की आदत है, मेरे को समझ नहीं आता, हमारा घर है, हम जो मर्जी करें।
2: बिल्कुल पर
1: सही कह रहे हो, मैं ध्यान रखना,
2: थोड़ा ख्याल रखना, और मिलते हैं किस दिन।
1: हाँ, जरूर जरूर आपसे जरूर मिलेंगे।
2: वैसे क्या हुआ, क्या था भाभी से यार, आपकी बात क्या हो गई थी?
1: अरे कुछ नहीं यार।
2: नहीं, फिर भी क्या, मतलब काफी चीखियों की आवाज है, क्या हुआ, क्या था?
1: अरे असल में हुआ कुछ नहीं था, इनकी मम्मी बस हमारी मिसेस की।
2: अच्छा अच्छा,
1: उस टाइम पे मैं घर आया, मैं थोड़ा ड्रंक था, उनकी मम्मी का कलेश अलग हो गया।
2: अच्छा, ये कलेश, ये चिल्लाने लगी फिर आपकी वाइफ?
1: रेडियो
3: मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहा था।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
5: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है, ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है।
7: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
6: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah live

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड्स, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो मिर्ची। अगर अब तक आपने द रेवोल्यूशनरीज का ट्रेलर नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिए, क्योंकि इट लुक्स रियली रियली प्रॉमिसिंग। इसमें भुवन बाम, रोहित सराफ, गुरफतेह पीरजादा और प्रतिभा रंता जो हैं वो लीड रोल्स निभाते नजर आएंगे। एंड दिस सीरीज इज अ टेक ऑन ब्रिटिश राज, जिसको डायरेक्ट किया है निखिल आडवाणी ने, बट इट इज इंस्पायर्ड बाय संजीव सान्याल की बुक रेवोल्यूशनरीज से, जो 11th of September से Amazon Prime पे स्ट्रीम करने वाली है। सो बेटर मार्क योर कैलेंडर्स फॉर दिस वन। जीवन भीमा योजना, नहीं नहीं, आप जो सोच रहे हैं वो नाम नहीं है। यहाँ जीवन एक बंदा है, भीमा भी दूसरा बंदा है, और ये दोनों ही रोल निभा रहे हैं अरशद वारसी। हाँ जी, इस फिल्म का ट्रेलर इज हियर, जो कि एक अपकमिंग डार्क कॉमेडी है, और इसमें अरशद वारसी के अलावा संजीदा शेख, विजय राज और पूजा चोपड़ा जैसे एक्टर्स नजर आएंगे। फिल्म को डायरेक्ट किया है अभिषेक डोगरा ने, जो 4th of September को थिएटर्स में आएगी। एंड यस, इट इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम जब किसी फिल्म में अरशद वारसी डबल रोल निभाते नजर आएंगे। ब्रह्मास्त्र के लिए आयान मुखर्जी जो हैं वो बातचीत कर रहे हैं नमित मल्होत्रा के लिए। बेसिकली आपको बताया था ना, जियो स्टूडियोज की बैकिंग चली गई है इस। सो मैंने आपको कुछ दिनों पहले बताया था दैट जियो स्टूडियोज की बैकिंग एज द स्टूडियो पार्टनर चली गई है फ्रॉम ब्रह्मास्त्र 2, जिसके बाद आयान मुखर्जी एक नए स्टूडियो पार्टनर की खोज कर रहे हैं। एंड दिस इज वेयर अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म रामायण के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा हैज कम इनटू पिक्चर। अब ये बातचीत किस लेवल पे जाती है उसका पता चलते ही आपको जरूर बताऊंगी, बट अभी के लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से ट्रेंडिंग लिस्ट में सिर्फ इतना ही। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ
0: बाबू मोशाय, मैं तो फिल्मी गेम खेलने की बात कर रही थी। आपका दिमाग कहाँ जा रहा है? डर्टी माइंड। चलिए चलिए चलिए, अब दिमाग को वापस ट्रैक पे लाते हुए आपको याद दिला दूं, इट्स टाइम टू फाइंड मिर्ची फिल्मची। सो बेसिकली यहाँ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे इंस्टा डीएम में जाके अपना नंबर भेजने के लिए, ताकि मैं आपको कॉल करके इस गेम की शुरुआत कर सकूं। तो आज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं अनुपमा जी। सबसे पहले बताना चाहूंगी मैम कि आज इस गेम की शुरुआत मैंने थोड़े पुराने जमाने की फिल्मों से की है, सो प्लीज कीप दैट इन माइंड। तो तीन भाई हैं जो बचपन में बिछड़ जाते हैं और फिर साथ आते हैं। इनका एक गाना है कि एक जगह जब जमा हो तीनों,
3: अमर अकबर एंथनी।
0: क्या बात है, अमर अकबर एंथनी में एक गाना है जिसमें एक हीरो जो है वो अंडे के अंदर बैठ के एंट्री मारता है।
3: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्वेस।
0: क्या बात है, कौन है ये?
3: अमिताभ बच्चन।
0: बहुत बढ़िया, अमिताभ बच्चन की फिल्म जिसमें वो और उनकी तन्हाई अक्सर ये बातें किया करते थे।
3: सिलसिला।
0: बहुत बढ़िया, सिलसिला में चांदनी कौन है?
3: मेरी फेवरेट रेखा।
0: ओहो, रेखा की किस फिल्म में उनका बेटा एलियन से कांटेक्ट करता है?
3: कोई मिल गया।
0: वाह, कोई मिल गया में एलियन किसको सुपर पावर देता है?
3: वो उसको देता है, ऋतिक रोशन, रोहित को।
0: बहुत बढ़िया, ऋतिक रोशन किस फिल्म में पिंक कलर का फोन यूज करते हैं?
3: जिंदगी ना मिलेगी दोबारा।
0: जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में दिलों में अपनी बेताबियां कौन लेकर घूम रहा है?
3: फरहान अख्तर।
0: फरहान अख्तर किस फिल्म में खुद को ही कॉल करते हैं?
3: वो यार कौन सी थी कॉलिंग।
0: हाँ,
3: कार्तिक कॉलिंग।
0: बहुत बढ़िया, कार्तिक कॉलिंग। कार्तिक में कार्तिक को किससे लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है?
3: बस यही नहीं पता मुझे।
0: Never mind. But इतना मस्त जो गेम खेला है, मुझे लगा था कि यहाँ तक मैं आप कई बार अटकेंगे, बट एक बार भी ऐसा नहीं हुआ। That is brilliant, man.
3: क्योंकि मैं आपको सुनती हूँ ना, फिल्में मिलती।
0: How sweet. Thank you so much. तो चलिए, इतना brilliance जो आपने दिखाया है उसके लिए ये टैग भी बनता है।
1: मिर्ची फिल्मची।
0: तो भाई, हमें आज की अपनी पहली मिर्ची फिल्मची मिल चुकी है। इसके आगे का गेम अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, देन यू ऑलरेडी नो द ड्रिल। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: खेलो मगर प्यार से। श्रुति
1: श्रुति मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मैं तो मिर्ची फिल्म जी गेम की बात कर रही थी, आप कहाँ जा रहे हो यार? चलिए वापस ट्रैक पे आइए। सो बेसिकली इट्स टाइम कि आपके अंदर के फिल्मची कीड़े को जगाया जाए। हर दिन मैं ये मिर्ची फिल्मची ढूंढने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहली फिल्मची आज जो हमें मिली है वो है अनुपमा मैम, जिन्होंने इस गेम की शुरुआत की थी। अब आगे इस गेम को कंटिन्यू करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं राज। क्या तैयार हैं आप?
2: बिल्कुल।
0: ओके, तो कार्तिक कॉलिंग कार्तिक में कार्तिक को किससे लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है?
2: दीपिका पादुकोण।
0: दीपिका पादुकोण किस फिल्म में झूमर के नीचे मर जाती हैं?
2: ओम शांति ओम।
0: ओम शांति ओम में भागो ये वाला डायलॉग किसका है?
2: शाहरुख खान जो भागो बोलता है डाकू बन के।
0: हाँ, बिल्कुल सही पकड़े हैं। शाहरुख खान किस फिल्म में रेडियो जॉकी बने?
2: दिल से।
0: बहुत बढ़िया। दिल से में उनकी शादी किससे तय होती है?
2: प्रीति जिंटा।
0: प्रीति जिंटा की फिल्म जिसमें उनको 12:45 आइसक्रीम खाने का मन होता है।
2: सलाम नमस्ते।
0: बहुत बढ़िया। सलाम नमस्ते में उनका फ्लैटमेट कौन है?
2: सैफ अली खान।
0: सैफ अली खान किस फिल्म में प्रोफेसर के रूप में टेररिस्ट हैं?
2: कुर्बान।
0: कुर्बान में अपना दिल उनके ऊपर कौन कुर्बान कर देता है?
2: उनकी वाइफ करीना कपूर।
0: करीना किस फिल्म में चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक पे चांदी की चम्मच से चटनी चटाई?
2: कभी खुशी कभी गम।
0: बहुत बढ़िया। कभी खुशी कभी गम में स्टूल पे चढ़ के अपने पति का टाई कौन ठीक करता है?
2: जया बच्चन।
0: बहुत ही बढ़िया सर, क्या बात है। आज यहाँ तक ही हमारे सवालों का सिलसिला था, बट आपने हर सवाल का जवाब बहुत ही मस्त दिया। कैसा महसूस कर रहे हैं आप?
2: गुड, ग्रेट। आपसे बात करके और ग्रेट हो रहे
0: हैं। अरे अरे, ग्रेटनेस तो आपकी है जो आप इतनी तारीफ भी कर देते हैं। चलिए फिर इसी बात पे, जो अच्छा गेम खेला है आपको ये टैग तो देना बनता है।
3: मिर्ची फिल्मची।
0: तो आपके अंदर के इस फिल्मची को ढूंढने का सिलसिला कल फिर से लेकर आऊंगी, लेकिन अभी बाकी की फिल्मी बातें करेंगे ना यार। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi, it's hot.
1: राखी सावंत हाल ही में वर्ल्ड योगा डे गया है जहां हमने तरह तरह के लोगों को योगा करते हुए देखा है। आप उनके बारे में क्या सोचती हैं?
2: बहुत सारे लोग योगा जो है ना वो एसी में बैठ के करते हैं, कुछ लोग ओपन करते हैं। हमारा योगा हॉट योगा है, प्लीज आप राखी सावंत के साथ कॉम्पिटिशन कीजिए योगा में, मैं आपको पक्का हरा दूंगी।
1: ऐसी कोई चीज है ही नहीं राखी सावंत जिसमें हम आपसे जीत सकते हैं। आप सुन रहे हैं मिर्ची, शी इज हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
4: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
5: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
3: उसे सब पता है।
6: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
3: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar, this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snoo Noo. Tickets available in all leading ticketing platforms.

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन
1: जी। बिल्कुल, बताइए सवाल क्या है।
0: मैं रोज सुबह योगा क्लास में जाता हूँ और योगा करते करते गैस निकल जाती है, मैं क्या करूँ?
1: गैस निकल जाती है हु? तो घर से निकले तो पहले ही नॉब चेक करके जाया कर।

0: करने को है,
1: इसको इग्नोर नहीं कर सकते।
2: श्रुति श्रुति
3: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
1: देखो, जब भी बात आती है इंडियन फिल्म्स और फेस्टिवल्स की, तो ये दोनों साथ में इतने अच्छे तरीके से कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को कि इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। एंड ऑन द ओकेजन ऑफ रक्षाबंधन, मैंने सोचा पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में दिखाए गए कुछ भाई बहन के रिलेशनशिप्स को डिस्कस करूं। सो इन द लिस्ट, सबसे पहले वील टॉक अबाउट द फिल्म जाने तू या जाने ना। साल 2008 में रिलीज हुई फिल्म, डायरेक्टेड बाय अब्बास टायरवाला, स्टारिंग जेनेलिया डिसूजा, इमरान खान, अरबाज खान, अयाज खान, रत्ना पाठक शाह, प्रतीक बब्बर एंड नसीरुद्दीन शाह इन लीड रोल्स। और बेसिकली इस फिल्म में जो भाई बहन का प्यार दिखाया गया है, जो रिलेशन दिखाया गया है, दैट इज रियली कनेक्टिंग। वो कंटिन्यूअस ब्रॉल्स जो उन दोनों भाई बहन के बीच में होता रहता है, या फिर इस मूवी में जिस तरीके से सिबलिंगहुड को सेलिब्रेट किया गया है, जहां सिबलिंग्स जो है वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, अनकंडीशनल लव दिखाते हैं एक दूसरे के लिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, दिस मूवी वॉज एन आइडियल टेक ऑन द मिस्चीवियसनेस दैट एग्जिस्ट बिटवीन अ ब्रदर एंड अ सिस्टर। भाई, मैंने तो जेनेलिया और प्रतीक बब्बर के बीच में जो भाई बहन का रिलेशनशिप दिखाया गया है इस फिल्म में, उसे काफी ज्यादा कनेक्ट किया, वो लड़ाइयां हो या फिर प्यार हो। आपकी क्या राय है इस बारे में, वो मुझे जरूर बताना। बाकी अभी पांच का पंच की लिस्ट में और भी चार मूवीज की बात करने वाली हूँ, बट इन अ वाइल। तब तक के लिए यू एंजॉय द सॉन्ग्स राइट हियर ऑन मिर्ची विद दिस लड़की बड़ी फिल्मी, इट्स ऑल।
4: चोरी चोरी चुपके से आके मेरी आंखों में समा जा, धीरे धीरे सपनों की सुनी सुनी दुनिया बसा जा।

0: Mirchi. Escabana, pues cabana, sacabana.
1: Cabana.
0: Murga, murga. La vieja la murga.
1: Mirchi, murga.
2: Hello.
3: हेलो संदीप नागपाल जी बोल रहे हैं।
2: हाँ जी बोल रहा हूँ।
3: हाँ जी डीडीए से बोल रहा हूँ, आपका ये ड्राफ्ट भेजा है वापस, आपने डीडीए फ्लैट के लिए अप्लाई किया था ना?
2: तो हुआ कैसे है, मतलब तो बड़ी उम्मीद थी भाई कि निकलेगा हमारा।
3: अब सर ये किस्मत की बात है सर, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते ना। अब जिसके निकल गए हैं वो लकी है सर। मैं तो बस आपसे ये कह रहा था, ये 7,500 रुपए का आपका ड्राफ्ट है जो वापस करना है, कहाँ कुरियर कर दूँ, आप आगे ले लेंगे इसको। 7,500 रुपए का?
2: अरे भाई साहब मैंने 1.5 लाख रुपए जमा किया था, मैंने 7,000 रुपए दे रहा हूँ मुझे।
3: नहीं नहीं सर, ये 25,000 रुपए आपके प्रोसेसिंग फीस के कट गए।
2: किस चीज की फीस?
3: प्रोसेसिंग फीस जो आपने अप्लाई किया था ना डीडीए के फ्लैट के लिए।
2: तो भाई साहब ऐसा कहीं मेंशन नहीं था कि मैंने मेरे इसके फीस कटेगी नहीं कटेगी?
3: सर हर चीज मेंशन नहीं करी जाती ना, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। 50,000 रुपए आपके मशीन जो आपने बनवाई थी ना लकी ड्रॉ के लिए मशीन, उसके 50,000 रुपए कट गए आपके।
2: मेरे ड्रॉ के लिए कुछ स्पेशल मशीन बनी है क्या?
3: सर आपके ड्रॉ के लिए नहीं है सर, करोड़ों की मशीन है, आपके ड्रॉ के लिए नहीं, सबके ड्रॉ के लिए बने, उसे पर्चियां डलती है बहुत सारी करोड़ों के हिसाब से, वो मशीन महंगी आती है। 20,000 रुपए आपके प्रिंटिंग के कट गए हैं, 30,000 रुपए हमारे डीडीए का लोगो चेंज हुआ है, आप लोगों की वजह से लोगो चेंज होता है, और 15,000 रुपए सिक्योरिटी के हमने काटे क्योंकि सिक्योरिटी हमने लगा रखी है, कभी किसी को गुस्सा आ जाए ना। 7,500 रुपए आपके बचते हैं।
2: ये भी तुम्हें देख लो, ये हमें तुम फोन क्यों कर रहा हो?
3: ऐसे कैसे रख ले यार, आपका पैसा आपको वापस देंगे
2: हम। भाई आप ही रखो यार, आप मतलब हमें ज्यादा रख लो, ये बीच में रख लो हमें ज्यादा।
3: अरे यार
2: लूट रहे हो पब्लिक को यार।
3: तो यार ये आपको पहले सोचने चाहिए ना संदीप जी, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा ना, ये तो कम डीडीए की तरफ से। आप एक तो गुस्सा ना करें, एक सेकंड फोन आ रहा है, रुकिए रुकिए। हेलो हाँ हाँ जी बोल रहा हूँ डीडीए से। सर आपके 5,882 रुपए बनते हैं, आके ले जाइएगा ठीक है। हाँ संदीप जी आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए,
2: तुमने
3: आम संगठन
2: बनाया ठीक है ना।
3: हाँ मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए संदीप।
2: हाँ बोलो बोलो
3: संदीप, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: It's all down to Dhoni, isn't it? 4 balls left, they need 12 runs to win.
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है।
7: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
6: The Mentalist, Suhani Shah live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at STT Snow. Tickets available in all leading ticketing platforms.

0: हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और फेस्टिवल्स का एक अटूट बंधन है।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: और बात जब रक्षाबंधन की हो तो भले ही स्पेसिफाइड भाई बहन के रिलेशनशिप पे कोई मूवी नहीं आई है, बट बहुत सारी ऐसी कहानियां रही हैं, बहुत सारी ऐसी मूवीज रही हैं जिनकी स्टोरी लाइन्स में भाई बहन के रिश्ते को काफी अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया गया है। एंड दैट इज द रीजन आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसी ही मूवीज की बात कर रही हूँ। इन द लिस्ट सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट जाने तो या जाने ना। अब बात करते हैं फिल्म जोश की। सो मंसूर खान डायरेक्टोरियल ये फिल्म आई थी इन द ईयर 2000, स्टारिंग शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय बच्चन, चंद्रचूड़ सिंह एंड शरद कपूर इन द लीड रोल्स। और इस फिल्म में शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय के बीच में जो भाई बहन की केमिस्ट्री है, ओहो, सबसे पहली चीज तो इन दो वंडरफुल एक्टर्स को ऑन स्क्रीन भाई बहन का रोल निभाता देख मुझे थोड़ा अजीब भी लगा था, बट बाय द एंड काफी अच्छा भी लगा था, क्योंकि दोनों अपने अपने रोल्स में रिस्पेक्टिवली काफी ज्यादा अडोरेबल थे। दे डिड लुक लाइक सिबलिंग्स विद द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग दैट दे शेयर्ड। बट हाँ, एक छोटी सी फ्लॉ थी इस मूवी में और वो था द सॉन्ग ये उसका स्टाइल होएगा होटो पिना दिल में हाँ होएगा। मतलब बींग अ सिस्टर, मैं अपने भाई को ऐसे बोस्ट नहीं कर रही होती टू पटाओ फाई द गर्ल जो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, ये बोल के कि अरे कोई नहीं भाई, ये उसका स्टाइल होगा, मुंह पे नहीं है लेकिन दिल में तो हाँ ही होएगा। समझ रहे हो आप वो बात? खैर, मूविंग ऑन इन द लिस्ट नंबर 3 पे लेट्स टॉक अबाउट क्वीन में रानी यानी कंगना रनौत और उनके भाई के किरदार की। सो डायरेक्टेड बाय विकास बेल ये फिल्म आई थी इन द ईयर 2013, जिसमें कंगना रनौत, राजकुमार राव और लीजा हेडन जो हैं वो लीड रोल्स में थे। बट टॉकिंग अबाउट कंगना रनौत और उनके भाई का किरदार और उनका बॉन्ड, दैट वॉज रियली अमेजिंग यार। वैसे कंगना के भाई का किरदार निभाया था चिन्मय अग्रवाल ने, जिनको चिंटू मेहरा के नाम से जाना जाता है इन द फिल्म। और जिस तरीके से इस भाई ने अपनी बहन को के लाइफ डिसीजंस में सपोर्ट किया, उसके साथ खड़ा रहा, दैट वाज रियली अप्रिशिएटिंग। क्योंकि बाबू मोशाय कहानी में अगर रानी के भाई ने उसके लिए कवर अप नहीं किया होता तो वो अपने हनीमून पे अकेली नहीं जा पाती और अपने आप को, अपनी जिंदगी को जिस तरीके से वो समझ पाई वो नहीं हो पाता। सो या, एवरी गर्ल should have a boy like Chintu from the film Queen. वैसे मेरी इस लिस्ट में अभी और भी दो मूवीज की डिस्कशन बाकी है, but वो सब after a short break. Till then, you enjoy the songs right here on Mirchi with this लड़की बड़ी फिल्मी, It's Hot.

0: क्यों ना इस बार कुछ डिफरेंट किया जाए।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: अब देखो, हर बार रक्षाबंधन पे आप अपने भाई को राखी बांधते हो और वो आपको गिफ्ट दे देते हैं, बट इस बार आप कुछ डिफरेंट कर सकते हो। एज इन अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से राखी खरीदने के अलावा आप अपने भाई को अ सेट ऑफ बॉलीवुड मूवीज भी गिफ्ट कर सकते हो, जिसमें भाई बहन के रिश्ते को, सिबलिंगहुड के एसेंस को काफी अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया गया है। और इसमें मैं आपकी हेल्प करूंगी यार, क्योंकि आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसी ही मूवीज की बात कर रही हूँ। सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट जाने तू या जाने ना, नंबर दो पे हमने बात की जोश के बारे में, नंबर तीन पे वी टॉक्ड अबाउट क्वीन, और अब नंबर चार पे लेट्स टॉक अबाउट मेरे फेवरेट भाई के बारे में। वेल, इट इज फ्रॉम द फिल्म प्यार किया तो डरना क्या। सो डायरेक्टेड बाय सोहेल खान, ये फिल्म आई थी इन द ईयर 1998, जिसमें सलमान खान, काजोल, अरबाज खान, धर्मेंद्र, अंजला जवेरी और किरण कुमार लीड रोल्स में थे। वैसे इस फिल्म में जिस तरीके से अरबाज खान को काजोल का एक प्रोटेक्टिव ब्रदर दिखाया गया है ना, दैट इज रियली रिलेटेबल, क्योंकि मेरा भाई तो ऐसा ही है। और अरबाज खान एक आइडियल ब्रदर थे हु न्यू हाउ टू प्रोटेक्ट हर एंड डिसाइड द बेस्ट फॉर हर। अब वो उसका लव रिलेशनशिप ही क्यों ना हो, भले ही बहन को किसी से प्यार है, लेकिन भाई जरूर चेक करेगा कि वो लड़का मेरी बहन के लिए सही है या नहीं है। मूविंग ऑन इन द लिस्ट, नंबर पांच पे लेट्स टॉक अबाउट राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्म हम साथ साथ हैं के बारे में। एंड अगर हम इस फिल्म की स्पेसिफिकली बात करें तो इस फिल्म ने आइडियल ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप को बहुत ही अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया है, डिस्पाइट फेसिंग ऑल काइंड्स ऑफ ऑड्स, बिकॉज द लव एंड अफेक्शन दैट द ब्रदर्स शेयर फॉर देयर ओनली सिस्टर in her troubled and good times is truly commendable, which celebrated the spirit of siblinghood in its truest form. वैसे अगर आपके दिमाग में भी कोई ऐसी सी मूवी आ रही है तो वो मुझे सजेस्ट कर सकते हो। कहाँ? MIRCHISHRUTI, that is मिर्ची श्रुति के नाम से मैं फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे मिलूंगी। Meanwhile, enjoy the songs right here on मिर्ची, it's hot.

I love you all. दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से।

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इन्फॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माई फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। अगर अब तक आपने द रेवोल्यूशनरीज का ट्रेलर नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिए, क्योंकि इट लुक्स रियली रियली प्रॉमिसिंग। इसमें भुवन बाम, रोहित सराफ, गुरफतेह पीरजादा और प्रतिभा रंता जो हैं वो लीड रोल्स निभाते नजर आएंगे। एंड दिस सीरीज इज अ टेक ऑन ब्रिटिश राज, जिसको डायरेक्ट किया है निखिल आडवाणी ने, बट इट इज इंस्पायर्ड बाय संजीव सान्याल की बुक रेवोल्यूशनरीज से, जो 11th of September से Amazon प्राइम पे स्ट्रीम करने वाली है। सो बेटर मार्क योर कैलेंडर्स फॉर दिस वन। जीवन भीमा योजना, नहीं नहीं, आप जो सोच रहे हैं वो नाम नहीं है। यहाँ जीवन एक बंदा है, भीमा भी दूसरा बंदा है, और ये दोनों ही रोल निभा रहे हैं अरशद वारसी। हाँ जी, इस फिल्म का ट्रेलर इज हियर, जो कि एक अपकमिंग डार्क कॉमेडी है, और इसमें अरशद वारसी के अलावा संजीदा शेख, विजय राज और पूजा चोपड़ा जैसे एक्टर्स नजर आएंगे। फिल्म को डायरेक्ट किया है अभिषेक डोगरा ने, जो 4th of September को थिएटर्स में आएगी। एंड यस, इट इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम जब किसी फिल्म में अरशद वारसी डबल रोल निभाते नजर आएंगे। ब्रह्मास्त्र के लिए आयान मुखर्जी जो हैं वो बातचीत कर रहे हैं नमित मल्होत्रा के लिए। बेसिकली आपको बताया था ना, जियो स्टूडियोज की बैकिंग चली गई है इस। सो मैंने आपको कुछ दिनों पहले बताया था दैट जियो स्टूडियोज की बैकिंग एज द स्टूडियो पार्टनर चली गई है फ्रॉम ब्रह्मास्त्र 2, जिसके बाद आयान मुखर्जी एक नए स्टूडियो पार्टनर की खोज कर रहे हैं। एंड दिस इज वेयर अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म रामायण के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा हैज कम इनटू पिक्चर। अब ये बातचीत किस लेवल पे जाती है उसका पता चलते ही आपको जरूर बताऊंगी, बट अभी के लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से ट्रेंडिंग लिस्ट में सिर्फ इतना ही। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: सिर्फ बंगाल के नहीं हिंदुस्तान के हिट हीरो, नाम है इनका जीशु सेनगुप्ता। इनसे एक बार पूछा गया,
3: हूज मोस्ट लाइकली टू डाई टू प्रोटेक्ट यू? अपनी जान दे देंगे लेकिन आपको जरूर बचाएंगे।
4: आई हैव फ्यू पीपल, यस आई कैन से दे माय फ्रेंड्स, दे माय फैमिली, लाइक एट लीस्ट टू पीपल तो आई नो, I'm not naming them, but they know
3: who they are.
4: Two people, they will die for me. Yeah, I'm blessed.
2: Jishu Sen Gupta, us two ki list mein ek aur naam jod dijiye, three kar dijiye, because I will also. Yeah, you're listening to Mirchi. It's hot.
0: Bollywood Boldar. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldar.
1: Only on Mirchi. It's hot.
5: सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
6: आई यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आई यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
7: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
5: उसे सब पता है।
8: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड, शी इज कमिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम।
5: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर, स्पॉन्सर्ड बाय कतर कैलेंडर, दिस 25th सितंबर एट QNCC एंड टू एट द डबल बोनांजा ऑफ एंटरटेनमेंट। गेट रेडी टू वॉच म्यूजिक एंड डांस डुओ चरण एंड आरसी। एक शाम एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट SCT Snow Nu। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स।

डायरेक्टर साहब ने इस फिल्म पे 7 सालों तक रिसर्च किया था। सरफरोशी की शमा दिल में जला लो यारो। यस, एक सच्चे फिल्मची ने गेस कर लिया होगा दैट मैं बात कर रही हूँ 1999 में रिलीज हुई फिल्म सरफरोश के बारे में, जिसमें आमिर खान और सोनाली बेंद्रे लीड रोल्स निभाते नजर आए थे। एंड यस, जॉन मैथ्यू मथान जो हैं उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। सो बेसिकली उन्होंने 1992 में इस मूवी के ऊपर काम शुरू किया, फिर 7 साल तक पोस्ट प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, बेसिकली रिसर्च का काम किया फॉर द सेम, और तब जाकर 1999 में फाइनली ये फिल्म आ पाई। इनफैक्ट इसके पहले भी 2 और फिल्में ऐसी थी जिनका नाम यही रखा जा रहा था। सो डायरेक्टर मनमोहन देसाई ने 1979 में अपनी एक फिल्म अनाउंस की थी बिग बी के साथ, एंड उसका नाम भी सरफरोश होने वाला था, बट समहाउ दैट गॉट शेल्व्ड। और 1994 में बॉबी देओल और पूजा भट्ट के साथ डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने भी सरफरोश नाम की ही एक फिल्म अनाउंस की थी, बट वो भी ठंडे बस्ते में डाल दी गई। And that is why 1999 में सरफरोश नाम की ये फिल्म आ पाई, क्योंकि देखो यार, अगर पहले कोई फिल्म इस नाम से आई होती तो कहीं ना कहीं कॉपीराइट इश्यू हो जाता ना। तभी मैं कहती हूँ, बड़े पर्दे पे जो फिल्म आप देखते हैं उसके पीछे बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां छुपी होती हैं, और वो ढूंढकर मैं आप तक लेकर आती हूँ। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na vie la burga. Milci, burga.
1: Hello.
2: Hello.
1: Kaun?
2: Hello, Vipin.
1: कौन बोल रहा है?
2: इस्ता। मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ। आपने पासपोर्ट अप्लाई किया था?
1: हाँ, पासपोर्ट अप्लाई किया था।
2: आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो। कब अप्लाई किया था आपने?
1: भाई तो इतने धीरे क्यों बोल रहा है?
2: भाई मानो मेरे बॉस सो रहे हैं, मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ। और बॉस की आँख खुल जाती है ना किसी की आवाज से, पासपोर्ट जिसका बन रहा होता पावड़ के फेंक देते हैं। 15 रिजेक्ट कर चुके, समझ गए? इसलिए कह रहा हूँ तुम्हारे फायदे की बात। और तुम स्पीकर फोन पे सरासा भी तेज बोलोगे उनकी आँख खुल जाएगी, फिर चिल्लाएंगे तब क्यों आवाज आ रही है। मैं कहूंगा कि पासपोर्ट बनाने की बात कर रहा था, कहते इधर देश का पासपोर्ट का, अभी आग लगा दो इसमें। इसलिए कह रहा हूँ धीरे बोलो, आप क्या फायदा है। आप बताओ कब किया था?
1: पहले किया था।
2: अच्छा अच्छा, आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा की थी? आप खुद आए थे?
1: ऑनलाइन की थी।
2: भैया इस तो बोल, अभी करवट ली है तेरी आवाज से यार, हमारी आवाज से अभी खड़े हो ऐसे हो रहे थे। कौन है? मैंने कहते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपको जाना जरूरी है पासपोर्ट लेके।
1: जाना जरूरी है।
2: कहाँ जा रहे हो?
1: दुबई।
2: अच्छा तो दुबई जाना है?
1: भाई जल्दी जाना है, तुम निकलवा दो अगर जल्दी हो सके तो।
2: नहीं मैं पक्की बात कर लूंगा, बस इनकी आँख नहीं खुलनी चाहिए, हो सकता है कल ही मिल जाए।
1: हाँ ठीक है ठीक है,
2: मैंने सही किया ना बता दिया, वरना ये तो बौखला जाता ना, ये पासपोर्ट के चितड़े उड़ा देता।
1: आपने सही कह रहा
2: है। हाँ तेज मत बोलना जब तक पासपोर्ट का काम ना हो जाए। भाई साहब एक बात बताऊं?
1: बताओ।
2: आपसे बात करके मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है, मैं ऐसी बात करता था कैसी हो
1: क्या?
2: वो कहती थी मैं ठीक हूँ पापा है बराबर में, आपको नहीं लग रहा जैसे रात में बात करते हैं?
1: मैं तो पागल है क्या?
2: चिल्लाओ मत, ठीक है मैं रखता हूँ।
1: करवा देना भी है आपसे।
2: मरवाओ के क्या, उठ जाएंगे।
1: सॉरी सॉरी सॉरी।
2: ठीक है चलो, पासपोर्ट मिल जाएगा या बस सेफ फ्लाइट।
1: ओके ओके,
2: आई लव यू,
1: आई लव यू टू।
3: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं मुर्गा बना रहा था।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
5: इट्स ऑल डाउन टू डोनी इज़न्ट इट। 4 बॉल्स लेफ्ट, दे नीड 12 रन्स टू विन।
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है।
7: शी कैन रीड योर माइंड, she will blow your mind, she is coming for the very first time.
6: The mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar calendar, this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at STT Snow. Tickets available in all leading ticketing platforms.

0: यार कभी कभी ना मैं दूसरी कैटेगरी वाली बन जाती हूँ।
1: ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं।
0: जिंदगी में एक्सेप्टेंस होना काफी ज्यादा जरूरी है यार बाबू मोशाय। मिर्ची पे ट्यून्ड नो आप, मैं हूँ आपके साथ श्रुति, और आज डिसाइड कर रही हूँ दो टाइप्स ऑफ पीपल अकॉर्डिंग टू कहानी सुनाना, मतलब कोई भी बात बताना जिसमें पहली प्रजाति वाले लोग अगर आपसे किसी बात की शुरुआत करते हैं तो वो उस कहानी को सुनाने में ना इधर उधर भटकते नहीं, शुरुआत और अंत बीच में पूरी बॉडी। लेकिन ये जो दूसरी कैटेगरी है ना, ओहो भगवान ने बड़े फुर्सत में बनाया, क्योंकि इनको एक नहीं चार चार कहानियों के कीड़े एक साथ काट जाते हैं। ये वो लोग हैं जो एक कहानी की शुरुआत करेंगे लेकिन उस कहानी को बयां करते करते अचानक उनको ना उसमें से ही एक सब्सिडरी कहानी याद आ जाएगी, फिर वो उस कहानी पे हॉप कर जाते हैं। एंड दिस लूप फॉर देम इज जस्ट नेवर एंडिंग। और इनके बारे में मुझे इतने अच्छे से इसलिए पता है क्योंकि एक तो झेलती भी हूँ ऐसे लोगों को, और कभी कभी मैं खुद वो इंसान होती हूँ जो सामने वाले को झिला देती हूँ। यार मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: भाई इनकी गट फीलिंग को साइड रखो, क्योंकि मैं तो इस शो को ही स्क्रूटिनी में डालना चाहती हूँ।
1: ओटीटी एंड चिल
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हूँ आप। मैं हूँ आपके साथ श्रुति, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट रियलिटी शो ट्रेटर्स 2 के बारे में, जो कंट्रोवर्सीज में घिरी हुई है फिलहाल, क्योंकि जिस हिसाब से एलिमिनेशंस हुई हैं और जिस हिसाब से वन ऑफ द कंटेस्टेंट्स इन द शो दैट इज पारुल गुलाटी ने अपने गट फीलिंग की बात सबको सुनाई और उस पर विश्वास करने की बात कही, उसको लेकर क्रिस्टल डिसूजा और शहनील ने अपने अपने इंडिविजुअल वीडियोस निकाले कि भाई इस शो में तो मैच फिक्सिंग हुई है। उन्होंने एलिगेशन लगाया कि कहीं ना कहीं पारुल गुलाटी के पास प्रोडक्शन की तरफ से कोई एक ऐसा इंसान था जो उनको ट्रेटर्स के बारे में इन्फो दे रहा था। बट भाई ये सारी चीजें साइडलाइन रखते हुए जरा मेरी बात पे गौर फरमाइएगा। देखिए ये एक रियलिटी शो है राइट, बट बाकी शोज के कंपैरिजन में इस शो की शूटिंग पहले ही कर ली गई और अब उसको टेलीकास्ट किया जा रहा है, क्योंकि आप शो में फिलहाल जिन कंटेस्टेंट्स को देख रहे हैं वो आपको सोशल मीडिया पे भी अपने हैंडल्स पे अलग अलग वीडियोस डालते नजर आ रहे हैं, एंड दैट फॉर मी इज रियली वियर्ड। क्योंकि यार जो लोग शो से एलिमिनेट होते हैं वो बाहर आने के बाद अलग अलग इंटरव्यूज देते हैं तो समझ में आता है, बट जो लोग ऑलरेडी शो का हिस्सा हैं उनके एपिसोड्स देखने के लिए आप एक एक हफ्ते का इंतजार करते हैं, उनके वीडियोस अचानक से आपके फीड पे आने लगे तो भाई वो मुझसे डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा। बाकी आपका क्या ओपिनियन है अबाउट द सेम, डू लेट मी नो अबाउट दैट मिर्ची श्रुति के नाम से फेसबुक या इंस्टा पे कनेक्ट करके। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: दोस्त अगर जिंदगी में इतने उल्टे पुल्टे चैलेंजेस लेते ही रहते हो तो जरा मेरा फिल्मी उल्टा पुल्टा चैलेंज लेके देखो ना।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: सो द ड्रिल इज कि आपको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके अपना नंबर भेजना होता है, फिर मैं कॉल करती हूँ और आपके साथ इस चैलेंज की शुरुआत करती हूँ। यहाँ पे मैं आपको एक फिल्म का नाम उल्टा बताती हूँ, आपको सही नाम गेस करना होता है। तो आज हमारे साथ सबसे पहले गुड़गांव से टेलीफोन लाइन पे जुड़े हैं अरुण रावत जी। तैयार है सर?
3: हाँ।
0: तो चलिए फिर विदाउट एनी फर्दर डू शुरू करते हैं। तो मेरा पहला सवाल है, ए दिल है आसान,
3: ए दिल है मुश्किल,
0: तू सच्ची मैं ईमानदार,
3: तू झूठी मैं मक्कार,
0: जवान होगा तेरा बेटा,
3: बुढ़ा होगा तेरा बाप,
0: क्या बात है, ह्यूमन
3: जानवर,
0: दो समझदार गांव में,
3: दो दीवाने शहर में,
0: ओके जी, डियर मौत,
3: डियर जिंदगी,
0: क्या बात है, हमेशा हेलो कहते रहना,
3: कभी अलविदा ना कहना,
0: बहुत बढ़िया, बेटी,
3: बेटा,
0: कोई खो गया,
3: कोई मिल गया,
0: अडल्ट,
3: बच्चा, नहीं नहीं, बेबी बेबी,
0: यस, पुरुष,
3: औरत, स्त्री स्त्री, सॉरी स्त्री,
0: क्या बात है, बोल बोल के,
3: चुप चुप के,
0: बहुत ही बढ़िया, थोड़ा सा टाइम लगा आपको पिक करने में, बट यू एक्चुअली डिड रियली गुड सर,
3: थैंक यू,
0: थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग इन योर नंबर।
3: एक्चुअली मुझे थैंक यू बोलना चाहिए आपको कि आपने मेरे को माने कांटेक्ट किया, मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि आप मुझे कांटेक्ट करोगे।
0: अरे ऐसे कैसे नहीं करेंगे सर, वी थ्राइव ऑन दिस कनेक्शन दैट वी बिल्ड। तो गाइस अगर आप भी मेरे शो पे किसी गेम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मिर्ची श्रुति के इंस्टाग्राम पे जाके मेरे डीएम सेक्शन में अपना नंबर जरूर भेजिए। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स ऑल।

0: Hollywood, Bollywood, Bolder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: सोनी रजदान, आलिया और शाहीन, इन दोनों में से who's most likely to listen to you even today?
3: Difficult one.
4: Why you ask?
5: Split between my children.
6: So both of them in different ways.
5: Yeah.
6: But yeah, they are receptive generally. But I think I must be irritating them a lot because I give too much advice. That's what you tell me. So क्या बोलूँ आपको?
2: सोनी रजदान, आपने कोई जवाब नहीं दिया. आलिया या शाहीन, किसी का नाम नहीं लिया. अगली बार जब आप आएंगे हम फिर से ये सवाल पूछेंगे. यू आर लिसनिंग टू मिर्ची, इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बोल्डर, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डर,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
7: सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
8: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग अ फ्लाइंग कार्पेट?
9: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
7: उसे सब पता है.
10: शी कैन रीड योर माइंड. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
7: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Sham, ek stage aur do kamal. Book your tickets now at STT Snow. Tickets available in all leading ticketing platforms.

0: आवारापन, गाना खत्म हुआ लेकिन आवारा नहीं, सीधा साधा आपके साथ आ गया है। और फिलहाल तो बच्चों की वो सारी मस्ती खत्म हो गई जो वो अभी वेकेशन में कर रहे थे, और आज पहला दिन है स्कूल से वापस लौटे होंगे थक हार कर। ऐसी फीलिंग आ रही होगी पढ़ाई नाम की चीज जिंदगी में आई क्यों। शाम के 4:03
1: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: हाँ तो बच्चों कैसा रहा सीन स्कूल के पहले दिन का? इतनी लंबी वेकेशन के बाद जब आप स्कूल जाते होंगे तो आई एम वेरी श्योर लगता होगा यार क्या कर रहे हैं जिंदगी में, ये पढ़ाई नाम की चीज आई, हम तो प्रैक्टिकल दुनिया में सब कुछ समझी रहे। लेकिन नहीं, यही तो असली जिंदगी का फलसफा है कि दोस्तों जब स्कूल में होते हैं तो लगता है कि क्यों ही स्कूल आना पड़ रहा है, लेकिन एक बार स्कूल से जब जिंदगी के असली लाइफ के स्ट्रगल में पहुंचेंगे ना तब समझ में आएगा। फिलहाल आप लोगों को ज्यादा डरा नहीं, इतना ही कहना है मन लगा के पढ़ाई करो और इस सेशन सब टॉपर बन जाओ। 89.6 मिर्ची 1 पर बच्चों को अच्छे से खाना पीना मिला होगा, घर जाकर मम्मी से प्यार, पापा का दुलार सब मिलने वाला है। तो चलो जी मस्त मौला गौरव शुरुआत करता है शाम शानदार की। बातों की दुकान लेकर आ गए, अब अगले 4 घंटे हम ही सुनाते अच्छी अच्छी बातें और गाने मिर्ची पर। इट्स हॉट।

0: Mirchi. Isca bana, usca bana, saca bana. Ya bana. Burga, burga. La vieja la burga.
1: Mirchi, burga. Hello.
2: Good evening, Mr. Srivastav. मैं मॉडर्न स्कूल से बोल रहा हूँ, आपके बेटे के स्कूल से. हाउ आर यू?
1: Thank you.
2: अतुल वैसे पढ़ाई लिखाई में यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके मार्क्स भी अच्छे आते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बिल्कुल आगे नहीं है.
1: आई नो वो खेल में कुछ ऐसा है नहीं खास ज्यादा. हाँ. नहीं लगता उसका.
2: नहीं, वही मैं आपको बताना चाह रहा था. अच्छा मिस्टर श्रीवास्तव, क्योंकि हम 26 जनवरी पे एक फंक्शन कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि पेरेंट्स भी उसमें पार्टिसिपेट करें. पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, जितना अच्छा परफॉर्म वो करेंगे उसके मार्क्स बच्चे को दिए जाएंगे. यू नो
1: परफॉर्म मतलब क्या, परफॉर्म क्या करना होगा हमको?
2: कुछ भी ऐसा करिएगा जो कि बच्चों की चीज हो. आप प्लीज आके यहाँ पे पार्टिसिपेट करिए. आप आओ मिलो शिलो शालो करिए ना यहाँ पे आके स्टेज पे.
1: मतलब गेम है क्या ये?
2: आओ मिलो शिलो शालो.
1: मतलब पेरेंट्स को परफॉर्म करना होगा?
2: वो सिर्फ आप ही को परफॉर्म करना होगा, आप ही को ये पूरा बोलना होगा आओ मिलो शिलो शालो. एक्चुअली प्रॉब्लम भी है, हमारे पास चार ही थे उसमें से यही बचा है. आओ मिलो शिलो शालो अगर आप ले सकते हैं तो आप इसे प्लीज परफॉर्म कर लीजिए ताकि उसके मार्क्स अच्छे आए. राइट. देखिए शुरू ऐसे होता है, आप मेरे साथ साथ बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी. राइट. और इसमें बीच में ना क्लैप करना होता है इस तरह. आओ मिलो,
1: आओ मिलो,
2: चिलो शालो,
1: चिलो शालो,
2: कच्चा धागा,
1: कच्चा धागा,
2: रेस लगा लो,
1: रेस लगा लो,
2: दस पत्ते तोड़े,
1: दस पत्ते तोड़े,
2: एक पत्ता कच्चा,
1: एक पत्ता कच्चा.
2: इसको ना प्रैक्टिस करिएगा, आप तेज से बोलेंगे दस पत्ते तोड़े,
1: तोड़े.
2: या मिस्टर श्रीवास्तव, दस पत्ते तोड़े, दस पत्ते तोड़े,
1: दस दस दस पत्ते तोड़े.
2: हिरण का बच्चा, हिरण का बच्चा, सब हिरण का बच्चा.
1: ओके ओके सॉरी सॉरी, हिरण का बच्चा.
2: घोड़ा दौड़ा टुकड़ू दू,
1: घोड़ा दौड़ा टुकड़ू दू.
2: श्रीवास्तव बोले कुकड़ू को,
1: श्रीवास्तव
3: बोले कुकड़ू को. बहुत अच्छा लगता है जब बाप कोई बच्चा बनने की कोशिश करता. मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, आपकी वाइफ ने मुझे नंबर दिया था, आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका मुर्गा बन गया है.
1: यार ये कुछ
3: नहीं, सर ये सर ये सब सुन चुके हैं. अब प्यार से एक बार बोल दीजिए, इसको रिपीट कर लीजिएगा, बार बार बोलिएगा कुकड़ू को.
4: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
5: रेडी,
6: रेडी
5: टू लर्न?
6: यस.
5: टू प्ले?
6: एब्सोल्युटली.
5: टू ग्रो?
6: विद मेजराती.
7: This school season, fuel every day with delicious and nutritious Maserati fresh products.
6: Milk, cheese, yogurt, labneh, eggs.
7: From breakfast to lunchbox and snacks, Maserati has your family covered. Grow with Maserati freshly from Qatar.
8: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
9: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है.
10: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
9: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम एक स्टेज और दो कमाल. बुक योर टिकट्स नाउ एट एसटीटी स्नोनो. टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स. द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव.

अरिजीत सिंह की आवाज में सतरंगा, ये गाना हमने सुनाया है। और दोस्तों सज्जनों, हम सिर्फ बातें नहीं सुनाते, काम की बातें आपके कानों तक है पहुंचाते। नाम ही है मस्त मौला गौरव, और अब हमारे कतर की तैयारी हो रही है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट फोरम को लेकर। #974974 बात कर रहा हूँ मैं कतर के उस 9th एडिशन की जो होने जा रहा है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट फोरम के रूप में हमारे कतर में। 25th ऑफ अक्टूबर से 27th ऑफ अक्टूबर हमारे कतर में दुनिया के बड़े पॉलिसी मेकर्स, इन्वेस्टमेंट्स लीडर्स या बिजनेस लीडर्स कह लीजिए, और तो और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये हर कोई यहाँ होगा, ताकि आने वाले टाइम के जो चैलेंजेस हैं उनके खिलाफ क्या स्ट्रेटजी बनानी है, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं आने वाले टाइम में, इन सब को लेकर क्या होने वाला है। वेल, बता दें यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिससे हम UNCDA टैड बोलते हैं, उसका ये फ्लैगशिप इवेंट है, और इन्वेस्टिंग इन द फ्यूचर थीम के साथ इस बार ये कतर में होने जा रहा है। सो भाई, दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स यहां होंगे वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट फोरम, जिसकी रौनक हमारे कतर में 25th अक्टूबर से 27th अक्टूबर के बीच रहेगी। एंड अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया है, आई एम श्योर ये वो टाइम है, राइट टाइम टू पिच अपना आने वाले टाइम का आइडिया, ताकि ये इन्वेस्टमेंट के साथ आप कतर में कुछ बड़ा कर पाओ और खुद को एक बड़ा एंटरप्रेन्योर बना पाओ। हाँ जी, याद है ना, मैं तुम्हें एंटरप्रेन्योर। हाँ जी, मस्त बोलोग फिलहाल आपके साथ। और एक ऐसा गाना जो विशाल मिश्रा जब भी गाता है ना, मेरे दिल के करीब ही रहता है यार, मिर्ची शॉर्ट। हंसी का पारेख एंड विशाल मिश्रा, सैयारा का ये ट्रैक, वन ऑफ माई फेवरेट ऑल टाइम।

0: 89.6 मिर्ची 1 पर दम मलंग मलंग गाना सुना के कौन आ गया? और देवी और सज्जनों, हम ऐसे नहीं आते, हम जब आपके पास हैं आते तो बहुत सारी चीज है बताते, और ऐसी एक चीज लेकर मस्त मौला गौरव बिल्कुल तैयार है, जहां पर हम बताने वाले हैं।
1: मोना, सोने का टाइम है, गोल्ड अपडेट।
0: वेल, अगर बात करें तो आज के रेट्स आपको कुछ यूं मिलेंगे। अल फरदान गोल्ड रेट्स की अगर बात करें तो मस्त मौला गौरव आपको बताना चाहेगा, यहां आपको मिलने वाले हैं, यस, 1 ग्राम, अगर हम पैम्प 1 ग्राम गोल्ड लेडी फॉर्च्यून अबार की बात करें, 604 कतारी रियाल फॉर 1 ग्राम, पैम्प 5 ग्राम गोल्ड लेडी फॉर्च्यून अबार 2843 कतारी रियाल, पैम्प 10 ग्राम गोल्ड लेडी फॉर्च्यून अबार 5616 कतारी रियाल, पैम्प 1 औंस गोल्ड लेडी फॉर्च्यून अबार 17363 कतारी रियाल, एंड पैम्प 10 तोला गोल्ड बार 64494। ये पैसे सुन के ही मुझे लगता है यार किस दिन होंगे, मुझे अपनी लाइफ में ना दो ही तरह का सोना चाहिए, एक अच्छे से नींद वाला सोना और दूसरा ये गोल्ड, जिसकी वजह से हम बड़ा सेफ फील करते हैं। अरे दुनिया के बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स में से एक ही, यही तो माना जाता है। अल फरदान गोल्ड एक्सचेंज रेट 89.6 मिर्ची 1 पर, इट्स हॉट।
2: Stay ahead of today's gold rates with Al Fardan Exchange, PAM's official agent in Qatar. Buy authentic Swiss-made 24-carat PAM gold bars
3: and earn Qatar Airways Avios today.
2: Visit our branches or download the app now.

0: एक दिन सूरज चाचू हमारी राहों में थोड़ी तो रहम लाएंगे, क्योंकि फिलहाल जिस तरह की सिचुएशन सूरज चाचू ने बना रखी है, हमारी बॉडी से लेके हमारा दिमाग सब हिल जा रहा है सर।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: वेदर अपडेट।
0: अरे किसको इतनी डिग्री दिखानी है सूरज चाचू, कौन सा कलेक्टर बनना है तुमको है? 45 डिग्री सेल्सियस आज अगस्त के आखिरी दूसरे दिन पे तुम खड़े हो, लेकिन ना तुम्हें अपनी ब्राइटनेस थोड़ी भी कम नहीं करनी है। दिन का मैक्सिमम जहां 45 है, मिनिमम वही 31 है, लेकिन ट्रस्ट मी अभी आने वाले टाइम में ये टेम्परेचर और नीचे जाए, यही हम दुआ करेंगे। और इसके लिए सूरज चाचू को मनाते रहिए कि इनकी चमकान थोड़ी कम हो और सितंबर आते आते तक धूप की जो टकरार हमसे हो रही है वो भी थोड़ी कम हो, ताकि गाड़ी तंदूर से कम एक छोटा रेफ्रिजरेटर बनने की तरफ तो बढ़े। 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi, it's hot.
1: Karizma Kapoor.
2: Who's most likely to sleep with the lights on because they're so scared to death?
3: I have to answer this?
2: No, I'm asking just like that. Karishma, ma'am, ek ka to jawab de do.
3: Probably Kareena.
2: Haan.
3: Out of both of us.
1: Bebo ko dekh ke lagta nahi ye wo darti hongi. Because she's always in safe hands. If you know what I mean. Aap sun rahe hain Mirchi. It's hot.
0: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal. Only on Mirchi. It's hot.
4: हर बार वही रेगुलर रिचार्ज क्यों? अपने हाला नंबर के लिए ओरेडो का योर स्पेशल ऑफर पाइए. मोर वैल्यू मेड फॉर योर नीड्स. अभी ओरेडो ऐप पर चेक करें या करीबी रिटेलर से मिलें. एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडो.
5: सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
6: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग अ फ्लाइंग कार्पेट?
7: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
5: उसे सब पता है.
8: शी कैन रीड योर माइंड. शी विल ब्लो योर माइंड. She is coming for the very first time.
5: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar, this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah.

0: वैसे अब जिनकी आवाज आप सुनेंगे वो साड़ी में ज्यादा नजर आती हैं। कौन है आपके साथ? अरे भाई हमारे बारे में मत सोचो, हम साड़ी में नजर नहीं आते, लेकिन हमारे साथ अब खेलने वाले हो आप, हो जिसे कहते हैं क्योंकि मिर्ची घड़ी का टाइम है 5:04 का।
1: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.
0: तो ऐसे में मस्त बोलो गौरव ने डिसाइड किया है कि वो आपसे पूछेगा और आपको बताना ही पड़ेगा कि ये किसकी आवाज है जो अब आप सुनने जा रहे हैं।
2: Because visually you don't want it to look the same every time she's having a panic attack. I worked with Pooja Swaroop, who does a lot of these acting workshops.
0: एक्टिंग वर्कशॉप्स, और ये पूजा स्वरूप कौन है ये तो नहीं पता, लेकिन ये किसकी आवाज है?
2: Because visually you don't want it to look the same every time she's having a panic attack. I worked with Pooja Swaroop, who does a lot of these acting workshops.
0: Okay, और पहला जवाब आ भी गया इतनी देर में जितनी देर में हम आपसे यहाँ पूछ रहे हैं।
2: Because visually you don't want it to look the same every time she's having a panic attack. I worked with Pooja Swaroop, who does a lot of these acting workshops.
0: अभी भाई का जवाब आ गया है, यूसुफ भाई का जवाब भी आ गया है कि 5001896 पर वॉइस नोट में आप भी बता दो कि ये किस एक्ट्रेस की आवाज है जो मैंने अभी भी प्ले की, और मैंने हिंट में कहा है सारी बहुत पहनती है। 89.6 मिर्ची वन पर मस्त मौला गौरव कर रहा इंतजार 5001896 पर, ये किसकी आवाज थी जो आपसे थोड़ी देर पहले मैंने आपके लिए प्ले की, एंड आपको बताना है वॉइस नोट में यानी कि अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप कर दो 5001896 मिर्ची पर। हमारे आपके दरमियान आप गाना आ रहा है, हाँ जी, रेखा भारद्वाज, राघव कौशिक।

0: Mirchi. Buscabana, buscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga.
1: La vieja la burga. Mirchi, burga. हेलो।
2: गुड इवनिंग मिस्टर श्रीवास्तव, मैं मॉडर्न स्कूल से बोल रहा हूँ, आपके बेटे के स्कूल से। हाउ आर यू?
1: वेरी फाइन, थैंक यू।
2: अतुल वैसे पढ़ाई लिखाई में यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके मार्क्स भी अच्छे आते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बिल्कुल आगे नहीं है।
1: खेल में कुछ ऐसा है नहीं खास ज्यादा। हाँ,
2: नहीं, वही मैं आपको बताना चाह रहा था। अच्छा मिस्टर श्रीवास्तव, क्योंकि हम 26 जनवरी पे एक फंक्शन कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि पेरेंट्स भी उसमें पार्टिसिपेट करें। पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, जितना अच्छा परफॉर्म वो करेंगे उसके मार्क्स बच्चे को दिए जाएंगे, यू नो।
1: परफॉर्म मतलब क्या, परफॉर्म क्या करना होगा हमको?
2: कुछ भी ऐसा करिएगा जो कि बच्चों की चीज हो। आप प्लीज आके यहाँ पे पार्टिसिपेट करिए। आप आओ मिलो शिलो शालो करिए ना यहाँ पे आके स्टेज पे।
1: गेम है क्या ये?
2: आओ मिलो शिलो शालो।
1: पेरेंट्स को परफॉर्म करना होगा?
2: वो सिर्फ आप ही को परफॉर्म करना होगा, आप ही को ये पूरा बोलना होगा आओ मिलो शिलो शालो। एक्चुअली प्रॉब्लम भी है, हमारे पास चार ही थे उसमें से यही बचा है। आओ मिलो शिलो शालो अगर आप ले सकते हैं तो आप इसे प्लीज परफॉर्म कर लीजिए ताकि उसके मार्क्स अच्छे आए। राइट,
1: पूरी कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट।
2: देखिए शुरू ऐसे होता है, आप मेरे साथ साथ बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। राइट, और इसमें बीच में ना क्लैप करना होता है इस तरह। आओ मिलो,
1: आओ मिलो
2: शिलो शालो,
1: शालो
2: कच्चा धागा,
1: कच्चा धागा
2: रेस लगा लो,
1: रेस लगा लो,
2: दस पत्ते तोड़े,
1: दस पत्ते तोड़े,
2: एक पत्ता कच्चा,
1: एक पत्ता कच्चा।
2: इसको ना प्रैक्टिस करिएगा, आप तेज़ से बोलेंगे, दस पत्ते तोड़े,
1: तोड़े
2: या मिस्टर श्रीवास्तव, दस पत्ते तोड़े, दस पत्ते तोड़े,
1: दस दस दस पत्ते तोड़े,
2: हिरण का बच्चा, हिरण का बच्चा, सब हिरण का बच्चा,
1: ओके ओके सॉरी सॉरी, हिरण का बच्चा,
2: घोड़ा दौड़ा दुगड़ू दू,
1: घोड़ा दौड़ा दुगड़ू दू,
2: श्रीवास्तव बोले कुकड़ू को, मिस्टर श्रीवास्तव बहुत अच्छा लगता है जब बाप कोई बच्चा बनने की कोशिश करता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आपकी वाइफ ने मुझे नंबर दिया था, आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका मुर्गा बन गया है।
1: यार ये कुछ नहीं
2: करता सर, ये सर ये सब सुन चुके हैं, अब प्यार से एक बार बोल दीजिए, इसको रिपीट कर लीजिएगा, बार बार बोलिएगा कुकड़ू को।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट,
4: इट्स हॉट,
5: ड्रिवन बाय शैकमैन ट्रक्स, जबरदस्त पावर और क्लीनर एनर्जी का नया चैप्टर, शैकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स एंड बूम ट्रक्स, पावर दैट सेव्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कार्मेल ग्रुप।
6: इट्स ऑल डाउन टू डोनी, इज़न्ट इट? फोर बॉल्स लेफ्ट, दे नीड 12 रन्स टू विन।
7: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है।
8: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
7: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar, this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah live in

0: विशाल मिश्रा सचिन जिगर की आवाज में ये गाना तो सुना दिया, लेकिन आपके साथ खूबसूरत लड़का आ गया। अब देख रहे हैं हमारी खूबसूरती में चार चांद लग रहे हैं। पीको लेजर कराया मैंने ट्रीटमेंट है जी किम्स में जाकर। फिलहाल तो मस्त मौला गौरव आपके साथ और आपके साथ खेल रहे हो जिसे कहते हैं और एक आवाज सुनाता हूँ और पूछता हूँ बताओ ये किसकी आवाज है और लोगों के जवाब आते हैं।
1: Because visually you don't want it to look the same every time she's having a panic attack. I worked with Pooja Swaroop who does a lot of these acting workshops.
0: और मैंने यही पूछा कि ये किसकी आवाज है जो इस वक्त आप रेडियो पर सुन रहे हैं, बताइए।
2: सलाम वालेकुम, मैं रूपेश शर्मा बोल रहा हूँ।
0: जी जी,
2: ये आवाज हो सकते है शिल्पा शेट्टी की।
0: शिल्पा शेट्टी।
3: Hi Gaurav, good evening.
0: Good evening.
3: My name is Sudhir.
0: जी सुधीर भाई,
3: अभी आपने एक ऑडियो क्लिप सुना के पूछा था कि ये एक्ट्रेस का नाम क्या है। लिटिल कंफ्यूजन, दिस वन इज वन अमंग साई पल्लवी और रश्मिका मंदानी, लाइक रश्मिका मंदानी एंड आई थिंक इट इज साई पल्लवी।
0: ओके,
3: साई पल्लवी।
0: साई
3: पल्लवी, गुड इवनिंग टू ऑल द लिसनर्स।
0: ओके सर, थैंक यू।
3: इट्स हॉट
0: सर। साई पल्लवी या रश्मिका मंदाना, वैसे ये साउथ की एक्ट्रेस हैं लेकिन बॉलीवुड में इन्होंने अपना अच्छा कब्जा जमा रखा है, इसीलिए कह रहे कंफ्यूज ना होइए। बताइए बताइए ये किसकी आवाज है।
1: बिकॉज़ विजुअली यू डोंट वांट इट टू लुक द सेम एवरी टाइम शी इज हैविंग अ पैनिक अटैक। आई वर्कड विद पूजा स्वरूप हु डज अ लॉट ऑफ दीज एक्टिंग वर्कशॉप्स।
0: 5001896 पर एक आखिरी मौका दे रहे हैं एंड इतना ही कहना चाहते हैं, बताइए ये किस एक्ट्रेस की आवाज है जो अभी आपने सुनी। मस्त मौला गौरव अगली बार सही जवाब के साथ आएगा मिर्ची पर। इट्स हॉट।

0: Cards, decades of excellence in Qatar. घर बैठे चाहिए नया कार्ड, स्मार्ट चॉइस है ओरिरु मनी कार्ड। अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल, और सुनो हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरु मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। TNC अप्लाई।
1: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
0: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah live.

0: प्यारे नुसरत साहब की आवाज का कोई जादू सीख ही नहीं सकता, ये सिर्फ उनके बस की बात थी। मस्त मौला गौरव। लेकिन फिलहाल आपका जिया चुराने आ जाता है मस्त मौला गौरव, और इस घंटे खेलता है वो जिसे कहते हैं और आज की आवाज कुछ यूं थी।
1: बिकॉज विजुअली यू डोंट वांट इट टू लुक द सेम एवरी टाइम शी इज हैविंग अ पैनिक अटैक। आई वर्क्ड विद पूजा स्वरूप हु डज अ लॉट ऑफ दीज एक्टिंग वर्कशॉप्स,
0: और मैंने पूछा कि बताओ ये किसकी आवाज है। रश्मिका मंधाना, कोई साई पल्लवी, कोई शिल्पा शेट्टी, आप बताइए किसकी आवाज है।
2: अभिलाष द वॉइस नॉट यू प्लेड इज ऑफ विद्या बालन।
3: भाई विद्या बालन का आवाज है। विद्या बालन
0: ओके।
3: मेरा नाम प्रतीक।
4: हाय गाइस दिस इज आसिफ हियर। इट्स नॉट अदर देन विद्या बालन।
3: गुड इवनिंग करो।
0: ओके गुड इवनिंग।
3: हाउ आर यू?
0: बढ़िया बढ़िया
3: सब। हां वो आवाज है विद्या बालन की। ओके थैंक यू। बाय
0: बाय बाय बाय बाय भाई।
5: Hi Gaurav.
0: Hi, hi, hi.
5: This voice is belongs to Vidya Balan.
0: Vidya Balan.
6: No, my name is Sunesh Kumar and the answer is Rashmika Mandhana.
0: Rashmika Mandhana.
6: Ye awaaz sunaya aapne? Ye Rashmika Mandhana ka awaaz hai.
0: Rashmika Mandhana. Okay, okay.
7: Hi Gaurav, good evening. My name is Mohammad Mazharullah. It's Rashmika Mandhana. Yeah, thank you. Mirchi, it's hot.
8: Good evening. I hope you're doing well. Good evening to all listeners.
0: Ji ji ji.
8: The voice being played here is Sai Pallavi.
9: भाई आप तो बहुत दिनों के बाद जो है नजर आए। यार भाई मेरे को इसका नाम याद है, ये कपिल शर्मा शो में आए और मेरे को नाम नहीं आया, इसलिए कि साउथ लोग की जो होती है उनको नाम इतना नहीं याद रहता है भाई।
0: जी जी।
9: और बताओ गौरव भाई तुम्हारा क्या हाल चाल है?
0: बहुत बढ़िया
9: कट रही भाई।
0: बहुत बढ़िया कट रही भाई।
10: हाय गौरव, दिस इज पाविन फ्रॉम अलकोर।
0: जी पाविन भाई।
10: वॉइस ऑफ दिस एक्ट्रेस इज विद्या बालन।
0: पहले तो जोरदार ताली हो जाए जिन्होंने विद्या बालन कहा। यस, मैंने आपको हिंट दी थी कि ये साउथ की ही एक्ट्रेस है, लेकिन लोग रश्मिका मंधाना साई पल्लवी तक पहुंच गए, लेकिन सच्चाई है ये विद्या बालन की आवाज थी जो आपने सुनी। एंड विद्या बालन हेल्स फ्रॉम केरला। यस, वो केरला से हैं। एंड जैसे ही मैंने ये प्ले किया बहुत सारे लोग चक्कर में फंस गए, पर कोई नहीं जी, कभी कभी आप सही होते हो, कभी कभी गलत हो जाते हो, लेकिन मुझसे नजरें मिलाओ और नजरें चुराओ मत, क्योंकि हम ऐसे ही कॉन्टेस्ट खेलते हैं हर घंटे आपके साथ। मिर्ची पर इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: राखी सावंत हाल ही में वर्ल्ड योगा डे गया है जहां हमने तरह तरह के लोगों को योगा करते हुए देखा है। आप उनके बारे में क्या सोचती हैं?
3: बहुत सारे लोग योगा जो है ना वो एसी में बैठ के करते हैं, कुछ लोग ओपन करते हैं। हमारा योगा हॉट योगा है। प्लीज आप राखी सावंत के साथ कॉम्पिटिशन कीजिए योगा में, मैं आपको पक्का हरा दूंगी।
2: ऐसी कोई चीज है ही नहीं राखी सावंत जिसमें हम आपसे जीत सकते हैं। आप सुन रहे हैं मिर्ची, शी इज हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं
5: या आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
6: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
4: उसे सब पता है।
7: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
4: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar, this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah live.

0: Yeah.
1: मिर्ची वन पर कला स्टार तो गया, लेकिन अपने बनारस से आया हुआ कतर में एक कलाकार जिसका नाम है हाँ जी, ये कलाकार आ गया और इस कलाकार को पैसे की बहुत जरूरत है। और आपको पता ही है मैं खुश क्यों, कल आएगी टंग से करती हूँ सैलरी। एक कतरी रियाल के बदले इस वक्त मिलने वाले इंडियन रुपीज 26 रुपए 15 पैसे हैं, 26.15 INR। वहीं 1 कतरी रियाल के बदले श्रीलंकन रुपीज 90.02। अगर हम पाकिस्तान रुपीज की बात करें जनाब, वाहिद कतरी रियाल के बदले 76.19 पाकिस्तान रुपीज। तपाईको नेपाली रुपीज का रेट छ दाजु, 1 कतरी रियाल के बदले बहिनी 41.76 का रेट छ। हाँ जी, 41.76 का रेट छ। अगर घर पैसा भेजने लाई तो सही टाइम छ दाई। अगर इसके बाद हम बंधु बांग्लादेशी टाका बात करके दादा, एक्टा कतरी रियाल के बदले 33.86, तो 33.86 बांग्लादेशी टाका का रेट। मस्मोला गौरव के साथ गानों के लिए नहीं करना पड़ता है वेट, मिर्ची है।

0: क्या आप जानते हैं कि फॉर्मूला वन की जो पैडो क्लब की जो टिकट्स है ना वो सोल्ड आउट हो गई है। और ये बता रहा है कि भाई टूर्नामेंट से पहले ही किस तरह का क्रेज है। शाम के 6:05 का टाइम
1: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: वेल, अगर कतर में कोई एक चीज जो अब साल दर साल एक आदत सी बन गई है वो है फॉर्मूला वन की ये कतर एवेस कतर ग्रांड प्री, एंड जिसके लिए 27-29 ऑफ नवंबर इस बार भी फॉर्मूला वन रेस होनी है, एंड इसके लिए F1 पैडो क्लब की टिकट सोल्ड आउट हो गई है। ये बता रहा है कि पूरी दुनिया में किस तरह से फॉर्मूला वन वर्ल्ड चैंपियनशिप का कतर का जो वर्जन है वो इतना पॉपुलर हो रहा है, एंड पीपल आर लुकिंग फॉर पैडो क्लब। और अब ये खत्म हो गई, अब जो बाकी टिकट बची है उसके बारे में सोचो। वैसे मेन ग्रैंड स्टैंड की बात करें तो 2000 कतरी रियाल का एक टिकट अवेलेबल है, उसके अलावा आपको नॉर्थ ग्रैंड स्टैंड की तरफ जाना है 1500 कतरी रियाल, टर्न 2, टर्न 3 एंड टर्न 16 पर ये 1000 कतरी रियाल ईच का है, एंड लुसेल हिल एरिया की तरफ जाना चाहते हैं कतरी रियाल 600 का टिकट इसके लिए भी बनाया गया है। बिल्कुल मिलाकर आप जा सकते हैं, एंड लुसेल इंटरनेशनल सर्किट की वेबसाइट पर आपको ये सारी की सारी टिकट्स अभी दिखेगी। जितनी जल्दी हो सके बुक कर लो, क्योंकि फॉर्मूला वन यानी कि ढूंढू एक बार फिर से हमारे कतर में आ रहा है। और अगर आपने अब तक नहीं देखा तो इस बार देख लो 89.6 मिर्ची वन पर, मस्मौला गौरव ने याद दिलाया। और अगर कोई दोस्त यार साथ में चाहिए तो किसी को मत पूछो, हमको बस ले लो मिर्ची। इट्स हॉट

0: Mirci. Iskabana, puskabana, sakabana. Yambana. Murga, murga. La
1: fiesta la murga. Mirci, murga. Hello.
2: Hello. Hello.
1: भैया आवाज साफ नहीं आ रही, कम आ रही है आवाज।
2: साहब आपकी दुकान से कल एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन ले गया था, याद है आपको?
1: हाँ जी।
2: आपकी दुकान से एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन लेके गया था मैं कल।
1: अच्छा अच्छा।
2: तो ये यार, ये ड्रिल मशीन कैसे दी है? ये बहुत आवाज कर रही है, एक सेकंड रुको।
1: भाई ड्रिल मशीन तो आवाज तो करेगी यार।
2: एक सेकंड यार, आवाज करेगी। आप ये बंद कर, इसको बंद कर, बंद कर, बंद कर। रमेश इसे बंद कर दे यार। आप मरवाओगे, ड्रिल मशीन आवाज करेगी, यहाँ सारे जाग जाएंगे तिजोरी खुलने से पहले।
1: मैं
2: आपको यही बता रहा हूँ, ये ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, ये यहाँ पे जो मैं ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना, ये जिस कोठी में आया हुआ हूँ अभी इनकी तिजोरी खुली भी नहीं है। मैं तो ये ड्रिल मशीन यार, इसको बंद कर दे रमेश, बंद कर दे। भाई साहब ये तिजोरी मैं खोल रहा हूँ, ये आवाज बहुत कर रही है यार।
1: क्या कह रहे हो, तिजोरी ड्रिल मशीन कर क्या रहे हो आप?
2: इनके घर की चोरी कर रहा हूँ, खोपड़े में बात नहीं आती क्या तेरे यार? मुझे फंसवाएगा तू?
1: तो ड्रिल मशीन हमारे लेके तो चोरी करने गया।
2: एक तो आवाज इतनी दी है तूने, ड्रिल मशीन के सारे जाग जाएंगे यार।
1: चोरी करने के लिए गया?
2: तुमने पहले क्यों नहीं
1: बताया? यहाँ पे ड्रिल मशीन से है कौन? तू खुद चोरी कर रहा है, मुझे फंसवाएगा।
2: एक बात सुन,
1: तू मुझे मरवाएगा, मुझे फोन कर दिया। हेलो
2: यार, कमाल है आप तो, मेरी रोजी फिर रात मार रहे हो।
3: सर मेरी बात सुनिए, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपकी दुकान का नंबर मुझे किसी ने दिया था, आप रेडियो मिर्ची में हैं, सब आपको सुन रहे हैं, आपके साथ मजाक किया है, मुर्गा बना दिया आपका।
1: कहाँ से बोल रहे भैया?
3: रेडियो मिर्ची से सर, आपके साथ मजाक किया है मैंने। जरा हंस के मेरे साथ एक बार।
2: अब ठीक है,
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
5: इट्स ऑल डाउन टू डोनी, इज़न्ट इट? फोर बॉल्स लेफ्ट, दे नीड 12 रन्स टू विन।
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है।
7: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
6: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snow. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist, Suhani Shah, live.

हाँ जी बादशाह, शी मूव इट लाइक की जगह मगर बोले शी रीड इट लाइक, तो सुहानी का नाम आएगा। भैया ऐसा माइंड रीड करती है पूछिए मत, और इसीलिए तो दी मेंटली सुहानी शाह आ रही है अपने कदर पहली बार, एंड हमारे दिमाग को एकदम चकरा देंगी मेरे यार, क्योंकि माइंड रीडिंग की ये सुपर आर्टिस्ट दी मेंटली सुहानी शाह हमारे कतर में होंगी। एंड मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसी शाम होगी जहां पर हमें कुछ अलग देखने को मिलने वाला, अब तक हमने ये कतर में एक्सपीरियंस नहीं किया है। एंड इट्स टाइम फॉर यू टू बुक योर टिकट्स नाउ। एस सिटी स्नूनू पर 30 कतारी रियाल का कैशबैक है, यानी कि आप किसी भी कैटेगरी की टिकट लेंगे आपको 30 कतरी रियाल का कैशबैक श्योर शॉट मिलने वाला है। तो इस मौके का फायदा उठाओ, अर्ली बर्ड ऑफर कब ना कब खत्म हो जाए, इसका फायदा उठाते रहो एंड अपने लिए टिकट्स बुक करते रहो, क्योंकि दी मेंटली सुहानी शाह लाइव इन कतर फॉर दी वेरी फर्स्ट टाइम, स्पॉन्सर्ड बाय कतर कैलेंडर, प्रेजेंटेड बाय आईपे। और ये शाम सिर्फ सुहानी नहीं होगी, सुहानी के साथ हमारे लिए एंटरटेनमेंट का तड़का लगाने आ रहे हैं म्यूजिक एंड डांस डुओ चरण एंड आसी। तो भाई किस बात का इंतजार कर रहे हो, जितनी जल्दी हो सके अपनी टिकट्स बुक कर लो, आया मौज करेंगे। अब तो बस 26वें दिन ये सब होना है, जल्दी टिकट्स बुक करते रहो, मिर्ची सुनते रहो, इट्स हॉट।

लेकिन बच्चे कोई नादानी ना करे इसके लिए मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर ने गाइडलाइंस इशू की हैं। हाँ जी, बैक टू स्कूल तो शुरू हो गया, लेकिन इसके साथ ही वो अवेयरनेस कैंपेन जो मिनिस्टर ने चलाया वो है स्कूल बसेस को लेकर। हाँ जी, उन्होंने बच्चों से रिक्वेस्ट किया है कि एक बार जब आप बस के अंदर जाते हैं तो अपनी डेजिग्नेटेड सीट्स पर जाकर बैठ जाया करिए, सीट बेल्ट जरूर पहनिए, एंड स्कूल को भी मेक श्योर करने को कहा है कि स्कूल बस जब तक कंप्लीट स्टॉप ना हो जाए तब तक किसी भी बच्चे को उतरने या चढ़ने ना दें, एंड अटेंशन दिए रहें। याद रखिए, जब भी बच्चा बस में बैठे तो आप उसके आसपास देख लें कोई मूविंग गाड़ी आ तो नहीं रही है, एंड मिनिस्ट्री बार बार ये इसलिए कहती है ताकि बच्चों की सेफ्टी जो है वो इंश्योर रहे। अक्सर हमने देखा है कि यूथ हमारे कतर में बिल्कुल सावधानी बरतती है, स्कूल के लोग हों या पेरेंट्स हों, पर फिर भी जब भी आप किसी स्कूल के एरिया में है ना, अपनी गाड़ी की स्पीड थोड़ी सी स्लो डाउन कर लीजिए। शायद आपको 1.5-2 मिनट एक्स्ट्रा देना पड़ जाए, लेकिन इससे आप कितने सारे छोटे छोटे बच्चों को सेफ फील कराते हैं, इस बात को जरूर समझिएगा। 89.6 मिर्ची 1 पर मस्त मौला गौरव आपके साथ। बच्चों, आई होप मजा आया आज स्कूल में, वेकेशन के बाद पहला दिन अच्छा रहा, एंड जब आपने ब्लैकबोर्ड से आंखें लड़ाई होंगी तो बहुत सारी पढ़ाई की चीजें आई होंगी। 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट।

0: अनुराग कश्यप की मूवी गैंग्स ऑफ वसीपुर का वो मनिया गाना खुशबू राज वाराणसी से, रेखा झा पटना से, दोनों ने मिलके गाया था। वो मनिया, वेल ब्यूटीफुल सॉन्ग। एंड इसके बाद हम आते हैं उस ब्यूटीफुल स्टेडियम की बात करते हैं जब हमारे कतर में बास्केटबॉल का नया ठिकाना बनेगा।
1: क्रिकेट का, फुटबॉल का, हॉकी का, सबका अपडेट बताएगा रे तिरम मिर्ची।
2: स्पोर्ट्स अपडेट।
0: बस अल जनूब स्टेडियम, वक्रकाल जनूब स्टेडियम, जहां पर हमने दुनिया के बड़े बड़े फुटबॉल बड़े खिलाड़ियों को देखा 22 फीफा वर्ल्ड कप के टाइम पर, अब वहां हम फीफा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप कतर 2027 के लिए देखने वाले हैं उन लोगों को जो बास्केटबॉल की दुनिया के जादूगर हैं। वेल बता दें कि यहां पर थर्सडे देर शाम मैच हुआ कतर वर्सेस चाइना के बीच। हालांकि कतर इस मैच को हार जरूर गया 57-83 से, लेकिन चाइना के खिलाफ खेलकर हमारे कतर के प्लेयर्स ने अपना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी ले लिया। कतरी फैंस उन्हें सपोर्ट कर रहे थे, बहुत सारे लोग जो हैं वो कतर टीम को चीयर अप कर रहे थे। तो बस इतना ही कहना चाहते हैं, एज अ होस्ट नेशन हमारे पास ऑलरेडी क्वालिफिकेशन है, हम फीवा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप में खेलेंगे, लेकिन उसे एक तैयारी के रूप में जरूर कह सकते हैं। वेल हम आपको बता दें वर्ल्ड कप 27th ऑफ अगस्त यानी कि अब 365 डेज से भी कम रह गए हैं, यस, से लेकर 12 सितंबर 2027 तक चलने वाला है। और इस दौरान 32 नेशनल टीम्स हमारे कतर में होंगे, 92 गेम्स होंगे। एंड इसके कोर्ट कहां कहां है, लुसेल अरेना, अल जनूब एरिया, एंड इसके अलावा अल बिन हमद अल अतिया अरीना एंड अल दुहेल अरीना, चार बड़े स्टेडियम्स में ये मैचेस होने वाले हैं। एंड हम और आप अब बास्केटबॉल से थोड़ा और करीबियत बढ़ाएंगे ताकि इस गेम में अपनी कतर की टीम को सपोर्ट कर चीयर अप करें। और भले ही फीफा वर्ल्ड कप नहीं आया, लेकिन क्या पता हमारे ज़्यादा चीयर करने से इसमें हमारी टीम कामयाबी पा जाए। चलिए फिलहाल एक देसी गर्ल आ गई है, शंकर महादेवन सुनिधि चौहान लेकर आए मिर्ची पर इट्स हॉट।

0: सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
1: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
2: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
0: उसे सब पता है.
3: शी कैन रीड योर माइंड. शी विल ब्लो योर माइंड. She is coming for the very first time.
0: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah live.

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: हाय देयर, व्हाट्स अप, टेल मी।
0: मेरी सास मुझे काम वाली की तरह ट्रीट करती है, पूरा दिन काम बताती रहती है, क्या करूं?
1: ऑलराइट, डू वन थिंग ना, तुम भी हफ्ते में दो छुट्टियां ले लिया करो यार, क्योंकि क्या है ना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा।
2: साले को खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले।

0: विशाल मिश्रा की आवाज में तबाही, पिक्चर को भी तबाही टाइप रिव्यू मिल रहा है। हाँ जी, फिलहाल बात करें तो घड़ी का टाइम 7:03 का।
1: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.
0: वर्ल्ड कप से लेकर बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस तक सब होस्ट कर रहा है कतर, और अब बारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की।
2: #974 the most trending local news of the day.
0: Yes, organized by UN Trade and Development, the flagship event under the theme Investing in Future आ रहा है हमारे कतर। Yes, हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट फोरम की, जिसने अब कतर की राह पकड़ ली है। एंड 25th of October से 27th of October के बीच दुनिया के बड़े बड़े पॉलिसी मेकर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लीडर्स एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बड़े बड़े गवर्निंग लोग, ये सब के सब हमारे कतर में होंगे। एंड फ्यूचर में दुनिया में क्या खास होने जा रहा है, चाहे वो क्रिटिकल मिनरल्स की बात हो, AI की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, एनर्जी से रिलेटेड कुछ हो, टूरिज्म, कल्चर एंड स्पेस इकोनॉमी, इस पर बहुत सारा डिस्कशन होने वाला है 25th टू 27th ऑफ अक्टूबर हमारे कतर में। 9th वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट फोरम ये होने जा रही है, एंड आई एम श्योर यहां पर दुनिया के कुछ बड़े चैलेंजेस एंड आने वाले दिनों में बड़ी अपॉर्चुनिटीज, दोनों के बारे में बहुत सारी चीजें सुनने को और देखने को मिलेगी। वेल, बस इतने कहना चाहता हूं, 22 फीफा वर्ल्ड कप के बाद से ही दुनिया का हर बड़ा मेजर इवेंट कतर में आने को बेताब है, और ऐसे में अब वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट फोरम का भी आना हो रहा है। एंड आई एम श्योर एक दिन वो भी आएगा जब हम कहेंगे कतर इज ऑल सेट टू होस्ट द ओलंपिक्स। 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. La fiesta la burga. Mirchi, burga.
2: Hello.
3: Hello.
2: कौन?
3: हेलो।
2: हाँ बोलो, कौन?
3: हेलो, इधर से बोल रहा हूँ। आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए।
2: हाँ बोल, कौन रहा है?
3: बोल कौन रहे हो? कंप्लेंट करी थी आपने सीवर साफ करने की। नीचे से बोल रहा हूँ, आपके सीवर में घुसा पड़ा हूँ।
2: बोल कौन रहे हो?
3: आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए।
2: हाँ बोला था।
3: ओ भैया मेरी जान को बचाओ, यहाँ पे बहुत गहरा है यार। आप लोग खाते क्या हो? कितना गहरा कर दिया आपने।
2: तो पूछ के घुसे थे क्या अंदर?
3: ज्यादा सवाल मत करो, मेरी बात सुनो सिर्फ।
2: हाँ बोलो।
3: यार आपके टॉयलेट पे अपनी कोई बैठा के क्या फेंक रहा है यार ऊपर से? बंद करो सर। ओ भैया मेरी जान को बचाओ, यहाँ पे बहुत गहरा है यार। आप लोग खाते क्या हो? कितना गहरा कर दिया आपने।
2: कौन बोल रहा है? कहाँ घुस गए यार?
3: हेलो, इधर से बोल रहा हूँ। आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए।
2: हाँ बोला था। हुआ क्या है कुछ तो बताओ।
3: ज्यादा सवाल मत करो, मेरी बात सुनो सिर्फ। यार आपके टॉयलेट पे अपनी कोई बैठा के क्या फेंक रहा है यार ऊपर से? बंद करो सर।
2: कब आया था? कब घुसा अंदर?
3: फिर सवाल यार, मैं यहाँ पे अटका पड़ा हूँ, मुझे बाहर निकालो यार कैसे भी करके।
2: तो कहाँ से रहा है? तो नहीं हो गया है?
3: सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी, नीचे घुसा पड़ा हूँ आपके सीवर में, बाहर निकालो यार।
2: मैं तो इधर ऑफिस में हूँ अपने।
3: ऑफिस क्यों गए? सीवर साफ करवाना था, मैं तो यहाँ पे घुसा पड़ा हूँ ना अंदर।
2: मेरी सीवर में घुसा है, किसी और की सीवर में घुस गया?
3: ये बदबू से पता चल रहा है सीवर तेरा ही है यार।
2: सीवर में मरा रहा है तू?
3: गाली तो मत दो।
2: हेलो
3: हेलो,
2: फिर फोन कर दिया तूने?
3: अच्छा सीवर साफ होने का काम करो, एक चीज बोलो।
2: क्या बोलो?
3: कुकड़ू को।
4: सर आई एम सो सॉरी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे किसी ने बताया था कि आपने सीवर साफ करने की कंप्लेन करी थी। आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका पुरका पर क्या?
2: कुकड़ू को।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on मिर्ची, it's hot.
6: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
7: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है।
8: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
7: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar, this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah.

बहुत दिनों के बाद जब स्कूल जाओगे तो पहले दिन की पढ़ाई का गहरा असर तो होगा, लेकिन अब जब स्कूल में कुछ बच्चों को नए सब्जेक्ट मिलेंगे तो उनके करियर पर इसका गहरा असर होने वाला है। यस, मस्त मौला गौरव यहाँ आपको बताना चाहेगा कि कतर में न्यू सेशन शुरू होने वाले हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, और वहां पर इस बार कुछ खास हो रहा है। कुछ खास यूं हो रहा है कि उनके लिए कुछ नए कोर्सेज जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हायर एजुकेशन ने सेशन 2026-27 के लिए स्टार्ट कर दिए हैं। काश हमारे स्कूल डेज में भी ये हो पाता, क्योंकि मैं ना बहुत घबराता था। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अलग अलग है जी, यहां पर एक सब्जेक्ट बनाकर साइंस के सारे प्रेशर को कम कर दिया गया है। लाइफ स्किल्स प्रोग्राम के लिए गर्ल्स के लिए बकायदा हाउस होल्ड मैनेजमेंट एंड कुकिंग, और बॉयज के लिए कैंपिंग सी ट्रिप्स एंड सर्वाइवल स्किल्स का भी एक लाइफ स्किल प्रोग्राम सब्जेक्ट आ गया। फाइनेंशियल एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी के लिए पैसा कैसे मैनेज करना है, स्मार्ट डिसीजन मेकिंग किसको कहते हैं, कैसे डायरेक्ट रियल लाइफ में हम इन सारी पॉलिसीज को लगाएं, इसके लिए भी बकायदा एक सब्जेक्ट बना दिया गया है। टेक फ्यूचर स्किल्स, जहां पर AI, डेटा साइंस और इकोनॉमिक्स सीधा सिस्को अकेडमी से इंजाज कतर के थ्रू कतर डेवलपमेंट बैंक के साथ टाई अप कर इन सारे कोर्सेस को लॉन्च किया गया। मतलब हमारे टाइम पे जहां रट्टा मार दिन में हिस्ट्री सिविक्स बड़ी बेवफा रात को सफा हो जाती थी दिमाग से, यहां पर सब कुछ बड़ा ही प्रैक्टिकल हो रहा है। और AI के जरिए अब जब सीखना होगा दोस्त, तो ये जनरेशन वाकई में कुछ बड़ा करेगी। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हायर एजुकेशन, जो कोर्सेज लाकर बच्चों की जिंदगी में बहुत सारा सुकून भी ला रही हैं। वरना हम तो दिन में रट रट के रात में सफा हो जाते थे, और एग्जाम में सफा चट 89.6 मिर्ची 1 पर मम्मी से मिलते थे पटापट गालों पे थप्पड़ मिर्ची शॉट।

गाना खत्म हो गया और आपके साथ कौन आ गया? वेल, हर चीज जो पहली बार की जाती है बहुत दिनों तक याद रहती है, और ऐसे ही बड़े दिनों के बाद आज आपने पढ़ाई शुरू की है तो वो भी काफी दिनों तक याद रहेगी। बैक टू स्कूल, फाइनली बच्चे अब स्कूल गए एंड टीचर्स ने आज उनसे ढेर सारी बातें की, पढ़ाई कराई, चलो सबको बधाई। मम्मी पापा भी अब अपने अपने टाइम पर सेट हो जाएंगे धीरे धीरे। ये अलार्म क्लॉक जो आज बड़ा खराब लग रहा था, अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि भाई दोस्तों यारों के संग स्कूल में टाइम स्पेंड करना भी तो अपने आप में एक मजा ही जैसा है। इसी उम्मीद से कि बच्चों बहुत दिनों के बाद स्कूल जरूर गए लेकिन अच्छी फीलिंग आई होगी। एंड एग्जाम्स की अब प्लानिंग की तैयारी की बात आ गई है, क्योंकि मुझे पता है स्कूल खुलते ही बहुत सारे स्कूल में CBSE बोर्ड में एग्जाम्स आने वाले हैं, तो कोई नहीं, घबराना नहीं है। जितनी मस्ती की अब उतनी पढ़ाई कर इन एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाने हैं एंड अपने आप को ये बताना है कि यू कैन डू इट। इस उम्मीद से कि बेहतरीन तरीके से आज से आपका बैक टू स्कूल शुरू हो गया। मस्त मौला गौरव आगे बढ़ता है 89.6 मिर्ची 1 पर। एंड अगला गाना देखा तेनु पहली पहली बार में मिर्ची पर। आज वैसे किताब भी बड़े दिनों बाद पहली बार ही देखी है मिर्ची थॉट देखा।

0: decades of excellence in Qatar. घर बैठे चाहिए नया कार्ड? स्मार्ट चॉइस है ओरिरू मनी कार्ड. अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर. एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल. और सुनो, हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स. लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरू मनी कार्ड स्ट्रेट अवे. TNC अप्लाई.
1: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
0: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम, एक स्टेज और दो कमाल. बुक योर टिकट्स नाउ एट एसटीटी स्नो नो. टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स.

लग रहा है थोड़ी दुआ तो हमारी आपकी भी कबूल हुई है। मौसम बदलने वाला है। हाँ जी, ह्यूमिडिटी का तो नहीं पता, लेकिन फ्रेश वाली स्ट्रॉन्ग नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स हमारे कतर में आने को तैयार है। ट्यूसडे एंड वेंसडे यानी कि सितंबर 1st एंड सितंबर 2nd को ये आप फील करेंगे कि कतर में अचानक से हवाएं काफी तेज हो गई हैं। हालांकि इसके साथ डस्ट भी आएगा और हॉरिजॉन्टल विजिबिलिटी भी थोड़ी कम होगी कुछ एरिया में, लेकिन इस दौरान मरीन वार्निंग भी है। अगर हो सके समुद्र के आसपास ज्यादा मत जाइए, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जो फ्रेश वाली आ रही है, मुझे पूरी उम्मीद है टेम्परेचर तो पक्का नीचे लेके जाएगी। एंड वो दिन दूर नहीं दोस्तों जब सुहेल स्टार का पहला 13 दिन का फेज खत्म होगा और गर्मी थोड़ी और घटेगी। एंड कहा ये जा रहा है 15 सितंबर के बाद वील फील मच बेटर। इसी उम्मीद से कि हम जो कह रहे हैं वैसे ही हो, मस्त मौलोग और लेगा अलविदा, लौटेगा कल शाम एक बार फिर से शाम शानदार लेकर यही मिर्ची पर। तब तक के लिए हबीब मां सलामा, मिर्ची इट्स हॉट।

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 8। सुनते रहिए 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।
2: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
3: गाना इंडी टॉप 10
4: कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची पर अब बारी है असली पॉप काउंटडाउन की। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों की गिनती हम आपके लिए करते हैं। उसके साथ साथ हमारा 90s 2000s का इंडी पॉप क्लासिक, सम स्पेशल शाउट आउट्स एंड आज काफी सारे इंटरेस्टिंग
3: गाना इंडी टॉप 10।
4: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची पर अब बारी है असली पॉप काउंटडाउन की। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों की गिनती हम आपके लिए करते हैं। उसके साथ

0: इज सो इंटरेस्टिंग कि आज से एक साल पहले हम बंजारे द आर्टिस्ट की एग्जिस्टेंस के बारे में भी नहीं जानते थे, और आज उनके दो गाने हैं इस काउंटडाउन पे. एक ने डेब्यू किया नंबर 10 और एक है ऑन द टॉप. इस सुपर इनक्रेडिबल हरियाणवी डुओ इज वन टू लुक फॉर. रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. बरसात इज डेब्यूइंग दिस वीक ऑन गाना नंबर 10. उसके बाद संजू राठौड़ का बैंगल्स पिछले हफ्ते से दो पोजिशन नीचे ड्रॉप होके ऑन गाना नंबर 2. दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनका. एंजॉय.
1: Number 10.

and welcome. This is the Ghana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. This show is all about the hottest pop music of the week. At RJ Kanika on Instagram par jao, mere saath connect karo. Koi gana share karna ho, bindaas aake hit me up. कौन सा गाना किसको अच्छा लगता है, कोई एक गाने से कितना डीप लेवल पे कनेक्ट करता है, दैट्स वेरी सब्जेक्टिव. आई ट्रूली बिलीव दैट हमें कोई गाना हमारे खुद के एक्सपीरियंसेस की वजह से अच्छा लगता है, हमारा इमोशनल रिस्पॉन्स टू इट, जो बहुत बार हम जिस सिचुएशंस में होते हैं, जिस एनवायरमेंट में होते हैं, जिस दौर में होते हैं अपनी जिंदगी के, उससे कनेक्टेड होता है. बट ऐसे गाने होते हैं जो टाइमलेस होते हैं, उन्हें हम क्लासिक्स कहते हैं. काउंटडाउन पर आगे बढ़ते हुए हम अपना 90s एंड 2000s का इंडी पॉप क्लासिक आपके लिए प्ले करने वाले हैं. बट वन थिंग आई ऑब्जर्व थ्रू द वीक्स इज, जब भी हम कोई गाना प्ले करते हैं, उसके इंट्रो म्यूजिक पर ही लोग उस गाने को पहचान जाते हैं. दैट मेक्स अस रियलाइज द पावर ऑफ अ गुड इंट्रो म्यूजिक, जैसे दिस वन बाय लकी अली. आई नो आप साथ में गुनगुनाने लग गए थे. ये मेलेडी, ये इंट्रो म्यूजिक हमारी मेमोरीज में एच्ड है, जस्ट लाइक मोहित चौहान का डूबा डूबा. ये म्यूजिक आपको पहाड़ों पे ट्रांसपोर्ट कर देता है. मोहित चौहान का गाना डूबा डूबा पूरा याद आ जाता है. सच पावरफुल आइकॉनिक इंट्रो पीसेस. एट आरजे कनेक्ट ऑन इंस्टाग्राम पर आओ, मैं आपके लिए इंट्रो म्यूजिक प्ले कर रही हूँ. आपको बताना है कौन से वाला गाना है. It's a high beat one. At RJ Kanika on Instagram पर मुझे आके बताओ ये कौन सा गाना है. शो में आगे बढ़ते हुए we will play one of these songs on our cassette classic. So stay tuned for that. Moving on with the countdown. अगले वाला गाना Zara Khan Scales का Move Body. 6 हफ्तों से इस countdown पर बरकरार. Move Body is this week on गाना नंबर 8. Number 8.

0: Blana, Indie Top 10. Kanika ke saath, on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi. Iska bana, uska bana, saka bana. Ya bana. Murga, murga. Naveed wala murga. Mirchi murga.
2: हेलो
3: हेलो बेटा नवनीत,
2: आप कौन?
3: पापा कहाँ हैं?
2: पापा तो बाहर हैं, आप बताइए।
3: बेटा ऐसा है, आपके पापा और मैं हम बचपन से बड़े अच्छे दोस्त हैं। मेरे को बता रहा था आशीष, आपके पापा ने बताया था मेरे को कि बेटा है, उससे बात कर लेना फोन पे कभी, उससे पूछ लेना। मेरे को आपके पापा ने कहा था कि मेरा बेटा कभी कभी शरारत भी करता है, चलो हर बच्चा कर देता है, लेकिन आशीष दिल का बड़ा अच्छा है, क्योंकि मेरे बचपन का दोस्त है ना आपका पापा, वो किसी को डांट नहीं सकता। अच्छा बेटा, तुम्हारे पापा ने मेरे से ये कहा था आशीष ने कि तू ना नवनीत को फोन कर लियो, क्योंकि वो तो कभी डांटता नहीं है आपको किसी भी बात पे। तो अभी अभी आपके पास एक मिनट है क्या?
2: लेकिन आपको काम क्या है?
3: बस एक मिनट तक मेरे को आपको डांटना था।
2: पापा ने कहा था?
3: चुप कर! पापा ने कहा था, मेरे दोस्त का पीछा ले रखा है तूने, उठा के पटक के रख दूंगा, बता रहा हूँ मदर को।
2: क्या हुआ अंकल?
3: बेटा आपके पापा ने कहा था मेरे से कि वो टाइम पे वो निकल गए हैं, उनको कुछ जरूरी काम था, आपको डांटने का दिल कर रहा था तो वो डांट नहीं पाए, तो मेरे से कहा था आप डांट देना, मेरे जो दोस्त तो दोस्त है ना हम आपस में।
2: अब मुझे क्यों डांट?
3: चुप कर!
2: किस तरह बात कर रहे हैं मेरे से? आप मेरी बात सुनो, मैं पापा से बात कर लूं।
3: पापा से बात करेगा दांत तोड़ दूंगा, ऐसे बैठे बैठे पापा की तरफ से डांट रहा हूं मैं। क्यों कर रहा था तूने?
2: पापा को ऐसे किस बात का, मुझे ये भी नहीं
3: पापा को किस बात का बुरा लगा, इससे मेरे को क्या लेना देना है। असल में पापा आपके बड़े बिजी हैं आज, तो मेरे को मैसेज किया था उन्होंने कि वह उसको डांट देना।
2: लेकिन बुरी क्या
3: लगी? अंकल कल भी आखो है, एक मारूंगा।
2: ने बदतमीजी क्या करी
3: थी? ये अपने पापा से पूछना ना, मैं आपके बीच में क्यों पढ़ूं?
2: कह रहा मैंने कोई ऐसी बदतमीजी की नहीं इन दिनों में।
3: एक मरना घुमा के मैंने की नहीं।
2: ठीक है, मैंने वो भी कर लिया, मैं बदमाशी।
3: ठीक है, मेरे साथ बोल कुकड़ू को बेटे।
2: क्या बोलूं?
4: नवनीत कुकड़ू को बोलो, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, तुम्हारे पापा ने ही मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, तुम रेडियो मिर्ची पे।
2: आपको पापा ने ऐसे कब बताया था मेरा मुर्गा बनाने को?
3: चुप कर! मारूंगा घुमा के। पापा ने कब बताया था मुर्गा बनाने को?
0: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
5: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है।
7: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
6: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at STT Snoonu. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah.

0: गर्वित प्रियांश की कॉम्पोजिशन, प्रियांश जोनीता गांधी की आवाज में दिस अटली बटरफुली ब्यूटीफुल सॉन्ग कॉल्ड काफी है ना इज फ्रॉम मुसाफिर कैफे. इवन इफ आपने अभी तक शो नहीं देखा है, दिस सॉन्ग इज फॉर एवरीवन एंड टोटली बिलोंग्स ऑन द काउंटडाउन दिस वीक ऑन गाना नंबर 6. उससे पहले हमने सुना अनीश सरकार हृदय का उड़ी उड़ी ऑन गाना नंबर 7.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello and welcome. This is the Ghana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. This show is all about the hottest pop music of the week. Hafte ke top 10 pop gaane, jisme ek nayi entry hai. But it's time for what we call
1: Kanika's Kasar Classic.
0: हमारी कैसेट क्लासिक, जहां पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गाने फीचर करते हैं. ये वो गाने हैं जिनसे हमें इंडी पॉप से मोहब्बत हुई है, जिनकी वजह से ये पैरेलल लेन ऑफ म्यूजिक आज यहां तक आ गया है. हम 7 साल से ये शो कर रहे हैं. द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज
2: तेरी दीवानी.
0: द सॉन्ग वी गोइंग टू फीचर दिस वीक इज गाने का नाम है विजुरिया बाय द वन एंड ओनली सोनू निगम. ये गाना सुन के ना बॉडी में एक इलेक्ट्रिसिटी सी आ जाती है. मेरी तबीयत थोड़ी सी फीकी पड़ रही थी इस हफ्ते, मौसम में ही कुछ चल रहा है. सो दिस वॉज एग्जैक्टली द काइंड ऑफ सॉन्ग जो मुझे सुनना था टू री एनर्जाइज माई सेल्फ. सोनू निगम की एल्बम मौसम से ये गाना फ्रॉम द लेट 90s. दिस सॉन्ग रिमाइंड अस ऑफ द वर्सेटैलिटी ऑफ सोनू निगम. एक तरफ दीवाना एल्बम में इतने पावरफुल लव बैलेड्स, दूसरी तरफ अ सॉन्ग लाइक बिजुरिया, फुल पॉप स्टार एनर्जी ठुमका वो अंदाज. गाना सुनते ही पूरा माहौल बन जाता है. इट्स इनक्रेडिबल कि आज 26 साल के बाद भी जब भी सोनू निगम कोई लाइव परफॉर्मेंस करते हैं, क्राउड सिर्फ बिजुरिया के लिए वेट करती रहती है. एंड ये खुद सोनू निगम का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सॉन्ग्स है टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ अ क्राउड, बिकॉज ऑडियंस तो हम ही है, कनेक्शन तो फील होता है. बट आई बेट यू डिडंट नो दिस दैट 26 साल के बाद सोनू निगम ने इस गाने की जो ओरिजिनल फीचरिंग एक्टर हैं इशिता अरुण, उनके साथ फिर से इस गाने का वीडियो बनाया. हाउ डू यू फील अबाउट दैट वीडियो, जाके देख के मुझे बताना एट आरजे कनिका पर. अब अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. कौन कह सकता है इस गाने को 26 साल हो गए, द चार्म इज स्टिल द सेम. सोनू निगम की आवाज में दिस इज बिजुरिया ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.

0: डूड, ये गाना सुन के मैं बिजुरिया बिजुरिया का स्टेप करने लग गई थी स्टूडियो में. आप देख नहीं पा रहे हैं लेकिन अपनी इमेजिनेशन से इमेजिन कर लो. दैट वाज सोनू निगम की आवाज में बिजुरिया ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक. एट आरजे कनेका पर आओ, कोई भी गाना रेकमेंड करना हो, सजेस्ट करना हो फ्रॉम द 90s 2000s, दोज इंडी पॉप सॉन्ग्स जो आज भी सुन के आपको लगता है कि यार ये वाला गाना तो आज भी फेवरेट है, वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक. नाउ बैक टू द काउंट डाउन, अगले वाले गाने की बारी है. मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि कोई अपना फेवरेट ना बोलूं, बट जब गाना ऐसा होता है ना तो थोड़ा सा बोलने का मन कर जाता है. दैट आई थिंक दिस इज माय मोस्ट फेवरेट सॉन्ग ऑफ द काउंटडाउन. चार हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. फरक दी आर्टिस्ट का, उन्हीं की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन. गाने का नाम है तारे एंड दिस सॉन्ग हिट्स ऑल द फील्स ब्रो. सो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. दिस इज तारे दिस वीक ऑन गाना नंबर 5. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 5.

लफ्ज कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के, पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है। गवाया

0: मिटर और की आवाज उन्हीं की कॉम्पोजिशन. गाने का नाम है शीशा. 22 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार दिस वीक ऑन गाना नंबर 4. सोशल मीडिया वंस इन अ वाइल हमें एक ऐसे ट्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाता है कि ट्रेंड तो चला जाता है पर वो गाना याद रह जाता है. इट्स टाइम टू गिव अ शाउट आउट टू ऐसा ही एक सॉन्ग.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची.
0: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है आरजे कनिका. दिस इज द शो जहां हफ्ते के टॉप 10 पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं. कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर, मेरा हैंडल इज @RJKanika. फॉलो करो, बिल्कुल फ्री है. वैसे भी मुझे पता है आप सारा टाइम ही इंटरनेट पे स्पेंड करती हो, बिकॉज बाय नाउ यू हैव बीन फॉलोइंग ऑल द इंटरनेट मीम्स एंड डूइंग ऑल द इंटरनेट ट्रेंड्स. माय फेवरेट पार्ट अबाउट दिस इज कि जब कोई गाना एक ट्रेंड से इतना बड़ा हो जाता है कि हमारे शोज में डेब्यू कर जाता है, आपकी प्लेलिस्ट तक आ जाता है, और ऐसे ही एक गाने को हम आज शाउट आउट देने वाले हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट गुची. गाने का नाम है गुची बाय अरूप खान. एंड मे बी आप इस गाने को एक बहुत क्वर्की साइड वॉक से जानते हैं. बाय द वे, ये कोई नया गाना नहीं है, ये 2020 का है, 5 साल पुराना, बट एक इंटरनेट एडिट की वजह से हर जगह वायरल हो गया है. एक बहुत फेमस एक्टर पॉलिटिशियन एक कॉलेज इवेंट में स्टेज तक जा रहे थे एंड उनके हिसाब से वहां थोड़ी जगह नहीं थी, तो उन्होंने एक क्वर्की सा साइड वॉक मारा, टेढ़ा मेढ़ा, बिल्कुल ऑर्केस्ट्रेटेड नहीं था. एंड देन द इंटरनेट डिड इट्स मैजिक. उन्होंने उस वीडियो पे गुची का गाना चिपकाया और वो हर जगह वायरल हो गई. पूरा डांस स्टेप बन गया, लोग उसे गुची वॉक कह रहे हैं. आई नो राइट, मून वॉक सुना था, लेकिन 2026 ने हमें गुची वॉक दे दी. एंड द आर्टिस्ट अरूप खान इज हैविंग हर मोमेंट. जिन्होंने 5 साल पहले ये गाना बनाया था एंड हैड नो आइडिया कि एक इंटरनेट ट्रेंड से हमें गाना इतना पसंद आ जाएगा. सो थैंक यू जेन ज़ी, अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. अरूप खान का गुची इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.

0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची
1: पर दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। ये वो शो है जहां हम हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन आपके लिए लेकर आते हैं, यानी कि वीकली पॉप रिपोर्ट कार्ड। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika। फॉलो करो, कोई गाना सजेस्ट करना हो बिंदास आके हिट मी अप। फॉलो करना बिल्कुल फ्री है। इट्स टाइम फॉर मी टू टेक यू टू द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, बट उससे पहले एक क्विक रीकैप राइट फ्रॉम द टॉप। शुरुआत ही काउंटडाउन की एक नई एंट्री के साथ हुई, बंजारे का बरसात डेब्यूज ऑन गाना नंबर 10।
2: प्यारे सा मिलना नहीं, कौन मेरे जैसा चाहेगी।
1: उसके बाद संजू राठौड़ का बैंगल्स ऑन गाना नंबर 9। ज़ारा खान एंड स्केल्स का मूव बॉडी स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग ऑन गाना नंबर 8। अनीश सरकार हृदय का उड़ी उड़ी ऑन गाना नंबर 7। जुनीता गांधी गर्वित प्रियांश का काफी है ना दिस वीक ऑन गाना नंबर 6।
3: तू मेरा हो गया इतना ही काफी है।
1: देन फरक का तारे ऑन गाना नंबर 5। मिट्टा रॉर का शीशा स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग 22 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर दिस वीक ऑन गाना नंबर 4। हर्ष नुसी का साडी सुन दिस वीक ऑन गाना नंबर 3। And the top 2 songs of the week, इस हफ्ते के टॉप 2 गानों में कुछ तो रीशफल हुआ है। पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जंप करके राघव कौशिक का गाना, गाने का नाम है दरमिया, रेखा भारद्वाज राघव कौशिक की आवाज, द सॉन्ग इज फ्रॉम मुसाफिर कैफे, दरमिया इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 2। उसके बाद द न्यूमेरो उनो सॉन्ग ऑफ द काउंटडाउन 22 हफ्तों से बरकरार, पिछले 3 हफ्तों से ये गाना नंबर 1 की पोजीशन को रिटेन करके बैठा है, बंजारे का गाना, गाने का नाम है बैरन, स्टिल ऑन गाना नंबर 1। दोनों गाने दरमिया ऑन नंबर 2, बैरन ऑन नंबर 1, बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बदी का नाम है कनिका, एंजॉय।

0: Ana Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi. It's hot.
1: Hello, Mirchi helpline.
2: नहीं नहीं हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है?
1: अरे सर, मेरा बच्चा सवाल पूछ पूछ के दिमाग खा जाता है, जवाब दे दे के थक गया हूँ मैं, क्या करूँ?
2: अरे तुम मुझसे क्यों पूछ रहा है, मैं थोड़ी ना तेरा बाप हूँ।

नाइट या फ्राइडे नाइट को रिलीज होती है। लेकिन एक टाइम ऐसा था जब एवरी फ्राइडे बड़े हॉल्स पे कोई ना कोई बड़े स्टार की फिल्में रिलीज होती थी। फ्राइडे के लिए हमेशा हमारे जो एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो ना काफी नर्वस रहते थे कि उनकी फिल्में चलेंगी कि नहीं चलेंगी। ऐसे में ना बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स ना कुछ कुछ सुपरस्टिशंस फॉलो करते थे, नॉट जस्ट फॉर फ्राइडेज बट ऐसे भी अपनी लाइफ में। अब जैसे कि मैं आपको बताऊंगी एक ऐसे स्टार के बारे में जिन्होंने नॉनवेज और लिकर दोनों को छोड़ दिया था बिफोर द रिलीज ऑफ हिज बिग बजट फिल्म। कौन थे वो फिनोमिनल डायरेक्टर एंड एक्टर, अभी बताएगी आपको श्रेया। वापस आओ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

फ्राइडे नाइट यानी बड़ी सारी हिंदी मूवीज रिलीज होती हैं आज। कई बार तो ऐसा होता है बेबी कि मूवी हॉल्स में ना फिल्म्स रिलीज नहीं हो रही, लेकिन ओटीटी पे थर्सडे नाइट

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: हेलो
2: गुड इवनिंग मिस्टर श्रीवास्तव, मैं मॉडर्न स्कूल से बोल रहा हूँ, आपके बेटे के स्कूल से। हाउ आर यू?
1: थैंक यू
2: अतुल। वैसे पढ़ाई लिखाई में यहाँ पे बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहा है, उसके मार्क्स भी अच्छे आते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बिल्कुल आगे नहीं है।
1: आई नो वो खेल में कुछ ऐसा है नहीं खास ज्यादा। हाँ,
2: नहीं वही मैं आपको बताना चाह रहा था। अच्छा मिस्टर श्रीवास्तव, क्योंकि हम 26 जनवरी पे एक फंक्शन कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि पेरेंट्स भी उसमें पार्टिसिपेट करें। पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, जितना अच्छा परफॉर्म वो करेंगे उसके मार्क्स बच्चे को दिए जाएंगे। यू नो
1: परफॉर्म मतलब क्या, परफॉर्म क्या करना होगा हमको?
2: कुछ भी ऐसा करिएगा जो कि बच्चों की चीज हो। आप प्लीज आके यहाँ पे पार्टिसिपेट करिए। आप आओ मिलो शिलो शालो करिए ना यहाँ पे आके स्टेज पे।
1: मतलब गेम है क्या ये?
2: आओ मिलो शिलो शालो,
1: मतलब पेरेंट्स को परफॉर्म करना होगा?
2: वो सिर्फ आप ही को परफॉर्म करना होगा, आप ही को ये पूरा बोलना होगा आओ मिलो शिलो शालो। एक्चुअली प्रॉब्लम भी है, हमारे पास चार ही थे उसमें से यही बचा है। आओ मिलो शिलो शालो अगर आप ले सकते हैं तो आप इसे प्लीज परफॉर्म कर लीजिए ताकि उसके मार्क्स अच्छे आए। राइट, देखिए शुरू ऐसे होता है, आप मेरे साथ साथ बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। राइट, और इसमें बीच में ना क्लैप करना होता है इस तरह।
1: आओ मिलो
2: शिलो शालो,
1: शालो
2: कच्चा
1: धागा,
2: रेस
1: लगा लो,
2: दस
1: पत्ते तोड़े,
2: एक
1: पत्ता कच्चा।
2: इसको ना प्रैक्टिस करिएगा, आप तेज से बोलेंगे दस पत्ते तोड़े
1: तोड़े
2: या मिस्टर श्रीवास्तव, दस पत्ते तोड़े, दस पत्ते तोड़े,
1: दस पत्ते तोड़े,
2: हिरण का बच्चा, हिरण का बच्चा, सब हिरण का बच्चा,
1: ओके ओके सॉरी सॉरी, हिरण का बच्चा,
2: घोड़ा दौड़ा टुकड़ू दू,
1: घोड़ा दौड़ा टुकड़ू दू,
2: श्रीवास्तव बोले कुकड़ू को, मिस्टर श्रीवास्तव बहुत अच्छा लगता है जब बाप कोई बच्चा बनने की कोशिश करता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आपकी वाइफ ने मुझे नंबर दिया था, आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका मुर्गा बन गया है।
1: यार ये कोई सुनेगा
2: सर? सर ये सब सुन चुके हैं, अब प्यार से एक बार बोल दीजिए, इसको रिपीट कर लीजिएगा, बार बार बोलिएगा कुकड़ू को।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट,
4: इट्स ऑल डाउन टू डोनी इज़न्ट इट, फोर बॉल्स लेफ्ट, दे नीड 12 रन्स टू विन।
5: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है।
6: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
5: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. शाम एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट एसटीटी स्नोनो। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव।

gulu gulu. Up, up, up, up, up. Up, up, up, up.

0: मेरा नाम जोकर ये एक ऐसी फिल्म थी जिससे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी राज कपूर साहब को। ये उनके दिल के सबसे करीब फिल्म थी लेकिन बॉक्स ऑफिस पे दर्शकों के करीब नहीं पहुंच पाई। दिस वाज अ सुपर फ्लॉप फिल्म और इस फिल्म में बहुत सारा पैसा लगा था राज कपूर साहब का। इनफैक्ट वो एकदम बैंकक्रप्ट हो गए थे जब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे औंधे मुंह गिरी। उसके बाद उन्होंने जिस फिल्म के लिए अगला काम शुरू किया ना, उन्होंने एक सैक्रिफाइस किया था उस फिल्म के रिलीज तक। वो क्या सैक्रिफाइस था, कौन सी फिल्म थी, आई विल लेट यू नो कुछ गानों के उस पार। दिस इज मी श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।
1: शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

मूवी का नाम बॉबी, और ये एक ऐसी फिल्म होने वाली थी जिससे शायद राज कपूर साहब अपनी सारी बैंक्रप्सी को रिकवर कर पाते, अपने डेट्स को रीपे कर पाते। पुरानी जीन्स पे हाफिज रेया के साथ, और आज ना मैं कुछ सुपरस्टिशंस की बात कर रही हूँ ऑफ आर हिंदी एक्टर्स, डायरेक्टर्स, लेजेंडरी स्टार्स। सो जब राज कपूर साहब की बहुत सारा पैसा लगने के बाद, इनफैक्ट उनका सारा पैसा लगने के बाद, मेरा नाम जोकर सुपर डुपर फ्लॉप हो गई ना, तो उन्होंने बॉबी फिल्म बनाई। इस फिल्म के लिए उन्होंने फिर से कर्जा लिया था बहुत सारे नोन और अननोन रिसोर्सेस से। उनकी ये इकलौती उम्मीद थी अगर उनकी ये फिल्म चल गई तो वो अपने सारे कर्जे को वापस रीपे कर पाएंगे। तो इसके लिए उन्होंने पता है एक सैक्रिफाइस किया था, एक नहीं बल्कि दो सैक्रिफाइसेस किए थे। उन्होंने नॉनवेज को और लिकर को, ड्रिंक्स को तब तक हाथ नहीं लगाया था जब तक बॉक्स ऑफिस पे पहले दिन की रिलीज पे ही बॉबी को सुपर हिट नहीं कह दिया गया। एंड आफ्टर दैट ही पार्टीड। तो इसी बात पे बॉबी का गाना कमिंग अप राइट नेक्स्ट फॉर यू। मैं हूँ श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: सिर्फ बंगाल के नहीं, हिंदुस्तान के हिट हीरो, नाम है इनका जीशु सेनगुप्ता। इनसे एक बार पूछा गया,
4: हूज मोस्ट लाइकली टू डाई टू प्रोटेक्ट यू? अपनी जान दे देंगे लेकिन आपको जरूर बचाएंगे।
5: आई हैव फ्यू पीपल, यस, आई कैन से दे आर माय फ्रेंड्स, दे आर माय फैमिली, लाइक एट लीस्ट टू पीपल टू आई नो, आई एम नॉट नेमिंग देम, बट दे नो
4: हु दे आर,
5: टू पीपल दे विल डाई फॉर मी, या आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड।
3: जीशु सेनगुप्ता, उस टू की लिस्ट में एक और नाम जोड़ दीजिए, थ्री कर दीजिए, बिकॉज आई विल ऑल्सो, ये यू आर लिस्निंग टू मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: और फिर क्या होगा?
1: पार्टियां, दावतें,

उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें और आज उस जमाने के सुपरस्टिशंस भी चल रहे हैं। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया एंड मैं कुछ बॉलीवुड स्टार्स के ना सुपरस्टिशंस की बात कर रही हूँ, कुछ टोटकों की बात कर रही हूँ, कुछ ऐसी चीज़ों की बात कर रही हूँ जिसपे वो बिलीव करते हैं। अब अगर हम द सुपर स्टार बच्चन साहब को लें तो ये सबको पता चल गया है ना अब तो कि अमिताभ बच्चन इंडिया का कोई भी क्रिकेट मैच लाइव नहीं देखते। उनको ये लगता है कि जब जब वो लाइव देखते हैं ना इंडिया हार जाती है, और अगर कहीं बैटिंग कर रही होती है तो बहुत जल्दी विकेट्स गिर जाते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट मैचेस होते हैं ना वो सबको रिकॉर्डिंग मोड पे लगा करके छोड़ देते हैं एंड आफ्टर द मैच ही वॉचेस देम। लेकिन ये वाला सुपरस्टिशन उनका सबको पता है, एक जो सिर्फ मुझे पता है मैं अभी आपको बताऊंगी। कम राइट बैक विद मी श्रेया ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
1: अरे कहीं शांति नहीं मिलती, घर जाऊं तो बीवी लड़ती रहती है, गार्डन जाऊं तो बच्चे चेंचे करते रहते हैं, मैं क्या करूं?
2: अरे तू एक काम करना, शमशान चला जा, उधर बहुत सारी शांति रहती है रे।
3: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

उस जमाने की बातें विद इस जमाने की श्रेया बैक टू बैक चल रही है। आज मैं सुपरस्टिशंस ऑफ हमारे लेजेंडरी बॉलीवुड स्टार्स की बात कर रही हूँ। बच्चन साहब का क्रिकेट को लेकर के क्या सुपरस्टिशन है ये तो सबको पता है कि वो कोई भी इंडिया का मैच जो है ना क्रिकेट का वो लाइव नहीं देखते, वो हमेशा रिकॉर्डिंग मोड पे डाल देते हैं और उसके बाद देखते हैं, बिकॉज ही फील्स कि अगर वो लाइव विटनेस करेंगे तो इंडिया हार जाती है। एनीवे दूसरा सुपरस्टिशन जो उन्होंने बातों ही बातों में एक इंटरव्यू में कहा था कि वो पंक्चुअल बहुत है अपनी मूवी की शूटिंग को लेकर के, किसी भी सेट पे पहुंचने को लेकर के। ही सेड कि मैं इतना ज्यादा पंक्चुअल हूँ कि अगर मैं कभी लेट हो जाता हूँ, खुदा ना खास्ता जो वो कभी नहीं होते हैं, तो उनके दिल में एक खटास सी हो जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है, मैं इस सेट पे लेट क्यों पहुंचा। क्या आज का दिन उनके अकॉर्डिंग नहीं जाएगा? इमेजिन उनका ना समय पे कंट्रोल है जो किसी का नहीं होता, एंड दैट्स व्हाई ही इज दी बच्चन। इसी बात पे बच्चन साहब का एक गाना कमिंग अप राइट नेक्स्ट फॉर यू। मैं हूँ श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: गोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: ओह माय,
0: राइट। मैं दुनिया पे अकेला हूँ।
1: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनिया इज जक्सटापोजिशन्ड बाय द हेमोग्लोबिन ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द कंट्री।

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
1: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
2: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है.
3: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
2: The Mentalist, Suhani Shah live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

जीतू जी आज भी प्लेन में चढ़ने से डरते हैं और इसीलिए वो थोड़ी पूजा पाठ करके ही किसी भी प्लेन को बोर्ड करते हैं। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ द जंपिंग जैक उनको कहा जाता था बिकॉज ही डांस सो वेल। सो जितेंद्र जी का ये सुपरस्टिशन है कि कोई भी फ्लाइट वो बोर्ड कर ले उनको थोड़ी सी पूजा करनी होती है एंड ही सेज कि उनको फ्लाइट फोबिया है क्योंकि इनिशियल डेज में उन्होंने जब जब फ्लाइट ली तो उसमें टर्बुलेंस रहा, फ्लाइट थोड़ा डगमगाई, ऑल ऑफ इट, उससे उनके दिल में डर घर कर गया और इसीलिए वो फ्लाइट में चढ़ने से पहले ऊपर वाले को बहुत अच्छे से याद करते हैं और उन्हें बटर लगाते हैं। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, जीतू जी की बात हुई है, उनका गाना ना हो ये गुस्ताखी मैं कैसे कर सकती हूँ। सो कमिंग योर वे इज अ सॉन्ग और उसके बाद मैं यहीं बैठी हूँ, मिलते हैं कुछ गानों के उस पर।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
2: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar, this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट एसटीटी स्नूनू। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

सुभाष घई की फिल्म थी ये राम लखन, और सुभाष घई का सुपरस्टिशन शेयर करूं मैं पुरानी जींस पे आप हो श्रेया के साथ। सुभाष घई का ये सुपरस्टिशन तो हम उनकी हर फिल्म में देख, इनफैक्ट जो फिल्में उन्होंने 2000s में बनाई उसमें भी देख चुके हैं, फिर चाहे वो परदेस हो या फिर तालो। तो सुभाष घई को हमेशा लगता है कि वो जब भी कोई फिल्म बनाते हैं उसमें उनका स्पेशल अपीयरेंस होना बहुत जरूरी है, और जिस भी फिल्म में वो खुद आते हैं वो फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाती है। मुझे याद है कि इस फिल्म राम लखन में भी उनका एक स्पेशल अपीयरेंस होता है छोटा सा, यादें में इनका स्पेशल अपीयरेंस होता है, ताल में, परदेस में, इन सब में आप सुभाष घई को देख सकते हो। वैसे आज कुछ ऐसे ही टोटकों की बात हो रही है, कुछ ऐसे ही सुपरस्टिशंस की बात हो रही है जो हमारे बॉलीवुड स्टार्स मानते आए। कम राइट बैक, विल शेयर मोर विद यू। मैं हूँ श्रेया, यू कैन कैच मी ऑन फेसबुक और इंस्टा, हैंडल है मेरा आरजे श्रेया विद लव, दैट्स आरजे SHREYA श्रेया विद लव।

प्रतिष्ठा लिए रंग सब सखा संग मन में उमंग गति तुमंग था खेलत भुज मेलत लपट झपट राधा ललिता चंदा बलि दियो बोर रंग घोर सर बोर बनवारी मैं हारी जा जारी मैं हारी जा जारी मैं

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर 89.6 आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर

नासिर हुसैन साहब ने अपने फेवरेटिज्म को छिपाने के लिए बात कही हो या फिर अपनी पर्सनल केमिस्ट्री को, विद आशा पारेख, लेकिन वो हर बार ये कहते थे कि आशा पारेख उनके लिए बहुत ही लकी हैं एंड दैट इज व्हाई वो उनको अपनी फिल्मों में रिपीट करते थे। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ आज ना मैं कुछ सुपरस्टिशंस की बात कर रही हूँ हमारे बॉलीवुड स्टार्स की। सो कैमरे के पीछे डायरेक्टर नासिर हुसैन, कैमरे के उस पार आशा पारेख, और इस जोड़ी ने बहुत सारी हिट फिल्में दी जिनमें से तीन तो थी जब प्यार किसी से होता है, फिर वही दिल लाया हूँ, तीसरी मंजिल एंड ऑफ कोर्स मोर ऑफ देम। लोग तो ये भी कहते हैं कि नासिर हुसैन और आशा पारेख के बीच में ना लव एंगल था। आशा पारेख ने कभी इस बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन जब भी डायरेक्टर साहब से बात हुई उन्होंने इसको सुपरस्टिशन का एंगल दिया, आशा पारेख को अपनी फिल्मों के लिए लकी माना। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, तो इसी बात पे तीसरी मंजिल का गाना हो जाए, डायरेक्टेड बाय नासिर हुसैन एंड हीरोइन बीइंग ऑफ कोर्स आशा पारेख। अप नेक्स्ट फॉर यू

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन का नंबर है।
0: जॉब की वजह से मेरी नींद ही पूरी नहीं होती, क्या करूं?
1: तो तू एक काम कर, नाइट सिक्योरिटी की जॉब छोड़ दे और दिन में काम कर, सिंपल है।
2: I'm joking.

इनकी फिल्मों में ज्यादा काम तो नहीं मिलता था, लेकिन हाँ इनकी जोड़ी इतनी हिट थी कि काका हमेशा इन्हीं का नाम रेकमेंड करते थे, और इसीलिए 9 फिल्में इन्होंने एक साथ करी विच वॉज सुपर डुपर हिट। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ आज ना मैं सुपरस्टिशंस की बात कर रही हूँ, हमारे बॉलीवुड स्टार्स के कुछ ऐसे टोटके, कुछ ऐसे सुपरस्टिशंस जो उन्होंने एकदम शिद्दत से फॉलो किए। अगर काका की बात लें यानी राजेश खन्ना जी की बात लेना, तो उनके लिए मुमताज जी बहुत लकी थी, ऐसा राजेश खन्ना ने इंटरव्यूज में भी कहा, क्योंकि उनकी जोड़ी को बहुत एक्सेप्टेंस मिली, उनकी जोड़ी को लोगों ने बहुत लाइक किया। एंड मुमताज जी उनके साथ काम करने से पहले ना बी ग्रेड फिल्मों में काम करती थी, लेकिन काका और उनकी जोड़ी ए ग्रेड थी। तो राजेश खन्ना मुमताज को अपनी हर फिल्म के लिए बहुत लकी मानते थे, और इसीलिए डायरेक्टर्स को उन्हीं का नाम सजेस्ट करते थे। आपकी कसम हो, दो रास्ते हो, अपना देश हो, प्रेम कहानी हो, सो मेनी ऑफ देम, पूरी 9 हिट फिल्में। तो इन्हीं दोनों की केमिस्ट्री का एक बहुत ही स्वीट सेंशस गाना मुझे बड़ा पसंद है, जिसमें थोड़ा नटखट हो रही है मुमताज जी एज ऑलवेज, उन्हें प्यार से बाय द वे काका मोटी कहा करते थे, और राजेश खन्ना ऐसे दिखा रहे उन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा कि उनकी हीरोइन की बिंदिया चमकेगी या चूड़ी खनकेगी। पुरानी जीन्स पे दिस इज मी श्रेया, यही गाना कमिंग अप राइट नेक्स्ट।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: हेलो
3: हेलो
2: हाँ बोलो कौन
3: हेलो इधर से बोल रहा हूँ आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
2: हाँ बोल कौन रहा है
3: बोल कौन रहे हो कंप्लेंट करी थी आपने सीवर साफ करने की नीचे से बोल रहा हूँ आपके सीवर में घुसा पड़ा हूँ
2: बोल कौन रहे हो
3: आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
2: हाँ बोला था
3: ओ भैया मेरी जान को बचाओ यहाँ पे बहुत गहरा है यार आप लोग खाते क्या हो कितना गहरा कर दिया आपने
2: तो पूछ के घुसे थे क्या अंदर
3: ज्यादा सवाल मत करो मेरी बात सुनो सिर्फ
2: हाँ बोलो
3: ओए यार आपके टॉयलेट पे आपकी कोई बैठा के क्या क्या फेंक रहा है यार ऊपर से ओए बंद करो सर ओ भैया मेरी जान को बचाओ यहाँ पे बहुत गहरा है यार आप लोग खाते क्या हो कितना गहरा कर दिया आपने
2: कौन बोल रहा है कहाँ घुस गए यार
3: हेलो इधर से बोल रहा हूँ आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
2: हाँ हाँ बोला था हुआ क्या है कुछ तो बताओ
3: ज्यादा सवाल मत करो मेरी बात सुनो सिर्फ ओए यार आपके टॉयलेट पे आपकी कोई बैठा के क्या क्या फेंक रहा है यार ऊपर से ओए बंद करो सर
2: कब आया था कब घुसा अंदर
3: फिर सवाल यार मैं यहाँ पे अटका पड़ा हूँ मुझे बाहर निकालो यार कैसे भी करके
2: तो कहाँ करा कमी हो गया
3: सीवर साफ करने की कंप्लेन करी थी नीचे घुसा पड़ा हूँ आपके सीवर में बाहर निकालो यार
2: मैं तो इधर ऑफिस में हूँ अपने
3: ऑफिस क्यों गए सीवर साफ करवाना था मैं तो यहाँ पे घुसा पड़ा हूँ ना अंदर
2: मेरी सीवर में घुसा है किसी और के सीवर में घुस गया
3: ये बदबू से पता चल रहा है सीवर तेरा ही है यार
2: सीवर में मरा रहा है तू
3: गाली तो मत दो
2: हेलो
3: हेलो
2: फिर फोन कर दिया तूने
3: अच्छा सीवर साफ होने का काम करो एक चीज बोलो
2: क्या बोलो
3: कुकड़ू को
4: सर आई एम सो सॉरी मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मुझे किसी ने बताया था कि आपने सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका मुर्गा बन गया
2: कुकड़ू को
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
6: 89.6
5: मिर्ची
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर

0: देख रहे हैं।
1: तो देखने दो।
0: जल भी रहे हैं।
1: अरे तो जलने दो।
0: खुली सड़क है बाबा।
1: तो क्या हुआ भाई?
0: हाँ तो हो जाए
1: हो जाए।

इस फिल्म में लीड हीरो तो ऋषि कपूर थे और उनके साथ सपोर्टिंग एक्टर का रोल कर रहे थे राकेश रोशन। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ। राकेश रोशन साहब का सुपरस्टिशन तो हम सबको पता है, जब उन्होंने फिल्में बनानी शुरू की तो सब फिल्में केस से शुरू होनी थी, क्योंकि एज अ फिल्म मेकर जब उन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाई एज अ फिल्म मेकर 1987 की खुदगर्ज वो सुपरहिट फिल्म बनी। फिर उसके बाद उन्होंने बनाई के से ही खून भरी मांग, फिर उनको के का ना एकदम चस्का चढ़ गया। ही बिकेम लाइक अब भाई मेरी जितनी फिल्में क से शुरू होंगी। फिर उन्होंने बनाई किशन कन्हैया, करण अर्जुन, कहो ना प्यार है, कोई मिल गया के सीक्वल, क्रिश बनाई क्रिश के सीक्वल, ऑल ऑफ दैट। अब अगर कुछ करने से आपका आपकी चीजें अच्छी हो रही हैं तो ऑटोमेटिकली थोड़ा सुपरस्टिशन तो आ ही जाता है ना उस चीज को लेकर के। राकेश रोशन साहब के साथ भी यही हुआ, किरण ने कई। पुरानी जीन्स में आप श्रेया के साथ जो आज कुछ सुपरस्टिशंस की बात कर रही हो फॉर बॉलीवुड स्टार्स। अगले कौन होंगे बताऊंगी, कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
2: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट एसटीटी स्नूनो। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

राज कपूर साहब ने ना लता जी को इस बात के लिए बहुत ब्लेम किया क्योंकि वो लता जी को अपनी फिल्मों के लिए लकी मानते थे। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट सुपरस्टिशंस ऑफ आवर बॉलीवुड स्टार्स टुडे। एंड राज कपूर जो थे ना, उनकी हर फिल्म में लता जी का गाना होता था। इनफैक्ट सिर्फ लता जी ही गाती थी अगर फीमेल गाना है तो। लेकिन एक फिल्म जिससे ये प्रथा को रोका गया वॉज मेरा नाम जोकर। इस फिल्म में लता जी की आवाज नहीं थी और जब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एकदम धड़ाम गिरी, फ्लॉप हुई, तो राज कपूर ने एक्चुअली में लता जी को भी ब्लेम किया कि दीदी तुमने इस फिल्म में गाना नहीं गाया था मेरे लिए, इसीलिए ये अनलकी रही। पुरानी जीन्स पे राज कपूर साहब की फिल्म जिसके लिए लता जी ने गाना गाया, वैसे तो बहुत सारे पर ये वाला मैं स्पेशली लेकर के आई हूँ। सुनिए और वापस आइए श्रेया के साथ।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर 89.6 आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर

पुरानी जीन्स पर श्रेया का जाने का टाइम हो गया है और जब मैं जाती हूँ तो आपको तो पता ही है मैं अपने साथ गाड़ी में आपको बैठा ले जाती हूँ और कहाँ जाते हैं अच्छा आज का हाईवे हिट उन लोगों पे है जो ना जुबान से ज्यादा बात नहीं करते, उनको सामने वाले की नजरों से सब पता चल जाता है। पूरा कमरा भरा हो सकता है, पूरा हॉल भरा हो सकता है लोगों से, लेकिन इनकी बातें नजरों से चल रही होती हैं और शायद कुछ ऐसा कह रही होती हैं। बहुत कम लोगों की नजरें आपको प्यार के काबिल समझ पाती हैं। अगर ऐसी कोई नजर आपके पास है ना, उसे संभाल के रखना। दिस इज मी श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।